नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल, लेकर हाजिर हूँ आज की सुहानी सुबह की ताजगी और उत्साह से भरी रूपरेखा। हर घड़ी हर पल आपके साथ आपकी आवाज में सिर्फ और सिर्फ वागड़ रेडियो पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज दिनांक 7 मई 2026 वार गुरुवार का दिन है, साथ ही साथ यूँ हम देख पा रहे हैं कि स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6 बज चुके हैं। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। श्रोता साथियों, आज सभा की शुरुआत करेंगे सबसे पहले भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए रुख करेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी से। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। अगला कार्यक्रम होगा इसी कड़ी में सच्चा बचपन। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर, और इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। श्रोता साथियों, इसी के बाद हम रूबरू होंगे कार्यक्रम आपकी और हमारी आवाज यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर के साथ में। फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे अधिकार कानून नियमों से जुड़ा सच्चा स्वराज, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और अंजलि पारशर। इसी क्रम में श्रोता साथियों, आगे बढ़ते हुए हम रुख करेंगे हमारी परंपरा लोक राजस्थानी गीतों से जुड़ा कार्यक्रम लोक संगीत, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 8:30 पर राजस्थानी गीतों के साथ में। श्रोता साथियों, फिर अगला कार्यक्रम होगा हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, जिसे आप सुन पाएंगे मेरे साथ में यानी कि आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल के साथ में, और मेरे साथ होगी हमारे रेडियो साथी कशिश पारशर। आगे बढ़ते हुए हम सुन पाएंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारे रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 9:30 पर। श्रोता साथियों, फिर हम रूबरू होंगे कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ से, इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 10:00 बजे। फिर इसी क्रम में हम रुक करेंगे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। इस कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों, आप अपने फरमाइश के गीतों को सुन सकते हैं 11 से 1 बजे तक वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, और फरमाइश के गीतों को दे सकते हैं प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में हमारे इस नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों, यह तो थी हमारी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आज की सभा में सबसे पहले कार्यक्रम आराधना से।

0: जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वो सब गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। वस्तुतः मनुष्य के जीवन में दुर्जनता जन्म ही तब लेती है जब उसके अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। ये आत्मविश्वास है क्या? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है, तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है। किंतु जब वो ये समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती है, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, मन की स्थिति, जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है। और जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है। स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: जागृति बुन आपने कार्य सोचू है अगर आप बूंदे रुकी जाएगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिया है ये हुकी जाएगा खेतर बंजर थे ही जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा त आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके जल्दी थकान थावी शारीरिक कमजोरी याददाश्त में कमी श्वास फूलवू आ सब एनीमिया ना लक्षण है
0: होवे भाई बोनो आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े में देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निशुल्क जांच करावी सुवे
2: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है
0: होवे एनीमिया ते की बचा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल पत्तेदार सब्जी गुड़ बाजरा तिल नींबू ने संतरा गोभी तरबूज आंवला टमाटर नु सेवन करवो सुवे
2: होवे आ सब सावधानी रखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो अनिमिया थकी बची सकंगा
3: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
4: थारी में पासो लावो चूनू हवाद सेहत बनेगा एकदम शानदार बाजरा ज्वार रागी ने मक्का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू बारते नु खवानो सोड़ो बेशी अनाज तकी ना तू जोड़ो
2: मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा
3: बागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र किसान भाई बहनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बहन आप हमरे रहो आपणो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माथे ने आप सबनु घणीमान स्वागत करा हां अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम की किसान भाई बहनो अमे अमारे टेम माथे हाजिर थई गया हां कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाथे। तो किसान भाई बहनो आज हमारी आप तक की बातचीत नु विषय है की वर्षा ऋतु में अपने जो पशु है एना ने कया कया रोग थाय ने एना ने रोकथाम अपने हरते करी शक। तो किसान भाई बहनो अना विषय माते हमारी अब तक कार्यक्रम में घना कनी बातें थाएंगा पर कार्यक्रम शुरू करा इन्हें पहले आपने हमरा विदा गीत ने मोरे करा अपनी बातें। तो किसान भाई बहन आप हमर तरजू अपनो रेडियो अपनी बातें वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: कोई पशु है बीमार है तो बीमार पशु को जो स्वस्थ पशु है उससे अलग कर लेवे, जो पशु मर गया उसको वहां पे एंटीसेप्टिक दवाओं से या रोगाणु नाशक दवाओं से वहां अच्छी तरह से वो फर्श है जहाँ पे पशु मरा है उसको अच्छी तरह से धो देना चाहिए, है ना। आवास को बिल्कुल साफ सुथरा और स्वच्छ हमको रखना चाहिए और रोग की संभावना होने पर तुरंत हम पशु चिकित्सक की सलाह ले और मृत पशु को हमको खुला नहीं छोड़ना चाहिए और मृत पशु को हमको खड्डा खोद के और किसी ऐसी जगह दफनाना चाहिए ताकि उसका संक्रमण है दूसरे पशु को नहीं फैले
1: जी बिल्कुल।
0: तो इन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए और जो है बचाव ही इसका उपाय है एक तरह से देखा जाए।
1: जी बिल्कुल सर, तो ये तो आपने बताया कि हमारे जो पशु हैं उन्हें अगर गलघोंटू रोग हो जाता है तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं और रोकथाम के हम क्या उपाय कर सकते हैं। यहीं सर अब आप हमें ये बता दीजिए कि लंगड़ा बुखार जो होता है उसमें पशु को क्या लक्षण दिखते हैं और उसकी रोकथाम और बचाव हम कैसे कर सकते हैं।
0: देखिए लंगड़ा जो बुखार है वो देखे हम तो इसको आप हमारी जो देसी भाषा में जहरबाद बोलते हैं और उसको अंग्रेजी में ब्लैक वाटर बोलते हैं और इसीलिए बीक्यू का टीका जो है वर्षापुर लगाया जाता है
1: जी जी।
0: हमने सभी ने सुना होगा तो ये लंगड़ा बुखार के लिए ही होता है
1: जी बिल्कुल।
0: और ये लंगड़ा बुखार जो है पीछे से जो पशु है एक तरह से लंगड़ा के चलने लगता है, बहुत ही तेज बुखार आता है इसमें
1: जी जी।
0: और उसको पशु के जो पिछला हिस्सा है उसको मांस को गर दबाने से उसमें से चर चर की आवाज आती है और पीठ पे बहुत सूजन हो जाती है
1: जी जी।
0: और चमड़ी एकदम कड़क हो जाती है और बाल सभी खड़े होते हैं और पेट में जो है गैस भर जाती है, तो यही इसकी पहचान है
1: जी जी।
0: और ये काफी मतलब काफी घातक रोग है
1: जी जी।
0: और ये एक बार अगर मान लो पशु को आ जाता है तो मतलब इसमें जो मृत्यु दर है काफी ज्यादा है इस वाली बीमारी में
1: जी जी।
0: और इसका भी जैसे मैंने गलगोटू में बताया था उसी तरह से इसमें जो टीकाकरण है वर्षा पूर्व इसका टीकाकरण करवावे
1: जी जी।
0: और हो सके तो हर 6 माह में इसका जो टीका है वो हम रिपीट करवावे
1: जी।
0: और पशुपालन विभाग से अभी जो राजस्थान सरकार ने मात्र 2 रुपए की शुल्क पे आपके पशु के लिए टीका उपलब्ध है
1: जी जी।
0: हम क्या आलस के मारे हमारे पशुओं को जो है हम टीकाकरण नहीं करवाते
1: जी बिल्कुल सर।
0: और ये काफी गंभीर विषय है, हमको सोचना चाहिए
1: जी बिल्कुल।
0: क्योंकि पशु है वो बोल नहीं पाता है और उसकी आवाज तो खुद पशुपालक ही है
1: जी जी।
0: और उसकी जो पीड़ा है वो किसी को बता नहीं पाता है, उसकी पीड़ा को पशुपालक ही समझ सकता है
1: जी जी।
0: तो जो अनबोले जो पशु है जो बोल नहीं सकता है उसको हमको समझना चाहिए, उसके दर्द को समझना चाहिए और उसको समय पे हमको टीकाकरण करवाना चाहिए। साथ ही रोगग्रस्त जो पशु है उसको स्वस्थ पशु से अलग कर देना चाहिए। पशु के मृत्यु के बाद जो है जिस जगह पशु मरा है उस जगह को बढ़िया कीट मतलब जो रोगाणु नाशक दवाओं के साथ में जो है उसको अच्छी तरह से साफ सुथरा करना चाहिए
1: जी बिल्कुल सर।
0: और जैसे जो पशु चिकित्सक से हमको जो है सलाह लेनी चाहिए और मतलब पशु को जो है सूजन जैसे ही आवे तो उसको एक तरह से चीरा लगा के खोल देना चाहिए ताकि जो है उसका थोड़ा सा प्रभाव है पशु में वो थोड़ा कम रहे और उससे पशु को कुछ समय के लिए बचाया जा सकता है
1: जी बिल्कुल।
0: और मतलब एक तरह से देखा जाए तो इसका जो है डॉक्टरी इलाज ही एक इलाज है जिससे पशु को बचाया जा सकता है, बाकी दूसरी प्रकार से कोई इलाज करने की इसमें कोशिश ना करें
1: जी बिल्कुल सर।
0: और इसी प्रकार से जो है ये बीमारी बड़ी घातक है और इसको जो है मैं फिर से यही कहना चाहता हूँ कि गलगोटू और लंगड़ा बुखार का जो है टीकाकरण हमको बरसात से पूर्व करवाना चाहिए। इसी के साथ ही एक और जैसे जो परजीवी है वो वर्षा ऋतु में काफी आक्रामक हो जाते हैं
1: जी बिल्कुल सर।
0: और चूंकि गर्मी के दिनों में देखते हैं मैं तो भेड़ बकरियां वगैरह जो है काफी मात्रा में जो है गर्मी के दिनों में हर जगह घूम जाती है, और भेड़ बकरियों के जो मींगनी होती है उनमें जो है परजीवियों के अंडा है
1: जी जी।
0: वो उनके अंदर होता है, और जैसे ही वर्षा होती है और चारा उगता है तो वो अंडा जंतु बनके और वो जो है घास के ऊपर आ जाता है, और क्योंकि पशु घास को चरता है तो वो घास के साथ में जो है वो परजीवी है उसके पेट में चले जाते हैं।
1: जी बिल्कुल सर।
0: और पेट में जाते हैं तो वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, पशु का रक्त चूसने लगते हैं और वो आंत में चले जाते हैं, हृदय मांसपेशियां गुर्दा यकृत आदि के अंदर वो चले जाते हैं और फिर उनको नुकसान पहुंचाना चालू कर देते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: पशु काफी कमजोर हो जाता है, एकदम बाल खड़े हो जाते हैं, चमड़ी है बिल्कुल उसका जो हड्डियों से चिपकी हुई दिखती है, पशु खाना कम कर देता है
1: जी बिल्कुल।
0: और पतला दस्त करता है, कभी कभी बार जो है दस्त के अंदर खून आता है, जो ये सारी जो रोग के लक्षण है इससे हमको ये समझना चाहिए कि जो ये है अंत परजीवी है, पेट के अंदर होने वाले परजीवी है, और इनकी रोकथाम के लिए जो है वर्षा काल से पूर्व हमको जो है दवा पिलानी चाहिए, एल्बेंडाजोल जो दवा आती है वो पशु को पिलानी चाहिए, या गोली आती है तो वो गोली पशु को देना चाहिए, और साथ ही जो पशुओं को संतुलित पशु आहार देना चाहिए ताकि पशु है वो बीमार नहीं पड़े और हृष्ट पुष्ट रहे और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है बनी रहे। बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग कर देना चाहिए
1: हाँ।
0: क्योंकि अगर किसी पशु को इस तरह जो अंत परजीवी है पेट में आए हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके जो गोबर के साथ में वो परजीवी निकलेंगे और उससे जो है दूसरा जो पशु है वो संक्रमण लग सकता है और उसके भी जो है पेट में कीड़े जा सकते हैं।
1: जी बिल्कुल।
0: पशु का आवास है साफ सुथरा रखना चाहिए, गीलापन नहीं होना चाहिए, और पशु को जो है तालाब के आसपास भरे हुए पानी में नहीं चराना चाहिए ताकि जो है वो परजीवी उसके पेट में नहीं रहे। एक जो बाह्य परजीवी होते हैं जिसमें जू चिचड़े इस प्रकार के भी पशु को लगते हैं तो उनको भी अगर मान लो ऐसे अगर जू चिचड़े और ये लग जाए तो हमको जो पशुपालन विभाग है वहां जाके हमको दवा लानी चाहिए और दवा लाके पशु में लगानी चाहिए, और पशु को माह में कम से कम दो बार उसको अच्छे से नहाना चाहिए ताकि जो है उसका जो बाह्य शरीर है वो भी साफ सुथरा रहे और बाह्य परजीवियों का अटैक नहीं होवे। और साथ ही आजकल जो है पशु में बाह्य परजीवी अगर मान लो हो जाते हैं तो उसकी चमड़ी में इंजेक्शन भी लगते हैं, तो डॉक्टरी सलाह लेके और डॉक्टर से वो इंजेक्शन लगवाए ताकि इस बीमारी से बचा जा सके, क्योंकि पशु हमारा जो वागड़ है पशुपालन आय का कृषि के साथ एक मुख्य स्रोत है
1: जी बिल्कुल,
0: और हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे तो वो हमको अच्छा उत्पादन देंगे, हमारे कृषि कार्य में मदद भी अच्छी तरह से करेंगे, अगर बीमार पशु रहेंगे तो जाहिर सी बात है कृषि और जो पशु उत्पादन है दोनों का जो उत्पादन है वो बाधित होगा
1: जी जी।
0: तो आखिर में मैं पशुपालकों को यही सलाह देना चाहूंगा कि आप जो है वर्षा पूर्व नियमित टीकाकरण करवाएं और बाह्य और अंतरजीवी के जो रोग हैं उनसे बचाव हेतु उनको दवा पिलाएं और टीका लगवाएं।
1: जी बिल्कुल। तो सर जैसा कि कार्यक्रम में आपने बहुत अच्छी बात से हमारे किसान भाई बहनों को अवगत करवा दिया है कि वर्षा ऋतु में जो हमारे पशुओं को रोग होता है उससे हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं, टीकाकरण तो हमारे किसान भाई बहनों को वर्षा से पूर्व करा ही लेना है, और वर्षा जब आ जाती है उसके बाद उन्हें ये ध्यान रखना है कि उनका जो आवास है वो साफ सुथरा रहे, साथ ही पशु को संतुलित और पौष्टिक आहार उन्हें खिलाना है, और इसी के साथ जो बीमार पशु है उनको स्वस्थ पशु से अलग रखना है। ये जो चीजें हैं वो अभी के समय में उन्हें ध्यान रखने वाली होती हैं, तो उन्हें इसका ध्यान रखना है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में पधारे और हमारे किसान भाई बहनों को अपनी इतनी अच्छी जानकारी दी।
0: धन्यवाद।
1: जिम की किसान भाई बहनों अवड़े अपने वैस में सोहन सर जोड़े तक हता ने इन्हें अपना ने घनी असल तरीका तक ही बता दी दू है कि अपने हर ते पशु नु अपना ने ध्यान रखव है। तो किसान भाई बहनों कार्यक्रम में बातें अपनी घना कनी थी गई है, टाइम भी थी गयो है अपने अनस कार्यक्रम तक ही सूटा पड़वा। આપણે સૂટા તો પડા પણ સાથે પહેલા સાંભળી લઈએ કોર ગીત ને મોરે પડો સૂટા.

थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बार तेनू खवानो सोड़ो, बेशी अनाज तकी ना तू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भाई ने बोलो, आपे कारे विचार करियो है कि जया पेड़ की छांव में आपड़े रहो या आपड़े ने कितनी शांति मिले है। जमी हवा में आपड़े हाल रहो, ये भी आपड़ा थकी कई आश राके है। हो भी अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगा दूंगा, पानी में बचा दूंगा, मैं अपनी धरती में जीवन दान लूंगा। होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना कदम है, ये अबावरा काल में बदलाव की शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा बचपन। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर
1: और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर।
0: स्वीकार कीजिए साथियों हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: जी हां श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन को आज एक नए विषय के साथ में। आज हम बच्चों की पढ़ाई से जुड़े एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे कशिश, जो लगभग हर घर की कहानी बन चुका है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे ही स्कूल से बच्चा घर आता है और होमवर्क की बात होती है तो कई घरों में तनाव का माहौल बन जाता है।
0: जी
1: कोई
0: हाँ।
1: बच्चा कहता है कि मुझे होमवर्क नहीं करना, तो कोई रोने लगता है, तो कोई बहाने बनाने लगता है, तो कोई मोबाइल देखने की जिद करने लगता है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में

0: माता पिता भी परेशान हो जाते हैं, कई बार डांट फटकार या गुस्से का सहारा लेने लगते हैं। लेकिन श्रोता साथियों, क्या हमने कभी यह सोचा कि आखिर होमवर्क बच्चों के लिए बोझ क्यों बनता जा रहा है?
1: बिल्कुल।
0: क्या वास्तव में समस्या होमवर्क में है या उसे करने के तरीके में है?
1: जी हाँ।
0: आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: होमवर्क को बोझ नहीं बल्कि सीखने का सुनहरा अवसर कैसे बनाएं?
1: जी हाँ अंजलि जी, तो बातें ढेर सारी होंगी आज के इस कार्यक्रम में, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे साथियों को हम गीत सुनवाएं?
0: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय तो आपको बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं साथियों, कि हम बच्चों को बताएं कि होमवर्क बोझ नहीं होता बल्कि सीखने का अवसर होता है। जैसा कि अंजलि जी, गीत से पहले आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोता साथियों को बताई थी।
1: जी जी।
0: कि होमवर्क का उद्देश्य जो है वो बच्चों पर ज्यादा दबाव डालना नहीं होता, बल्कि बच्चों को सीखने का एक नया अवसर ये प्रदान करता है।
1: जी जी।
0: ऐसे में श्रोता साथियों, हमें बच्चों को ये बताना है कि वो होमवर्क को घर पर दोहराएं, समझे और अभ्यास करते रहें, क्योंकि जब बच्चा स्वयं अभ्यास करता है तब उसकी समझ मजबूत होती है अंजलि जी, और वह सीखी हुई बातों को लंबे समय तक याद भी रख पाता है। देखते हैं कि होमवर्क को सही दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथियों, यहाँ पर समस्या तब शुरू होती है जब होमवर्क केवल जिम्मेदारी या दबाव बन जाता है। कई बार बच्चे स्कूल से थके हुए घर लौटते हैं, घर पहुंचते ही उन्हें बिना आराम किए पढ़ने के लिए बैठा दिया जाता है।
1: बिल्कुल।
0: कुछ बच्चों पर तो अंजलि जी बहुत अधिक होमवर्क का दबाव होता है, तो कुछ बच्चों को तो ये पढ़ाई कठिन लगती है। ऐसे में श्रोता साथियों, उनके मन में होमवर्क के प्रति डर और नकारात्मक भावनाएं पैदा हो जाती हैं।
1: जी हाँ, बिल्कुल कशिश।

0: और बच्चों के प्रयासों की सराहना करेंगे तो बच्चे उसे और अधिक रुचि से करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, केवल गलतियां निकालने के बजाय सही प्रयासों की प्रशंसा करना भी जरूरी होता है। साथ ही होमवर्क को रोचक बनाने के लिए पढ़ाई के बीच बीच छोटे छोटे विराम भी दिए जा सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: कठिन विषय पहले और आसान विषय बाद में करने की योजना बनाई जा सकती है। समय का सही प्रबंधन बच्चों को तनाव से बचाता है और पढ़ाई को और भी आसान बनाता है। अंजलि जी,
1: बिल्कुल कशिश। तो इस तरीके से कार्यक्रम में आज हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान रहे हैं कि होमवर्क को हमें बोझ नहीं समझना है बल्कि सीखने का अवसर बनाने की जरूरत है। तो ये बातें निरंतर आगे और भी कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों के साथ बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

हम तुम संग है तो फिर क्या गम। तू मेरा दिल, तू मेरी जान,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले कशिश हमने ढेर सारी बातों को जाना ही कि किस तरीके से बच्चों के होमवर्क को हमें रोचक बनाना है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को पूरा दिन केवल पढ़ाई में ही नहीं बिताने देना चाहिए। उन्हें खेलने, परिवार के साथ समय बिताने, कहानी पढ़ने, अपनी रुचियों को पूरा करने का अवसर भी मिलना चाहिए।
1: जी हाँ।
0: संतुलित दिनचर्या वाला बच्चा होमवर्क को अधिक उत्साह से करता है।
1: बिल्कुल।
0: हमें बच्चों को ये समझाना चाहिए कि होमवर्क केवल शिक्षक को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने के लिए हर दिन किया गया छोटा सा अभ्यास भविष्य में बड़े आत्मविश्वास और सफलता का आधार बनता है।
1: बिल्कुल।
0: जब बच्चा यह समझ लेता है कि पढ़ाई उसकी अपनी प्रगति के लिए है, तब वह होमवर्क को बोझ नहीं बल्कि सीखने का अवसर मानने लगता है।
1: जी जी।
0: इसलिए कहा जा सकता है श्रोता साथियों कि होमवर्क को लेकर बच्चों और माता पिता दोनों की सोच बदलने की आवश्यकता है। यदि घर में सहयोग, प्रोत्साहन, धैर्य और सकारात्मक माहौल होगा तो बच्चा पढ़ाई से नहीं भागेगा बल्कि सीखने में आनंद महसूस करेगा। यही आनंद उसे जीवन भर सीखते रहने की प्रेरणा देगा और शिक्षा को केवल अंकों तक सीमित नहीं रहने देगा।
1: साथ ही हम अंजलि जी अपने बच्चों को ये भी बताएं कि होमवर्क का वास्तविक उद्देश्य केवल कॉपी के पन्ने भरना या अगले दिन शिक्षक को दिखाना नहीं है। यह बच्चों को आत्मनिर्भर बनने, नियमित अभ्यास करने, समय का महत्व समझने और अपने सीख को मजबूत करने का अवसर देता है।
0: बिल्कुल।
1: यदि बच्चे ये समझ जाएंगे साथियों कि होमवर्क उनके विकास का एक साधन है न कि सजा का, तो पढ़ाई के प्रति उनका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल सकता है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए जरूरत होमवर्क को खत्म करने की नहीं बल्कि उसे देखने और कराने के तरीकों को बदलने की है। अंजलि जी।
0: जी हाँ। यही श्रोता साथियों, अक्सर हम बच्चों से ये उम्मीद करते हैं कि वे हर काम पूरी तरह सही करें, लेकिन ये भूल जाते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में गलतियां होना स्वाभाविक है। यदि बच्चा किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है या होमवर्क में गलती करता है कशिश, तो उसे डांटने के बजाय समझने, सुधारने का अवसर देना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: जब बच्चों को यह विश्वास मिलता है कि गलती करने पर उनका मजाक नहीं उड़ाया जाएगा बल्कि उन्हें सही दिशा दिखाई जाएगी, तब वे बिना डर के सीखने का प्रयास करते हैं और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
1: बिल्कुल।
0: ये भी याद रखना चाहिए श्रोता साथियों कि हर बच्चा अलग होता है। कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे धीरे समझता है, तो कोई लिखने में अच्छा होता है, तो कोई बोलकर अपनी बात बेहतर तरीके से व्यक्त करता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए बच्चों की तुलना करने की बजाय उनकी व्यक्तिगत क्षमता और सीखने की गति का सम्मान करना आवश्यक है। जब बच्चा अपने प्रयासों की सराहना महसूस करता है, तब वह पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि अपनी प्रगति का माध्यम मानता है।
1: जी हाँ अंजलि जी। साथी दोस्तों, माता पिता, शिक्षक यदि मिलकर बच्चों के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करेंगे जहाँ जिज्ञासा को प्रोत्साहन मिले, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता हो, प्रयासों की सराहना हो और सीखने को अंकों से अधिक महत्व दिया जाए,
0: जी जी,
1: तो अंजलि जी शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा। होमवर्क तब केवल किताबों तक सीमित नहीं रहेगा साथियों, बल्कि बच्चों में अनुशासन, जिम्मेदारी, धैर्य, आत्मविश्वास के साथ साथ समस्या का समाधान खोजने जैसी जीवन भर काम आने वाली क्षमताओं का भी विकास करेगा।
0: जी हाँ।
1: ऐसे में हम अपने बच्चों को यह एहसास दिलाएं कि पढ़ाई किसी प्रतियोगिता में दूसरों को हराने के लिए नहीं है बल्कि स्वयं को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने के लिए है। जब घर का माहौल सहयोग, विश्वास और प्रोत्साहन से भरा होगा, तब बच्चे बिना किसी डर के नई बातें सीखने का साहस करेंगे।
0: जी हाँ।
1: वे केवल अंजलि जी अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थी नहीं बनेंगे बल्कि समझदार, जिज्ञासु और आत्मनिर्भर सीखने वाले भी बनेंगे।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हमारे श्रोता साथियों को हम कार्यक्रम के अंत में यही कहना चाहेंगे कि होमवर्क का असली महत्व उसकी मात्रा में नहीं बल्कि उससे मिलने वाली सीख में छिपा होता है। यदि हम बच्चों को यह समझा दें कि हर अभ्यास उन्हें अपने सपनों के एक कदम और करीब ले जाता है, तो वे किताबों को बोझ नहीं बल्कि अपनी भविष्य का साथी मानेंगे।
1: बिल्कुल।
0: ऐसा बचपन केवल परीक्षा में ही नहीं बल्कि जीवन की हर चुनौती में धैर्य, समझ और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। यही सीखने की सबसे बड़ी सफलता है और यही सच्चे बचपन की सबसे सुंदर पहचान भी है।
1: जी हाँ अंजलि जी। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी हैं, और अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल।
1: तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे साथियों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत हम सुनवाएं।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ।
1: हमारा पिन कोड नंबर है 3200001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेश्वर को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM
1: लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हमारी बातें रहने वाली है युवा उद्यमिता को लेकर, छोटे उद्योगों से बड़े अवसरों तक।
0: बिल्कुल
1: साथियों, कहना चाहेंगे आज का युवा केवल नौकरी की तलाश करने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला, बनने की क्षमता रखने वाला युवा है।
0: जी।
1: बदलते समय के साथ उद्यमिता युवाओं के लिए एक ऐसा रास्ता बन रही है जहां छोटी सी शुरुआत भी भविष्य में बड़े अवसरों का आधार बन सकती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम में हम हमारे युवा साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से एक छोटी सी शुरुआत हमारे युवा साथियों के लिए बड़े सपने की तरह साबित हो सकती है।
1: बिल्कुल,
0: तो ऐसी ढेर सारी बातें रहेंगी युवा साथियों। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में हम आपको पहले गीत संगीत के साथ मनोरंजन करवाते हैं, तो आइए जागृति जी, पहले हमारे युवा साथियों को हम यहाँ पर एक प्यारा सा गीत सुनवा देते हैं।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में युवाओं की आवाज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था और हमारी बातचीत भी रही थी कि आज हम बात करने वाले हैं युवा उद्यमिता यानी कि छोटे उद्योगों से बड़े अवसरों तक को।
1: बिल्कुल बिल्कुल जागृति जी, जैसा कि आपने बताया था कि आज के जो हमारे युवा साथी हैं वो केवल नौकरी तलाश करने वाले नहीं है बल्कि रोजगार देने वाले क्षमता रखने वाले युवा हैं। साथियों, ऐसे में अगर उद्यमिता की बात करें तो उद्यमिता का मतलब होता है केवल बड़ी कंपनियां खोलना या लाखों रुपए का निवेश करना नहीं।
0: बिल्कुल,
1: यदि किसी युवा के पास जागृति जी कोई हुनर है, विचार है, स्थानीय संसाधनों की समझ है और उसे काम में बदलने का साहस है तो वहीं से उद्यमिता की शुरुआत हो सकती है।
0: जी हाँ।
1: साथियों, घर से बनाया गया खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प, सिलाई कढ़ाई, डिजिटल सेवाएं, कृषि आधारित व्यवसाय, स्थानीय उत्पादों की बिक्री या छोटी सर्विस भी श्रोता साथियों, ये सभी छोटे उद्योग के रूप में शुरुआत बन सकते हैं।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि अक्सर युवा ये सोचकर अपना काम शुरू नहीं कर पाते कि उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है या उनका व्यवसाय बहुत छोटा है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन किसी भी बड़े व्यवसाय की शुरुआत हमेशा बड़े स्तर से नहीं होती। छोटी शुरुआत को कमतर समझना सबसे बड़ी गलती हो सकती है कशिश।
1: बिल्कुल,
0: मान लीजिए श्रोता साथियों कि किसी युवा को मोबाइल फोटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग का हुनर आता है, वो शुरुआत में अपने आसपास के दुकानदारों, छोटे व्यवसायों या स्थानीय कार्यक्रमों के लिए डिजिटल सामग्री तैयार कर सकता है।
1: जी हाँ।
0: धीरे धीरे उसका काम बढ़ सकता है, ग्राहक बढ़ सकते हैं और वही छोटा काम एक व्यवस्थित व्यवसाय का रूप ले सकता है।
1: बिल्कुल,
0: इसी तरह श्रोताओं, ग्रामीण क्षेत्र का युवा स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक हुनर को बाजार से जोड़कर आगे बढ़ सकता है। हमारे आसपास उपलब्ध कृषि उत्पाद, हस्तशिल्प, खाद्य पदार्थ और स्थानीय कला, रोजगार और व्यवसाय के नए अवसर पैदा भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, साथी श्रोता साथियों, एक अच्छा आइडिया तभी सफल होता है जब उसे सही तरीके से जमीन पर उतारा जाए।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए युवा को सबसे पहले ये समझना चाहिए जागृति जी कि लोगों की जरूरत आखिर क्या है, वह इस जरूरत को किस तरह पूरा कर सकता है। श्रोता साथियों, व्यवसाय शुरू करने से पहले बाजार को समझना, ग्राहकों की पसंद जानना, लागत और संभावित कमाई का अनुमान लगाना और अपने प्रतिस्पर्धियों को देखना बहुत जरूरी है। इसके बाद एक छोटी सी योजना बनाकर शुरुआत की जा सकती है। शुरुआत में तो दोस्तों बहुत बड़ा निवेश करने के बजाय आपको सीमित संसाधनों में काम शुरू करना है और अनुभव के साथ उसे आगे बढ़ाना है और अधिक व्यवहारिक बनाना है।
0: बिल्कुल, इसी के साथ हम कह सकते हैं कि आज इंटरनेट और डिजिटल तकनीक ने छोटे व्यवसायों के लिए भी नए रास्ते खोल दिए हैं। सोशल मीडिया, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन प्रचार और ई कॉमर्स जैसे माध्यमों से युवा अपने स्थानीय उत्पादों और सेवाओं को अपने क्षेत्र से बाहर तक पहुंचा सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: एक छोटा सा व्यवसाय भी यदि अच्छी गुणवत्ता, सही कीमत और भरोसेमंद सेवा देता है तो वो धीरे धीरे अपनी पहचान बना सकता है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल केवल प्रचार के लिए नहीं बल्कि सीखने और बाजार को समझने के लिए भी किया जाता है। युवा अपने क्षेत्र से जुड़े नए कौशल सीख सकते हैं और दूसरे सफल उद्यमियों से प्रेरणा भी ले सकते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, साथ ही हमारे युवा साथियों को बताना चाहेंगे कि कौशल और उद्यमिता का संबंध भी गहरा है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि उद्यमिता में केवल पैसा लगाना पर्याप्त नहीं होता साथियों, इसके लिए कई प्रकार के कौशलों की जरूरत होती है। जैसे कि संवाद करना, ग्राहकों से व्यवहार कैसे करना है, समय का प्रबंधन, हिसाब किताब रखना, डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करना और समस्या आने पर समाधान खोजना। इसलिए जागृति जी, युवा अपने हुनर को लगातार विकसित कर सकते हैं क्योंकि कौशल जितना मजबूत होगा व्यवसाय को आगे बढ़ाने का आत्मविश्वास उतना ही मजबूत होगा।
0: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं युवा उद्यमिता को लेकर, छोटे उद्योगों से बड़े अवसरों तक हम किस तरह से पहुंच सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ये बातें निरंतर हमारे श्रोता साथियों के साथ बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी बिल्कुल, तो आइए युवा साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि साथियों, गीत से पहले बातचीत बहुत अच्छी चल रही थी और हम जान रहे थे कि किस प्रकार से युवा उद्यमिता छोटे उद्योगों से बड़े अवसरों तक का सफर है।
1: बिल्कुल,
0: हमने जैसा कि जागृति जी गीत से पहले ढेर सारी बातें हमारे युवा साथियों से की थी, हमने जाना था कि छोटी शुरुआत किस प्रकार से बड़ा सपना बन सकती है, एक छोटा सा आइडिया एक नया व्यवसाय बन सकता है, डिजिटल दौर और युवा उद्यमिता का क्या संबंध है, साथ ही कौशल और उद्यमिता के संबंध को भी हम जान पाए थे। यहीं अगर बात करें कि पैसा ही सबसे बड़ी बाधा नहीं है युवा साथियों, तो हम देखते हैं कि कई युवाओं को जागृति जी ऐसा लगता है कि व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पूंजी चाहिए होती है।
1: बिल्कुल,
0: वास्तव में श्रोता साथियों, व्यवसाय के प्रकार के अनुसार शुरुआती लागत अलग अलग हो सकती है। कुछ काम बहुत कम संसाधनों में भी शुरू किए जा सकते हैं। इसके अलावा युवाओं को बैंकिंग सुविधाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली उद्यमिता एवं स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी लेनी चाहिए। साथियों, किसी भी योजना का लाभ लेने से पहले उसकी आधिकारिक पात्रता, शर्तें और प्रक्रिया आपको जरूर समझनी चाहिए।
1: बिल्कुल, इसी के साथ हम कहना चाहेंगे कि उद्यमिता का मतलब बिना सोचे जोखिम उठाना नहीं है। इसमें जोखिम को समझना और उसकी तैयारी करना जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: शुरुआत से पहले बजट बनाना, अनावश्यक खर्चे से बचना, बाजार की मांग समझना और छोटे स्तर पर प्रयोग करना युवाओं के लिए मददगार हो सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: हम कह सकते हैं कशिश की व्यवसाय में असफलता भी सीखने का अवसर बन सकती है। अगर कोई योजना उम्मीद के अनुसार सफल नहीं होती है श्रोताओं, तो उसे सीख लेकर अगली रणनीति बेहतर बनाई जा सकती है।
0: जी हाँ, साथ ही श्रोता साथियों, जब कोई युवा अपना व्यवसाय शुरू करता है तो उसका लाभ केवल उसे नहीं मिलता, बल्कि जागृति जी, व्यवसाय बढ़ने पर वो दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकता है।
1: बिल्कुल,
0: स्थानीय उत्पादों को बाजार मिलता है साथियों, स्थानीय हुनर को पहचान मिलती है और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां भी इससे मजबूत होती है। इसलिए युवा उद्यमिता केवल व्यक्तिगत सफलता का रास्ता नहीं है, बल्कि समाज में रोजगार और आत्मनिर्भरता बढ़ाने का भी एक माध्यम है।
1: जी हाँ कशिश, तो हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि साथियों, आप अपने सपनों को केवल नौकरी की तलाश तक सीमित मत रखिए।
0: बिल्कुल,
1: अपने आसपास की समस्या और जरूरतों को ध्यान से देखिए। हो सकता है कशिश कि जिस समस्या को हम रोज देख रहे हैं उसी में किसी नए व्यवसाय का अवसर छिपा हो।
0: बिल्कुल,
1: साथियों आपसे कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि छोटा काम छोटा सपना नहीं होता, जरूरी है कि शुरुआत ईमानदारी से हो, सीखने की इच्छा बनी रहे और हर कदम के साथ काम को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए याद रखिए, बड़ा अवसर हमेशा बड़े निवेश से नहीं, बड़ी सोच विचार और छोटी सी साहसी शुरुआत से पैदा होता है। आज का युवा अगर अपने हुनर, विचार और मेहनत को सही दिशा दे कशिश, तो वो केवल अपने लिए रोजगार नहीं बना सकता, बल्कि दूसरों के लिए भी अवसरों के दरवाजे खोल सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, साथी दोस्तों, समस्या को अवसर की तरह आपको देखना जरूरी है। जैसे कि सफल उद्यमी केवल ये नहीं देखते जागृति जी कि बाजार में आखिर बिक क्या रहा है, बल्कि ये भी पहचानते हैं कि लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
1: जी हाँ।
0: और उसका बेहतर समाधान क्या हो सकता है। साथ ही स्थानीय जरूरतों को समझना भी जरूरी है, जैसे कि गांव और छोटे शहरों में भी ऐसी कई जरूरतें होती हैं जिनके लिए लोग दूर जाते हैं। युवा इन स्थानीय जरूरतों को पहचान कर उपयोगी सेवाएं शुरू कर सकते हैं। जागृति जी, छोटे व्यवसाय की सबसे बड़ी ताकत दोस्तों ग्राहक का भरोसा होता है। ऐसे में अच्छी गुणवत्ता और ईमानदार व्यवहार धीरे धीरे व्यवसाय की मजबूत पहचान बन सकते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, तो हमारे श्रोता साथियों को आज की इस बातचीत के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि दोस्तों, आप सपने देखने में कभी कंजूसी मत कीजिए, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए पहला कदम उठाने से डरिए भी मत। याद रखिए, किसी भी बड़े उद्योग की शुरुआत एक विचार से होती है, एक विचार, एक हुनर, एक छोटी सी जरूरत और उसे पूरा करने का साहस, यही उद्यमिता की पहली सीढ़ी है।
0: बिल्कुल,
1: जरूरी नहीं है श्रोताओं की शुरुआत किसी बड़े कार्यालय से हो, बड़ी मशीन से हो या बहुत बड़े निवेश से हो। शुरुआत हमारे घर के एक कमरे से भी हो सकती है, हमारे गांव की एक छोटी दुकान से भी हो सकती है, हमारे खेत से भी हो सकती है, हमारे हुनर से भी हो सकती है, हमारे मोबाइल से या हमारे दिमाग में आए एक नए विचार से भी हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: हो सकता है आज हमारे पास केवल एक हुनर हो सकता है हमारे पास केवल एक छोटा सा विचार हो सकता है हमारे पास पूंजी कम हो, लेकिन दोस्तों, अगर हमारे पास सीखने की इच्छा, मेहनत करने का जज्बा और सही दिशा में आगे बढ़ने का साहस है, तो यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, साथियों आपसे कहना चाहेंगे कि युवा उद्यमिता केवल अपना व्यवसाय शुरू करने का नाम नहीं है, बल्कि अपने विचारों को अवसर में और अपने हुनर को पहचान में बदलने का भी नाम है। जरूरी नहीं है कि शुरुआत हमेशा बड़ी ही की जाए। एक छोटा सा विचार, सीमित संसाधन और सीखने की सच्ची इच्छा भी जागृति जी, भविष्य की बड़ी सफलता की नींव बन सकती है। साथियों, अपने आसपास की जरूरतों को आप पहचानिए, नए विचारों के लिए खुले रहिए और अपने काम में ईमानदारी और गुणवत्ता को सबसे ऊपर रखिए, क्योंकि श्रोता साथियों, सपने वह नहीं जो आंखें बंद करने पर दिखाई दे, सपने तो वो हैं जो आंखें खोलकर उन्हें पूरा करने का हौसला भी दे।
1: बिल्कुल कशिश, तो अंत में हमारे श्रोता साथियों को ये कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, अपने भीतर छिपे हुनर को पहचानिए, अपने विचार को महत्व दीजिए, छोटी शुरुआत से शर्माइए मत, सीखने से कभी रुकिए मत, असफलता से घबराइए मत और सफलता मिलने पर दूसरों को साथ लेकर चलिए, क्योंकि बड़ा बनने के लिए शुरुआत बड़ी होना जरूरी नहीं है, सोच बड़ी होना बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ।
1: याद रखिए, एक छोटा विचार कल का बहुत बड़ा व्यवसाय बन सकता है, एक छोटा व्यवसाय कल कई परिवारों की उम्मीद बन सकता है, एक युवा की मेहनत कल कई युवाओं के लिए रोजगार का रास्ता खोल सकती है।
0: बिल्कुल,
1: क्यों ना आज से ही हम अपने मन में ठान लें कि हम केवल नौकरी खोजने की सोच तक सीमित नहीं रहेंगे, हम अपने हुनर को पहचानेंगे, नए कौशल सीखेंगे, समस्याओं में अवसर खोजेंगे और अपनी क्षमता के अनुसार कुछ नया करने की कोशिश करेंगे।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो इन्हीं बातों के साथ दोस्तों, अब हम कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति चाहेंगे, क्योंकि बातें कार्यक्रम में आज हमारी आपसे ढेर सारी रही।
1: बिल्कुल,
0: तो विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं यहाँ पर एक और गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं।

सेहत नो राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिंदगी पर बात में शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सो व्यायाम ने तात काड़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाई बोनो, घर के निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मसोरा ने मुस्कान।
1: होवे इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा।
0: सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएगा तो हूँ था
3: नाना अंजलि बुन हूँ था का?
2: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
3: ओ अंजलि बुन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
2: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
3: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो। आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
2: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनो ने कह कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपनी साथी अंजलि पारेश्वर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि व्यस्त जिंदगी में सेहत के लिए समय निकालना भी जरूरी है। जी हाँ, सुबह जल्दी उठना, घर के काम निपटाना, बच्चों को तैयार करना, काम पर जाना, खेत खलियान और दुकान संभालना, ऑफिस की जिम्मेदारी पूरी करना और फिर शाम को घर लौटकर परिवार की जिम्मेदारी निभाना। आज के जिंदगी में हम सभी किसी न किसी तरह व्यस्त हैं, लेकिन श्रोता साथियों, इस भागदौड़ में अक्सर एक चीज पीछे छूट जाती है, वो है हमारा भोजन और हमारा पोषण। क्योंकि मनीषा, कई कामकाजी लोग सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं, कोई चाय और बिस्किट के सहारे दिन शुरू करता है तो कोई दोपहर तक कुछ नहीं खाता। कुछ लोग भूख लगने पर समोसा, कचौरी, नमकीन, पैकेट वाले खाद्य पदार्थ खाकर काम चला लेते हैं और वहीं कई लोग पानी पीना भी भूल जाते हैं। शायद हमें लगता है कि आज खाना नहीं खाया तो क्या हुआ, बाद में खा लेंगे, लेकिन श्रोता साथियों, शरीर को ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और पर्याप्त पानी नियमित रूप पर चाहिए होता है।
0: जी हाँ,
1: भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं बल्कि शरीर को काम करने की ताकत और दिमाग को सक्रिय रखने के लिए जरूरी है। तो आज सवाल है कि काम की व्यस्तता के बीच हम अपने भोजन और पोषण का ध्यान कैसे रखें? जानेंगे इस विषय पर कार्यक्रम के माध्यम से ढेर सारी बातों को, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़ने आपड़े में देखाए तो आपड़ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बुंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है, ये हुके जाएंगा। खेतर, मंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है, ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि व्यस्त जिंदगी में सेहत के लिए समय निकालना भी जरूरी है। जी हाँ, सुबह जल्दी उठना, घर के काम निपटाना, बच्चों को तैयार करना, काम पर जाना, खेत खलियान और दुकान संभालना, ऑफिस की जिम्मेदारी पूरी करना और फिर शाम को घर लौटकर परिवार की जिम्मेदारी निभाना। आज के जिंदगी में हम सभी किसी न किसी तरह व्यस्त हैं, लेकिन श्रोता साथियों, इस भागदौड़ में अक्सर एक चीज पीछे छूट जाती है, वो है हमारा भोजन और हमारा पोषण। क्योंकि मनीषा, कई कामकाजी लोग सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं, कोई चाय और बिस्किट के सहारे दिन शुरू करता है तो कोई दोपहर तक कुछ नहीं खाता। कुछ लोग भूख लगने पर समोसा, कचौरी, नमकीन, पैकेट वाले खाद्य पदार्थ खाकर काम चला लेते हैं और वहीं कई लोग पानी पीना भी भूल जाते हैं। शायद हमें लगता है कि आज खाना नहीं खाया तो क्या हुआ, बाद में खा लेंगे, लेकिन श्रोता साथियों, शरीर को ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और पर्याप्त पानी

0: मूत्र ऊपर चाहिए होता है।
1: जी हाँ,
0: भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं बल्कि शरीर को काम करने की ताकत और दिमाग को सक्रिय रखने के लिए जरूरी है। तो आज सवाल है कि काम की व्यस्तता के बीच हम अपने भोजन और पोषण का ध्यान कैसे रखें। जानेंगे इस विषय पर कार्यक्रम के माध्यम से ढेर सारी बातों को, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों गीत से पहले विषय से तो रूबरू करा ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं कामकाजी लोगों के लिए पोषण का ध्यान रखने के तरीकों को लेकर। यहीं अगर अंजलि जी बात करें कि कामकाजी लोगों के लिए पोषण की जरूरत क्यों होती है इसकी, तो श्रोता साथियों काम चाहे शारीरिक हो या मानसिक, शरीर को लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्यालय में बैठकर काम करने वाले व्यक्ति को भी अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए पोषण की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल।
0: वहीं श्रोता साथियों खेत, निर्माण कार्य, दुकान, फैक्ट्री या अन्य शारीरिक मेहनत में भी अंजलि जी हम देखते हैं कि पर्याप्त ऊर्जा और पोषण की आवश्यकता होती है। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि पौष्टिक भोजन शरीर को ताकत देने के साथ साथ काम करने की क्षमता को बनाए रखने में मदद करता है।
1: बिल्कुल।
0: सही भोजन लेने से व्यक्ति हम देखते हैं कि लंबे समय तक सक्रिय रह सकता है और दिन भर की थकान को बेहतर तरीके से निपटाकर काम कर सकता है। श्रोता साथियों यदि भोजन में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो हम देखते हैं कि कमजोरी, थकान और काम में मन न लगने जैसे समस्या है वो बढ़ती है। इसलिए श्रोता साथियों कामकाजी लोग होते हैं उनके जीवन में पोषण की आवश्यकता है वो बहुत जरूरी होती है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। कामकाजी व्यक्ति के लिए सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है कि भोजन समय की बर्बादी नहीं बल्कि सही भोजन हमें काम करने की ऊर्जा देता है। अगर शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिलेगा तो थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन और काम में मन न लगना जैसी परेशानियां महसूस हो सकती हैं। लंबे समय तक भोजन की अनदेखी करने से स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए चाहे व्यक्ति खेत में काम करता हो, मजदूरी करता हो, दुकान चलाता हो, कार्यालय में बैठकर काम करता हो, स्कूल में पढ़ाता हो, वाहन चलाता हो या घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी संभालता हो, हर किसी के लिए संतुलित भोजन जरूरी है। इसके लिए हमें दिन की शुरुआत नाश्ते से करनी है। जी हाँ श्रोता साथियों, सुबह का नाश्ता दिन के महत्वपूर्ण भोजनों में से एक है, लेकिन काम पर जल्दी जाने की वजह से बहुत से लोग नाश्ता छोड़ देते हैं। नाश्ता बहुत भारी होना जरूरी नहीं है, घर में उपलब्ध चीजों से पौष्टिक नाश्ता हम बना सकते हैं। जैसे कि मनीषा, हम पोहा या उपमा खा सकते हैं, दलिया दूध या दही के साथ रोटी खा सकते हैं, मूंग या चने का चिल्ला खा सकते हैं, अंकुरित अनाज बाजरा, ज्वार या मक्का की रोटी खा सकते हैं, सब्जी के साथ रोटी खा सकते हैं, मूंगफली गुड़ के साथ कोई स्थानीय अनाज मौसमी फल खा सकते हैं।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, अगर सुबह समय कम है तो रात में ही थोड़ी तैयारी की जा सकती है। उदाहरण के लिए चने या मूंग को भिगोकर रखा जा सकता है, आटा पहले से तैयार किया जा सकता है, इससे सुबह जल्दी और पौष्टिक नाश्ता तैयार हो सकता है। चाय बिस्कुट को पूरा नाश्ता मानना सही नहीं है, चाय के साथ कुछ पौष्टिक खाद्य पदार्थ हमें जरूर शामिल करने चाहिए।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें भोजन का समय है वो भी श्रोता साथियों में निश्चित रखना है। हम देखते हैं कि अंजलि जी कामकाजी लोग हैं वो अपने भोजन का समय निश्चित नहीं रखते हैं।
1: बिल्कुल।
0: काम ज्यादा आ जाता है, कभी कोई और काम आ जाता है, जिससे हम देखते हैं कि उनका खाना समय पर नहीं होता है और छूट जाता है। और जहाँ तक संभव श्रोता साथियों नाश्ते, दोपहर का भोजन और रात के भोजन का समय है वो हमें निश्चित रखना चाहिए। लंबे समय तक भूखे रहने के बाद अगर श्रोता साथियों हम अचानक खाना खाते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए परेशानी हो सकती है। यदि श्रोता साथियों किसी दिन काम अधिक हो, भोजन का समय न मिले और समय छूट जाए तो श्रोता साथियों उस समय भी हमें हल्का पौष्टिक भोजन है वो हमें कर लेना है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। इसी के साथ थाली में विविधता रखें। श्रोता साथियों संतुलित भोजन का मतलब केवल महंगे खाद्य पदार्थ खाना नहीं है। हमारे गाँवों और स्थानीय क्षेत्रों में ऐसी बहुत सी चीजें उपलब्ध हैं जो पोषण से भरपूर होती हैं। एक सामान्य भोजन में कोशिश करें कि अनाज, दाल, चना, अन्य प्रोटीन स्रोत, सब्जी, सलाद, फल, दही और अन्य उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थ का संतुलन बना रहे। स्थानीय अनाज जैसे कि बाजरा, ज्वार, मक्का और अन्य मोटे अनाज भी हम थाली में शामिल कर सकते हैं। क्योंकि याद रखिए श्रोता साथियों, पौष्टिक भोजन का मतलब महंगा भोजन नहीं बल्कि विविध और संतुलित भोजन है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं। तो ये बातें हमारे साथियों से आगे भी हम ऐसे ही जारी रखेंगे, लेकिन क्यों ना अभी श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दी।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वाघ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि हमें दिन की शुरुआत नाश्ते से करनी है और उसी के साथ थाली में विविधता बनाए रखनी है। यही बात आती है कि काम के बीच पौष्टिक नाश्ता रखें। मनीषा, कई बार काम के दौरान अचानक भूख लगती है, उस समय आसपास जो मिलता है हम वही खा लेते हैं।
1: हाँ।
0: अगर संभव हो तो घर से छोटा सा पौष्टिक नाश्ता हम साथ लेकर आ सकते हैं, जैसे कि भुना चना, मूंगफली, मखाना, मौसमी फल, अंकुरित चना या मूंग, थोड़े सूखे मेवे, घर की बनी रोटी, सत्तू का पेय, घर का बना पौष्टिक लड्डू। इससे बार बार तले हुए खाद्य पदार्थ खाने की आदत को कम करने में मदद मिल सकती है।
1: जी हाँ।
0: इसी के साथ श्रोता साथियों, कामकाजी लोगों के लिए पर्याप्त पानी पीना बहुत जरूरी है, खासकर गर्मी में या जब व्यक्ति बाहर शारीरिक मेहनत करता हो। कई लोग काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि पानी पीना भूल जाते हैं, इसलिए अपने साथ श्रोता साथियों पानी की बोतल रखें और समय समय पर पानी पीते रहें। अगर बहुत अधिक पसीना निकलता है या व्यक्ति गर्म वातावरण में रहता है या काम करता है तो शरीर में पानी और लवण की कमी से बचने के लिए स्थानीय स्वास्थ्य सलाह के अनुसार उचित पेय लिया जा सकता है। प्यास लगने का इंतजार न करें, समय समय पर पानी पीते रहें।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को नमक और तेल का भी संतुलन रखना है। भोजन में नमक और तेल दोनों की श्रोता साथियों जरूरत होती है, लेकिन मात्रा का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। बहुत अधिक नमक, कभी अधिक तेल हमारे भोजन की आदत ही उसे बिगाड़ सकता है।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही हम देखते हैं कि घर में खाना बनाते समय तेल और नमक की मात्रा का ध्यान रखना हमारे लिए जरूरी है। सब्जियों को बहुत अधिक तेल में तलने के बजाय श्रोता साथियों सामान्य तेल में हम पका सकते हैं। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि हमें अपने भोजन में विविधता रखनी है। संतुलित भोजन का अर्थ है श्रोता साथियों कि रोज केवल एक ही प्रकार का भोजन न करना। अलग अलग अनाज, दालें, सब्जियां, फल और अन्य पौष्टिक पदार्थ हैं, उन्हें हम अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: एक दिन श्रोता साथियों दाल रोटी सब्जी, दूसरे दिन चावल दाल सब्जी, किसी दिन श्रोता साथियों बाजरे की रोटी या ज्वार की रोटी भी आप खा सकते हैं, और किसी दिन श्रोता साथियों खिचड़ी बनाकर भी आप खा सकते हैं। इससे अंजलि जी हम देखते हैं कि भोजन में विविधता के साथ साथ हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है, वो भी भरपूर मात्रा में मिलती है।
0: बिल्कुल मनीषा, काम के दौरान कई लोगों की आदत होती है कि वह थोड़ी देर में चाय और कॉफी लेते हैं। श्रोता साथियों, चाय पीना अपने आप में समस्या नहीं है, लेकिन अगर चाय के कारण भोजन छूट रहा है या व्यक्ति बार बार चाय के साथ बिस्किट, नमकीन और मीठी चीजें खा रहा है तो ये अच्छी आदत नहीं है। काम के बीच पानी, छाछ, दूध या अन्य उपयुक्त घरेलू पेय को प्राथमिकता दी जा सकती है। श्रोता साथियों, काम की वजह से कई लोग सुबह से दोपहर तक कुछ नहीं खाते और फिर बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, इससे शरीर पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। कोशिश करें कि काम के बीच में भोजन का उचित समय पहले से तय हो। अगर काम का समय निश्चित है तो उसी अनुसार नाश्ता, दोपहर का भोजन और शाम का हल्का नाश्ता व्यवस्थित किया जा सकता है।
1: जी हाँ।
0: व्यस्तता कितनी भी हो, भोजन के लिए कुछ मिनट निकालना बहुत जरूरी है। श्रोता साथियों, हमारे आसपास मौसम के अनुसार अलग अलग फल, सब्जियां, अनाज और कई अन्य खाद्य पदार्थ उपलब्ध होते हैं। मौसमी और स्थानीय खाद्य पदार्थ अक्सर आसानी से उपलब्ध होते हैं और इन्हें रोजमर्रा के भोजन में शामिल किया जा सकता है। हमारी पारंपरिक रसोई में भी कई पौष्टिक विकल्प मौजूद है मनीषा, जैसे कि बाजरा, ज्वार, मक्का, दालें, चना, मूंगफली, तिल, हरी सब्जियां और मौसमी फल, ये हमारे भोजन का हिस्सा हो सकते हैं। इसलिए आधुनिक जीवन शैली अपनाने के साथ साथ श्रोता साथियों अपने स्थानीय खाद्य पदार्थों को भी भोजन में जगह देना बहुत जरूरी है, क्योंकि शारीरिक मेहनत करने वाले लोगों को किसी अलग तरीके के भोजन की जरूरत नहीं होती है, बस उन्हें संतुलित तरीके से अपने पूरे दिन में अच्छी पौष्टिक चीजों को शामिल करने की जरूरत है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों, कामकाजी लोगों के लिए एक बहुत आसान तरीका है सप्ताह भर के भोजन की थोड़ी योजना पहले से बना लेना। उदाहरण के लिए तय करें कि किस दिन कौन सी दाल बनेगी, कौन सी सब्जी उपलब्ध है, कौन सा अनाज इस्तेमाल करना है और टिफिन में क्या ले जाना है। इससे मनीषा रोज सुबह यह सोचने में समय नहीं जाएगा कि आज क्या बनाए, साथ ही बाजार से जरूरत के अनुसार सामान लाने में भी आसानी होगी। तो अंत में श्रोता साथियों को बस इतना ही कहना चाहेंगे कि याद रखिए कि काम की रफ्तार चाहे जितनी भी तेज हो, सेहत की रफ्तार धीमी मत होने दीजिए। और एक बात हमेशा याद रखें, पौष्टिक भोजन कोई खर्च नहीं, स्वस्थ भविष्य की सबसे जरूरी पूंजी है। इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपने गाँव और अपने समाज और अपने परिवार को भी मजबूत बनाइए।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं। और समय हो चला है हमारा आज के कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य और स्वास्थ्यप्रद बातें अब यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रहीं, गीत संगीत रहीं, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
1: नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है, आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाघ रेडियो 90.8 FM।
4: भाई ने बोलो, आप एक कार्य विचार करियो है कि जैया पेड़ की छाव में आपड़े रह हां, यह आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जैया हवा में आपड़े हाल हां, ये भी आपड़ा थकी कई आश रागे है। होवे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपड़े हरते जीवंगा, प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा, ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
0: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
4: होवे आज नाना ना कदम है, ये अब्बा वाला काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। स्वागत है साथियों आप सभी का कार्यक्रम में, जिसे आप सभी सुन रहे हैं आपके अपने सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम में हाजिर होते हैं तो आपसे बातचीत करते हैं एक नए विषय को लेकर। आज भी कार्यक्रम के माध्यम से ऐसा ही एक नया विषय जुड़ने जा रहा है। दोस्तों, कार्यक्रम के माध्यम से जो विषय हमारे जुड़ते हैं वो हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्णता रखते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो सपनों की उड़ान कार्यक्रम है वो हमारे युवा साथियों से बातचीत करने का एक कह सकते हैं कि जरिया है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से ही हम आपको नए नए विषयों के बारे में बताकर श्रोता साथियों ये अवगत करवाते हैं कि हमें अपने जीवन में करना क्या है। जैसा कि हमने श्रोता साथियों पिछले रविवार को भी एक नए विषय को लेकर ढेर सारी बातें की थी, आज भी कार्यक्रम के माध्यम से विषय जुड़ने जा रहा है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि लोग क्या कहेंगे से हमें आज़ादी चाहिए और आत्मविश्वास को उड़ान देनी है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सभी से एक सवाल पूछूंगी, जिसका जवाब श्रोता साथियों शायद ही हर किसी के दिल में छिपा है। तो बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारी आपसे इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें रहेंगी कि लोग क्या कहेंगे से आज़ादी हमें कैसे मिलेगी और हम अपने आत्मविश्वास को उड़ान कैसे दे सकते हैं। तो बातें ढेर सारी करेंगे साथियों, लेकिन बातों की शुरुआत करने से पहले सुन लेते हैं यहाँ पर एक प्यारा सा गीत। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम में। जैसा कि दोस्तों, गीत से पहले मैंने आपको विषय तो आज के इस कार्यक्रम में क्या रहने वाला है ये तो बता ही दिया। आज हम बात कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे से हमें आज़ादी चाहिए और हम अपने आत्मविश्वास को उड़ान कैसे दे सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि गीत से पहले बताया था कि आज मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगी जिसका जवाब शायद हर किसी के दिल में छिपा है। साथियों, वो सवाल ये है कि क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए किसी को अपने मन की बात नहीं कही क्योंकि आपको लगा कि लोग क्या कहेंगे? क्या आपने कभी अपने पसंद का कपड़ा नहीं पहना साथियों, अपना पसंदीदा करियर नहीं चुना, या फिर किसी नए काम की शुरुआत इसलिए नहीं की आपने क्योंकि समाज की राय का आपको डर था? अगर जवाब श्रोता साथियों इन सभी सवालों का हाँ है तो आज का ये कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि लोग क्या कहेंगे से आज़ादी हमें कैसे मिलेगी और जब हमें आज़ादी मिलेगी तो हम अपने आत्मविश्वास को एक नई उड़ान कैसे दे सकते हैं। दोस्तों, आपको बताऊं तो सबसे बड़ी जेल जो है वो है दूसरों की राय, यानी कि दुनिया की सबसे मजबूत जेल ईंटों की नहीं होती साथियों, वे होती है दूसरों की सोच की। अजीब बात तो ये है दोस्तों कि इस जेल का दरवाजा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बंद होता है। हम खुद अपने सपनों पर ताला लगा देते हैं। याद रखिए साथियों कि दुनिया आपको उतना ही नहीं रोकते जितना आपको आपका डर रोकता है, इसलिए डर से डरिए मत बल्कि डर का सामना कीजिए। साथी, लोग सच में कितना सोचते हैं श्रोता साथियों, ये एक बड़ी ही दिलचस्प बात है। हमें लगता है कि सब लोग हमें देख रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हर इंसान अपने जिंदगी में इतना व्यस्त है कि उसे दूसरों के बारे में सोचने का समय ही कम मिलता है। जिस बात को लेकर श्रोता साथियों हम कई दिनों तक परेशान रहते हैं, हो सकता है सामने वाला उसे 5 मिनट बाद ही भूल जाए। इसलिए साथियों, अपनी पूरी जिंदगी किसी 5 मिनटों के विचार पर मत छोड़िए, बल्कि आप भी अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़िए, न कि निराश होकर बैठिए साथियों। इसलिए कहा गया है कि लोग सच में कितना सोचते हैं ये हमें जानने की जरूरत नहीं है, लोग क्या सोचेंगे ये भी हमें जानने की जरूरत नहीं है। हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, बस इस पर ही विश्वास रखें श्रोता साथियों। और अगर आपको लगता ही है कि लोग बातें करेंगे और बोलेंगे तो डरना क्यों है दोस्तों? एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तब भी लोग बोलेंगे, और अगर आप कुछ करेंगे तो भी लोग बोलेंगे साथियों। अगर आप सफल होंगे तब भी लोग बोलेंगे, और अगर आप असफल होंगे तब भी लोग बोलेंगे। तो ऐसे में फैसला आपका है कि बिना कुछ किए बातें सुननी है या अपने सपने पूरे करके बातें सुननी है। इसलिए श्रोता साथियों, अगर आपको भी लगता है कि लोग बोलेंगे तो बोलने से डरिए मत, सुनने से भी मत डरिए, करने से भी मत डरिए श्रोता साथियों, बस खुद पर विश्वास रखिए। अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका अंदर से आत्मविश्वास जागेगा, जिससे श्रोता साथियों आप जो चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। तो जैसा कि बातें हम कार्यक्रम में साथियों आपसे बहुत अच्छी कर रहे हैं, और आज के इस कार्यक्रम में बातचीत का विषय भी काफी महत्वपूर्ण है, तो ये बातें मैं आगे भी करती रहूंगी, लेकिन अभी मनोरंजन कर लेते हैं एक और पहल से गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में और सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे से आजादी हमें मिलनी चाहिए और इससे हमारे आत्मविश्वास को एक नई उड़ान कैसे मिल सकती है। जैसा कि दोस्तों, गीत से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें मेरी आपसे रही थी कि हमें लोगों के बोलने से नहीं डरना है, लोगों के सोचने से भी नहीं डरना है, क्योंकि दोस्तों अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो भी लोग हमें बोलेंगे, और हमसे कुछ गलती हो गई या कुछ हमने बुरा कर दिया कह दिया तो भी लोग बोलेंगे। अगर आप सफल हैं श्रोता साथियों, तो भी लोग किसी और चीज को लेकर आपके बारे में कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन अगर आप असफल हैं तो भी लोग बोलेंगे। तो ऐसे में साथियों, फैसला हमारा है कि हमें असफल होके सुनना है या सफल होके सुनना है। इसलिए अपने जीवन में दोस्तों, लोग क्या कहेंगे इस सोच को अपने जीवन का हिस्सा मत बनाइए, बल्कि संघर्ष को, मेहनत को और सफलता को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। श्रोता साथियों, कई बार हमें ऐसा लगता है कि लोग हमारी बातें कर रहे हैं, लेकिन असल में हो सकता है कि वो लोग हमारी बातें कर ही नहीं रहे हो, वो किसी और बात पर विचार कर रहे हो। इसलिए श्रोता साथियों, हर चीज को तनाव के रूप में मत ग्रहण कीजिए, कुछ चीजें खुशी खुशी भी ग्रहण कीजिए, इससे आपका जीवन और सरल हो जाएगा। अब यही साथियों, प्रश्न ये उठता है कि आत्मविश्वास पैदा कैसे होता है। दोस्तों, आत्मविश्वास कोई जन्म से मिलने वाला उपहार नहीं है, ये छोटे छोटे साहसिक कदमों से ही बनता है, जैसे कि पहली बार मंच पर बोलना, पहली बार इंटरव्यू देना, पहली बार ना कहना और पहली बार अपनी बात रखना। साथियों, ये छोटे कदम आपके आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी बनता है, इसलिए हमेशा अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। आज सोशल मीडिया ने एक नई समस्या पैदा कर दी है दोस्तों, कि हम अपनी असल जिंदगी की तुलना दूसरों की हाईलाइट से करने लगे हैं। लेकिन ऐसे में हमें याद रखना है कि हर फोटो के पीछे एक कहानी होती है, हर मुस्कान के पीछे एक संघर्ष होता है। इसलिए तुलना नहीं बल्कि तरक्की पर विश्वास कीजिए, क्योंकि साथियों, जो लोग गलती करने से डरते हैं वे सीखने से भी डरते हैं। गलती हार नहीं होती, गलती अनुभव की फीस होती है। जो गिरने से नहीं डरता साथियों, उसी के कदम मंजिल तक पहुंचते हैं। इसलिए हमेशा खुद पर विश्वास रखिए, किसी और के जैसा बनने की कोशिश मत कीजिए। दुनिया को आपकी कॉपी नहीं दोस्तों, आपकी मौलिकता चाहिए। आपकी आवाज, आपका हुनर और आपकी सोच ही, यही आपकी असली पहचान है। दोस्तों, आपसे कहना चाहूंगी कि आपको हमेशा खुद से 3 सवाल पूछने चाहिए, जैसे कि जब भी आपके मन में कुछ नकारात्मक आए और आपको लगे कि लोग क्या कहेंगे या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो आप खुद से 3 सवाल पूछिए कि क्या ये काम मैं सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ, क्या इसमें मेरा विकास होगा, क्या इससे किसी का नुकसान तो नहीं होगा। अगर श्रोता साथियों, तीनों का जवाब हाँ है, तो फिर दुनिया की राय से ज्यादा आपकी अंतरात्मा की आप सुनिए और आगे बढ़ती रहिए। जैसे कि एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से आपको बताऊं दोस्तों, तो एक युवक हर बार नया काम शुरू करने से पहले लोगों की राय पूछता था। कभी किसी ने कहा मत करो, तो कभी किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा। दोस्तों, सालों बीत गए, एक दिन उसने फैसला किया कि अब वह अपनी आवाज सुनेगा। धीरे धीरे उसने शुरुआत की, गलतियां उससे हुई साथियों, लेकिन एक दिन वही लोग उसकी सफलता की मिसाल देने लगे। तो दोस्तों, आपसे कहना चाहूंगी कि लोगों की राय बदलने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी मेहनत। इसलिए मेहनत करते रहिए और सफल रहिए श्रोता साथियों। रोज आप एक नया काम कीजिए, अपनी छोटी छोटी सफलताओं को लिखते रहिए, अपनी गलतियों से सीखिए, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताइए और हर दिन आईने में देखकर खुद से ये कहिए कि मैं जैसा हूँ या जैसी हूँ वैसे ही पर्याप्त हूँ और मैं हर दिन बेहतर बन सकती हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो हमारे अंदर आत्मविश्वास जरूर बढ़ जाएगा और एक नई उड़ान भरेगा साथियों। इसलिए कार्यक्रम के अंत में अब आपसे यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी आपकी है, सपने आपके हैं साथियों, तो मेहनत भी आपकी ही है, तो फैसला भी आपका ही होगा। याद रखिए कि जब आप लोग क्या कहेंगे में कैद रहेंगे, तब तक आपकी असली उड़ान शुरू नहीं होगी साथियों। इसलिए श्रोता साथियों, एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि दुनिया की आवाज हमेशा बदलती रहती है, लेकिन आपकी अंतरात्मा की आवाज आपकी सबसे अच्छी और सच्ची राह दिखाने वाली होती है। इसलिए लोगों की तालियों का इंतजार मत कीजिए,
अपने हौसलों की गूंज को सुनिए और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को उड़ान दीजिए साथियों। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति चाहूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और प्यारे से गीत के साथ में।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सपनों की उड़ान अब यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में जो विषय से जुड़ी मेरी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे दोस्तों। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम सपनों की उड़ान वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसपाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर 9460051234। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नए विषय के साथ में और एक नई सोच के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, याद रखिए कि जो लोग अपने सपनों पर भरोसा करते हैं, एक दिन दुनिया भी उन्हीं पर भरोसा करने लगती है। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार श्रोता साथियों।

0: है वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। जागृति बुन आपने कार्य सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बोन हूँ था का
0: अरे जागृति बोन आपड़ी जे नदिया है ये हुकी जाएगा खेतर बंजर थे जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बोन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बोन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बोन आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बोन आपड़े भाई बोनों ने कहो कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी दोस्तों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: कशिश, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि जब परिवार साथ खड़ा हो तो मुश्किल आसान हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: टूटते पारिवारिक संवाद को हमें बचाने की है। श्रोता साथियों, परिवार यह केवल एक घर में रहने वाले लोगों का समूह नहीं होता है, बल्कि वह रिश्ता है जहां हमारी खुशियां बढ़ती हैं, दुखों में सहारा मिलता है और मुश्किल समय में कोई हमारा हाथ थामकर कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कहा भी जाता है कि मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन परिवार का साथ हो तो वही मुश्किलें छोटी लग सकती है।
0: जी हाँ,
1: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में श्रोता साथियों, परिवार हमारे आसपास तो है, लेकिन कई बार परिवार के सदस्यों के बीच बातचीत कम हो जा रही है। एक ही घर में रहने वाले जो लोग हैं कशिश, वह अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हैं, बच्चे अपनी दुनिया में व्यस्त हैं, माता पिता अपने काम में और बुजुर्ग अपने मन की बातें मन में ही रखे जाते हैं। धीरे धीरे बातचीत कम हो जाती है, फिर समझ कम हो जाती है और उसके बाद रिश्तों में दूरी बढ़ने लगती है।
0: बिल्कुल,
1: आज कार्यक्रम में हम इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे कि जब परिवार साथ खड़ा हो तो मुश्किल कैसे आसान हो जाती है और टूटते पारिवारिक संवाद को कैसे बचाया जा सकता है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो बातें इस विषय को लेकर आज हम कार्यक्रम में ढेर सारी करेंगे हमारे श्रोता साथियों से, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्या ना श्रोता साथियों को पहले यहाँ एक प्यारा सा गीत हम सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को, आप बने रहिएगा वाघ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय तो बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि जब परिवार साथ खड़ा हो तो मुश्किल आसान हो जाती है और हम टूटते पारिवारिक संवाद को कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं अंजलि जी कि परिवार हमारे जीवन का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सहारा होता है। जब हम साथियों दुनिया में आते हैं तो सबसे पहले परिवार से ही हम अपने रिश्तों, प्यार, अपनापन और सहयोग का अर्थ समझ पाते हैं। परिवार केवल एक साथ रहने वाले लोगों का समूह नहीं है, बल्कि ये वह जगह है साथियों जहाँ हम अपने खुशियों को बांटते हैं, परेशानियों को बताते हैं और मुश्किल समय में हिम्मत पाने का अवसर हमें मिलता है। अंजलि जी, देखा जाए तो आज के समय में जीवन बहुत तेजी से बदल रहा है। पढ़ाई, नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, खेती, किसानी, घर की जिम्मेदारियां और कह सकते हैं कि मोबाइल फोन जैसी चीजों ने हमारे दिनचर्या को काफी हद तक बदल दिया है। श्रोता साथियों, एक ही घर में रहने वाले परिवार के सदस्य भी कई बार एक दूसरे से ठीक से बात भी नहीं कर पाते। सभी अपने अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं, बातचीत कम होती है और छोटी छोटी गलतफहमियां बड़ी दूरियों में बदलने लगती है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो यही बात आती है कि परिवार आखिर होता क्या है। श्रोता साथियों, परिवार हमारे जीवन की पहली पाठशाला है। हम बोलना, व्यवहार करना, दूसरों की मदद करना, बड़ों का सम्मान और छोटों से प्यार करना परिवार से ही सीखते हैं। परिवार में सभी लोगों के बीच एक जैसे हो यह जरूरी नहीं है। पति पत्नी की राय अलग हो सकती है, माता पिता और बच्चों की पसंद अलग हो सकती है, भाई बहनों के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन अलग विचार होना रिश्ते टूटने का कारण नहीं होना चाहिए।
0: बिल्कुल
1: जरूरी यह है कि हम एक दूसरे की बात सुने। कई बार समस्या बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन उसे सुनने वाला कोई नहीं होता। कोई बच्चा स्कूल की परेशानी बताना चाहता है तो कोई महिला घर और काम के बीच थकान महसूस कर रही होती है।
0: बिल्कुल
1: कोई बुजुर्ग अकेलापन महसूस कर रहा होता है या कोई पुरुष आर्थिक चिंता से परेशान होता है। लेकिन जब घर में बातचीत का माहौल नहीं होता तो हर व्यक्ति अपनी परेशानी अकेले उठाने लगता है और यहीं से परिवार में दूरी शुरू होती है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। साथियों, कई बार परिवार में समस्या किसी बड़ी घटना से नहीं बल्कि बातचीत की कमी से पैदा होती है। किसी सदस्य को लगता है कि उसकी बात नहीं सुनी जा रही है या फिर उसकी बात को इतना महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो किसी को लगता है कि उसकी भावनाओं को समझा नहीं जाता। धीरे धीरे लोग अंजलि जी अपने मन की बात कहना बंद कर देते हैं और यही स्थिति पारिवारिक संवाद को टूटने की शुरुआत हो सकती है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह है कि संवाद की इसी दूरी को दूर किया जा सकता है। इसके लिए बहुत बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं है साथियों। थोड़ा सा समय देना होगा, धैर्य रखना होगा, सम्मान देना होगा और एक दूसरे को सुनने की इच्छा हमें रखनी होगी, क्योंकि ये सभी चीजें परिवार को फिर से करीब ला सकती हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसी के साथ अगर बात करें परिवार के महत्व की, तो साथियों परिवार हमारे जीवन की पहली पाठशाला होती है, ये बात आप सभी जानते हैं। बच्चा परिवार से अंजलि जी बोलना भी सीखता है, व्यवहार करना भी सीखता है, दूसरों का सम्मान भी करता है, कठिन परिस्थितियों का सामना भी करना सीखता है।
1: बिल्कुल।
0: और हम कह सकते हैं कि परिवार ही जो है वो हमें भावनात्मक सुरक्षा देते हैं। जब किसी व्यक्ति के जीवन में परेशानी आती है साथियों और अपने परिवार उसके साथ खड़े होते हैं, अगर उसका परिवार, तो समस्या का सामना वह अच्छी तरीके से कर पाता है।
1: बिल्कुल,
0: आर्थिक परेशानी हो, पढ़ाई की चिंता हो साथियों, नौकरी की समस्या हो या किसी निर्णय को लेकर असमंजस में आप हो, परिवार का सहयोग आपको एक मजबूत, कह सकते हैं कि आत्मविश्वास प्रदान करता है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को।

को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से, उसके साए से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है,
1: जी हाँ।
0: आज हम जान पा रहे हैं कि किस तरीके से परिवार का एक दूसरे से बातचीत करना, सहयोग करना किस तरीके से हमारी मुश्किलों को आसान कर देता है।
1: बिल्कुल।
0: यही श्रोता साथियों, बात आती है कि सिर्फ बोलना ही नहीं, सुनना भी जरूरी है। जी हाँ, परिवार में संवाद का मतलब केवल अपनी बात कहना नहीं है कशिश।
1: जी हाँ।
0: संवाद का पहला नियम है दूसरे की बात ध्यान से सुनना। कई बार हम अपने सामने वाले की बात पूरी तरीके से पहले ही अपना जवाब तैयार कर देते हैं।
1: बिल्कुल।
0: बच्चा अपनी समस्या बता रहा है तो तुरंत डांटने के बजाय उसकी पूरी बात सुनते हैं। पति पत्नी में मतभेद हो तो एक दूसरे को दोष देने के बजाय समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: बुजुर्ग बार बार एक ही बात बताते हैं तो उन्हें चुप कराने के बजाय धैर्य से सुनना चाहिए। किसी व्यक्ति की परेशानी छोटी लग सकती है लेकिन उसके लिए वह बहुत बड़ी नहीं हो सकती है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए परिवार में एक बात ध्यान रखें कि हर समस्या का समाधान सलाह नहीं होती। कभी कभी सामने वाले को सिर्फ सुने जाने की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा, क्योंकि कहा गया है साथियों कि घर ईंट और पत्थरों से नहीं बल्कि रिश्तों से बनता है, और इन्हीं रिश्तों की सबसे मजबूत नींव होती है संवाद। अंजलि जी, जहाँ परिवार के सदस्य एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं, एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं, वहाँ बड़ी से बड़ी परेशानी भी छोटे लगने लगती है। लेकिन जहाँ बातचीत बंद हो जाती है, वहाँ छोटी सी गलतफहमी भी बड़े दीवार बन जाती है। साथियों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास दुनिया भर की खबरों के लिए समय है, मोबाइल पर घंटों बिताने का भी समय है, सोशल मीडिया पर अनजान लोगों से जुड़ने का भी समय है। लेकिन कई बार अपने ही परिवार के किसी सदस्य से दो मिनट बैठकर बात करने का समय नहीं होता, और इसी कारण से अंजलि जी कई घरों में लोग एक साथ रहते हुए भी भावनात्मक रूप से दूर होते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल कशिश, बच्चे के साथ संवाद टूटना परिवार के लिए गंभीर संकेत हो सकता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वह हर बात माता पिता को बताता है, लेकिन जैसे जैसे श्रोता साथियों बच्चा बड़ा होता है, अगर उसे बार बार डांट मिले, उसकी बात का मजाक बनाया जाए या हर बात पर तुलना की जाए तो वह धीरे धीरे अपनी बातें बताना बंद कर सकता है।
1: जी जी।
0: इसलिए बच्चों से बात करते समय केवल यह न पूछें कि पढ़ाई की है या नहीं। इसके साथ यह भी पूछें कि आज स्कूल में क्या अच्छा लगा।
1: बिल्कुल।
0: किसी बात से दुखी हो तो नहीं, किसी दोस्त ने कोई परेशान तो नहीं किया, और सबसे महत्वपूर्ण कि अगर कोई समस्या हो तो तुम मुझे बेझिझक कह सकते हो।
1: बिल्कुल।
0: जब बच्चों को विश्वास होगा कि उनकी बात सुनी जाएगी तब वह अपनी समस्याएं परिवार से साझा करेंगे। इसलिए श्रोता साथियों, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें बच्चों से दोस्ती की तरह बात करने की जरूरत है।
1: जी हाँ।
0: किसी के साथ बुजुर्गों से भी संवाद बनाए रखना है। श्रोता साथियों, परिवार में बुजुर्ग अनुभव का खजाना होते हैं। उनके पास जीवन के कई अनुभव होते हैं, गांव की परंपराएं, खेती किसानी का ज्ञान, परिवार की पुरानी बातें और जीवन के संघर्षों से सीखी हुई समझ, ये सब अलग पीढ़ी तक पहुंच सकती है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन कई बार बुजुर्गों को लगता है कि अब घर में उनकी जरूरत ही नहीं रही। इस भावनाओं को बदलने के लिए उनके साथ बैठें, उनसे पुराने अनुभव पूछें, बच्चों को दादा दादी या नाना नानी के पास बैठने को दें, बुजुर्गों को परिवार के फैसलों में सम्मान पूर्वक शामिल करें। किसी व्यक्ति की उम्र बढ़ने के साथ उसकी जरूरत खत्म नहीं होनी चाहिए, बल्कि कई बार उसकी भावनात्मक जो जरूरतें हैं उनके बारे में भी हमें सोचने की जरूरत है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। साथियों, एक समय था जब परिवार के सदस्य दिन भर की छोटी बड़ी बातें भी एक दूसरे से साझा करते थे। दादा दादी के पास बैठकर बच्चे कहानियां सुनते थे, माता पिता बच्चों के स्कूल और दोस्तों के बारे में पूछते थे।
0: बिल्कुल।
1: और भाई बहन आपस में अपने मन की बातें करते थे। लेकिन अंजलि जी, आज स्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं।
0: जी जी।
1: एक ही घर में चार लोग हैं, लेकिन चारों की दुनिया अलग अलग स्क्रीन में बटी हुई है। कोई मोबाइल में व्यस्त है, कोई टीवी देख रहा है, तो कोई लैपटॉप पर काम कर रहा है, तो कोई अपने कमरे में बंद है। ऐसे में साथियों, सवाल ये उठता है कि क्या परिवार साथ रहकर भी अकेला हो गया है? अगर इसका जवाब जाने तो हाँ, ऐसा हुआ है, क्योंकि परिवार का साथ केवल एक छत के नीचे रहने से नहीं होता, परिवार का साथ तब महसूस होता है जब हमें यकीन हो अंजलि जी कि मुश्किल समय में भी कोई हमारा हाथ पकड़ने वाला है, हमारी बात सुनने वाला है और बिना शर्त के हमारे साथ खड़ा रहेगा।
0: जी हाँ कशिश, इसी के साथ महिलाओं की बात सुनना भी जरूरी है। श्रोता साथियों, परिवार में महिलाओं की जिम्मेदारियाँ अक्सर बहुत अधिक होती हैं।
1: बिल्कुल,
0: घर का काम, बच्चों की देखभाल, बुजुर्गों की जिम्मेदारी और कई बार नौकरी या खेती से जुड़े काम भी। लेकिन कई महिलाएं अपनी थकान और परेशानी के बारे में खुलकर बात नहीं कर पाती। परिवार को चाहिए कि महिलाओं से पूछे कि आप कैसी हैं, आपको किसी मदद की जरूरत है। घर की जिम्मेदारी केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि सभी की साझा जिम्मेदारी होनी चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: जब घर के सदस्य एक दूसरे का काम बांटते हैं तो तनाव कम होता है और रिश्तों में अपनापन बढ़ता है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि श्रोता साथियों से हम कार्यक्रम के माध्यम से बातें कर ही रहे हैं, परिवार में बढ़ती दूरी को लेकर और संवाद की कमी को लेकर,
0: बिल्कुल,
1: तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अभी क्यों ना हमारे साथियों को यहाँ पर हम एक और प्यारा सा गीत सुना दें।
0: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले बातचीत बहुत अच्छी चल रही थी हमारी आपसे परिवार के महत्व को लेकर और संवाद की कमी को लेकर। यही दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि परिवार में संवाद कभी अचानक से नहीं टूट

0: सकता।
1: बिल्कुल,
0: अक्सर इसकी शुरुआत अंजलि जी बहुत छोटी छोटी बातों से होती है, जैसे कि किसी बच्चे ने अपनी बात कही और उसे डांट कर चुप करा दिया गया, किसी माता पिता ने अपनी चिंता जताई और बच्चे ने उसे पुरानी सोच कहकर नजरअंदाज कर दिया।
1: बिल्कुल,
0: पति पत्नी के बीच किसी बात पर अगर मतभेद हुआ तो दोनों ने बातचीत करने के बजाय चुप रहना बेहतर समझा। साथियों, भाई बहनों के बीच अगर संपत्ति, जिम्मेदारियां या किसी पुराने विवाद को लेकर मनमुटाव हुआ और धीरे धीरे बातचीत कम होती चली गई, फिर एक दिन ऐसा आता है जब लोग एक दूसरे से नाराज तो होते हैं लेकिन ये भी नहीं जानते कि आखिर नाराजगी शुरुआत कहां से हुई थी। दोस्तों, खामोशी कई बार झगड़े से भी ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि झगड़े में कम से कम शब्द तो बाहर आते हैं लेकिन खामोशी में भावनाएं भीतर ही भीतर जमा होती रहती है। अंजलि जी,
1: जी जी,
0: हम देखते हैं कि मेरी बात कोई नहीं समझता, ये एक भावना जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। परिवार में संवाद टूटने की सबसे बड़ी वजहों में से एक है यह महसूस होना कि मेरी बात कोई नहीं समझता।
1: बिल्कुल कशिश, परिवार में मतभेद होना कोई असामान्य बात नहीं है। जहां अलग अलग उम्र, सोच, अनुभव के लोग साथ रहते हैं वहां विचारों में अंतर होना स्वाभाविक है।
0: जी बिल्कुल,
1: समस्या तब नहीं है जब मतभेद होते हैं, समस्या तब होती है जब मन भेद होते हैं, अपमान होता है, गाली, चिल्लाना या लंबे समय तक बातचीत बंद करने में बदल जाती है। इसलिए मतभेद होने पर कुछ बातों का ध्यान रखें, गुस्से में तुरंत फैसला न लें, अपशब्दों का इस्तेमाल न करें, पुराने विवाद बार बार न उठाएं, बच्चों के सामने बड़े विवाद करने से बचें, समस्या पर बात करें, व्यक्ति पर हमला न करें, जरूरत हो तो कुछ समय शांत होकर बाद में बातचीत करें। याद रखें, रिश्ता जीतने के लिए बहस जीतना जरूरी नहीं है। कभी कभी परिवार बचाने के लिए थोड़ा झुक जाना कमजोरी नहीं समझदारी होती है। इसी के साथ श्रोता साथियों, परिवार संवाद बढ़ाने के कुछ आसान तरीके हैं जो हमें अपनाने की जरूरत है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि रोज 15 मिनट परिवार के नाम करें, दिन में केवल 15 मिनट सभी सदस्य साथ बैठें, इस दौरान मोबाइल और टीवी बंद रखें, हर व्यक्ति अपने दिन के बारे में कुछ बताए, इसी के साथ सप्ताह में एक दिन साथ खाना खाएं, एक साथ बैठकर खाना खाने से बातचीत का अच्छा अवसर मिलता है।
0: बिल्कुल,
1: घर के फैसलों में सभी को शामिल करें, बच्चे बड़े फैसले न लें लेकिन उनकी राय पूछना उन्हें परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा महसूस कराता है।
0: जी जी,
1: प्रशंसा करने की आदत डालें, किसी ने अच्छा काम किया हो तो कहें कि बहुत अच्छा किया, एक छोटा सा धन्यवाद भी रिश्ते मजबूत करता है।
0: बिल्कुल,
1: इसी के साथ माफी मांगने में संकोच न करें, गलती हो गई है तो मुझे माफ कर दो कहने में कोई छोटापन नहीं होता है। श्रोता साथियों, जन्मदिन हो, परीक्षा में सफलता हो, अच्छी फसल, नया काम, छोटी सी उपलब्धि, हर खुशी को मिलकर बनाए, यदि ये छोटी आदतें हैं वो आगे चलकर परिवार की बड़ी पूंजी बनती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, हम देखते हैं कि हर उम्र के व्यक्ति की अपनी भावनाएं और अपनी परेशानियां होती है। एक बच्चा परीक्षा के दबाव में हो सकता है, साथियों एक किशोर जो है वो दोस्ती, पढ़ाई, पहचान और भविष्य को लेकर उलझा हो सकता है।
1: बिल्कुल,
0: एक युवा नौकरी, करियर और आर्थिक जिम्मेदारियों से परेशान हो सकता है। वहीं माता पिता बच्चों के भविष्य और परिवार की आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित हो सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: बुजुर्ग अकेलेपन को और अपनी उपयोगिता को लेकर असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। साथियों, समस्या ये नहीं है कि हर किसी की परेशानी अलग है, समस्या तब पैदा होती है जब हम अपनी परेशानी को बड़ा और दूसरों की परेशानी को छोटा समझने लगते हैं। हम कहते हैं कि तुम्हारी उम्र ही क्या है, तुम्हें किस बात की चिंता, या हमने तुमसे ज्यादा दुनिया देखी है, हमें सब पता है।
1: बिल्कुल
0: साथियों, ऐसे वाक्य सामने वाले को सलाह नहीं देते बल्कि उसकी भावनाओं को छोटा कर देते हैं। इसलिए परिवार में सबसे जरूरी बात है कि पहले सुना जाए, फिर समझा जाए और उसके बाद सलाह दी जाए।
1: बिल्कुल कशिश, हमारे गाँव में परिवार केवल घर तक सीमित नहीं होता, यहाँ पड़ोसी, रिश्तेदार और समुदाय भी एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होता है।
0: बिल्कुल,
1: किसी के घर शादी हो तो गांव साथ खड़ा होता है, किसी के खेत में परेशानी हो तो लोग मदद करते हैं, किसी परिवार में दुख हो तो पड़ोसी उसके साथ खड़े हो जाते हैं। यही सामुदायिक भावना हमारी ताकत है। हमारे आधुनिक जीवन की सुविधाओं को अपनाते हुए भी आपसे सहयोग और रिश्तों की गर्माहट को बनाए रखना होगा।
0: बिल्कुल,
1: छोटी सी प्रेरक कहानी श्रोता साथियों को सुनाना चाहेंगे कि गांव में एक परिवार रहता था। परिवार के सभी सदस्य मेहनती थे लेकिन उनके बीच बातचीत बहुत कम हो गई थी।
0: जी जी।
1: पिता खेत और काम में व्यस्त रहते, माँ घर के कामों में लगी रहती, बेटा मोबाइल और बेटी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहती। घर में सब मौजूद थे लेकिन किसी को किसी की परेशानी का पता ही नहीं था।
0: जी जी।
1: एक दिन पिता खेती में हुए नुकसान से बहुत परेशान होकर घर लौटे, उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। बेटी ने पिता के चेहरे पर परेशानी देखी और पूछा, पिताजी आप परेशान है क्या? पिताजी ने पहली बार अपनी चिंता परिवार के सामने रखी। फिर माँ ने कहा कि हम सब मिलकर खर्चा थोड़ा कम करेंगे। बेटे ने कहा कि मैं भी अपने खर्च में कटौती करूंगा। बेटी ने कहा मैं पढ़ाई के साथ घर के काम में भी मदद करूंगी। समस्या उसी दिन खत्म हो गई, लेकिन परिवार को एक बात समझ में आ गई कि समस्या अकेले व्यक्ति की नहीं परिवार की है। उसका सामना भी मिलकर किया जा सकता है और यही परिवार की असली ताकत है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि बातें कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से हमारी चल रही है, आगे भी बातें हम करेंगे हमारे दोस्तों से, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें चल रही है, यही श्रोता साथियों आप सभी को कहना चाहेंगे कि हम सभी को एक छोटा सा संकल्प अपने जीवन में लेने की जरूरत है। हम रोज कुछ समय परिवार के साथ बैठेंगे, एक दूसरे की बात बीच में काटे बिना सुनेंगे, गुस्से में अपशब्द नहीं बोलेंगे, बच्चों को डराकर नहीं समझाकर अपनी बात बताएंगे, बुजुर्गों के अनुभव का सम्मान देंगे, महिलाओं की मेहनत और भावनाओं को समझेंगे और सबसे जरूरी मुश्किल समय में एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ेंगे।
1: बिल्कुल
0: छोटा साथियों, परिवार की मजबूती इस बात से तय नहीं होती कि घर कितना बड़ा है, कितनी सुविधाएं हैं या अपनी आमदनी है। परिवार की असली मजबूती इस बात से होती है कि मुश्किल समय में कौन किसके साथ खड़ा होता है। रिश्ते अपने आप मजबूत नहीं होते, उन्हें समय देना पड़ता है, सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है और कभी कभी अपनी गलती स्वीकार करके एक कदम आगे बढ़ना पड़ता है।
1: बिल्कुल
0: याद रखिए कि बातचीत बंद होने से समस्या खत्म नहीं होती बल्कि दूरी बढ़ती है, इसलिए अपने परिवार में संवाद का दरवाजा हमेशा खुला रखिए। आज अगर घर में किसी सदस्य से कई दिनों से बातचीत आप नहीं की है तो आप पहल कीजिए, एक छोटा सा सवाल पूछिए, कैसे हो, शायद इसी सवाल से फिर बातचीत शुरू हो जाए और अंत में इतना कहिए कि परिवार साथ हो तो फैसला बढ़ता है, संवाद हो तो रिश्तों में मिठास बढ़ती है और परिवार बना रहे तो बड़ी से बड़ी खुशियां भी छोटी लगती है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने सही कहा। श्रोता साथियों, परिवार को बचाने के लिए संवाद की पहल हम कर सकते हैं। आपका सबसे पहला कदम होगा बातचीत की शुरुआत कोई तो करे।
0: बिल्कुल,
1: जैसे कि अक्सर परिवारों में हर व्यक्ति चाहता है अंजलि जी कि दूसरा पहले बात करे। पति सोचता है कि पहले पत्नी बात करे, पत्नी सोचती है कि पहले पति बात करे।
0: बिल्कुल,
1: बच्चा सोचता है माँ पापा समझे और माता पिता सोचते हैं कि बच्चा खुद आकर बात करे। और इस पहले कौन की प्रतीक्षा में दिन, महीने और कई कभी कभी साल भी निकल जाते हैं।
0: जी जी।
1: इसलिए साथियों, अगर आपको लगता है कि परिवार में बातचीत कम हो गई है तो पहल करने में संकोच मत कीजिए। एक कप चाय के साथ बैठिए और कहिए कि बहुत दिनों से हम ठीक से बात नहीं कर पाए, चलो आज थोड़ी देर तक बैठते हैं और बातें करते हैं। श्रोता साथियों, शायद शुरुआत में सामने वाला ज्यादा बात न करे लेकिन कोशिश आप जारी रखिए। रिश्ते एक दिन में नहीं टूटते, एक दिन जुड़ते भी नहीं हैं।
0: बिल्कुल,
1: रिश्तों में समय, धैर्य और निरंतर प्रयास चाहिए होता है अंजलि जी।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि परिवार हमारे जीवन का वह आधार है जिसकी कीमत हमें अक्सर समझ आती है। जब हम किसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं, बाहर की दुनिया में चाहे कितने ही लोग हमारे साथ हों लेकिन अपने लोगों का भरोसा, अपनापन एक अलग ही शक्ति देता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए परिवार को केवल साथ रहने की जगह नहीं बल्कि एक दूसरे को समझने और संभालने की जरूरत की जो जिम्मेदारी है उसे देखने की जरूरत है।
1: जी जी।
0: आज जरूरत इस बात की है कि हम रिश्तों को किस केवल परंपराओं से न छोड़ें। समय बदल रहा है, जीवन शैली बदल रही है, काम करने के तरीके बदल रहे हैं और नई पीढ़ी की सोच पहले से अलग है।
1: बिल्कुल,
0: इन बदलावों को रोकना संभव नहीं है लेकिन इनके बीच रिश्तों के गर्माहट को बनाए रखना हमारे हाथ में है।
1: जी हाँ अंजलि जी,
0: परिवार में हर सदस्य की अपनी भावनाएं, इच्छाएं, परेशानियां और सपने होते हैं। किसी की चुप्पी को हमेशा उसकी सहमति न समझे और किसी की नाराजगी को केवल जिद कहकर नजरअंदाज न करें। कई बार चुप रहने वाला व्यक्ति भीतर से बहुत कुछ कह रहा होता है।
1: जी हाँ।
0: जरूरत है तो बस उसके पास बैठने की, उसकी बात सुनने की और उसे ये महसूस कराने की कि तुम हमारे लिए महत्वपूर्ण हो।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों के लिए परिवार ऐसा स्थान होता है जहाँ वे अपनी गलती बताने से डरे नहीं। बुजुर्गों के लिए ऐसा स्थान होना चाहिए जहाँ उन्हें लगे कि उनके अनुभव आज भी उपयोगी है।
1: बिल्कुल,
0: महिलाओं के लिए ऐसा वातावरण होना चाहिए जहाँ वे अपनी थकान, इच्छा और परेशानी खुलकर बता सके। पुरुषों के लिए भी ऐसा माहौल जरूरी है जहाँ वे अपनी चिंताओं को कमजोरी समझने के डर के बिना साझा कर सके। हमें ये भी समझना होगा श्रोता साथियों कि हर परिवार में हमेशा खुशी और सहमति नहीं हो सकती। कभी नाराजगी होगी तो कभी मतभेद होंगे, कभी किसी बात पर आवाज ऊंची हो सकती है।
1: जी जी।
0: लेकिन असली समझदारी यह है कि विवाद को रिश्तों से बड़ा न बनने दिया जाए। एक समस्या के कारण पूरे रिश्ते को गलत मान लेना समझदारी नहीं है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी हैं और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे कार्यक्रम का पता हम हमारे साथियों को बता दें।
0: बिल्कुल, तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
1: जी हाँ,
0: हमारा पिन कोड नंबर है 3200001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
1: इसी के साथ दोस्तों आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: नमस्कार।
1: साथी दोस्तों आप सभी को छोड़े चलते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में। चिक चिक बम बम बम चिक चिक बम।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवन। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश सोमवार से शनिवार सुबह 11 से 1 बजे तक आता है, तो इसी बीच आप अपने फरमाइश के गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप SMS करते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, आप भी हमारे कार्यक्रम से नए नए जुड़ रहे हैं और आप भी आपके फरमाइश के गीतों को सुनना चाहते हैं, तो आप भी आपकी फरमाइश हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे इस नंबर पर। हमारा फ़ोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, अब हमारे फरमाइश के सिलसिले को शुरू करते हैं और बढ़ते हैं पहली फरमाइश की ओर। पहली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है रतलाम MP से। फिल्म का नाम है हम हैं राही प्यार के। गीत के बोल हैं यूं ही कट जाएगा सफ़र। इस गीत को आवाज़ दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है जगदीश धाकर, श्रीमती रंजूभाई धाकर, युवराज सिंह, शिवांगी जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नितिन शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। इस गीत के अनुरोध करता है पंडितपुर सिटी से प्रशांत सिंधे, सुनीता सिंधे, यशराज सिंधे, ऋषि सिंधे, कृष्णा घोड़के जी। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है हम है राही प्यार की। गीत के बोल हैं यूं ही कट जाएगा सफर। इस गीत को आवाज दी है कुमार सोनू जी ने और अलका जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाग रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है प्रेम रोग, गीत के बोल ही भवरे ने खिलाया फूल। इस गीत की फरमाइश करता है बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, प्रशांत राजेंद्र जी वर्मा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं जमशेदपुर से, हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, तमन्ना जी भाटिया। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं मध्य प्रदेश से, बीबी सालिया डावर, बीबी हलीमाजा डावर, बीबी जिखरा डावर। खडवा से जुड़ना चाह रहे हैं शेख शहीद जी और हसन जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं धनुरी तेलीवाला से, निसार सलमानी, नसार सलमानी, बीबी आलिया, आयन बाबू। इस गीत के अनुरोध करता है गंजडुरवारा से शमशुल कमर राही, साइन फातिमा, अजनान खान, फैजाद खान, अनुजी खान। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही भवरे ने खिलाया फूल। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने। तो आइए साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को।

आइए श्रोता साथियों, इस प्यारे से गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है खड़वा से। फिल्म का नाम है क्रांति, गीत के बोल हैं जिंदगी की न टूटे लड़ी। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने और नितिन मुकेश जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है अब्दुल गफार डावर जी, अब्दुल हक।

श्रोता साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे जिंदगी की ना टूटे लड़ी। इस प्यारे से गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है उज्जैन मध्य प्रदेश से। फिल्मों का नाम है खलनायक। गीत के बोल हैं पालकी में होके सवार चले रे। इस गीत को आवाज दी है अलका जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है विनोद मुणत, नेहा जैन, दीपक मयंग मुणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुशी मुणत। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चीपा, कपिल चीपा, पूजा परिहार जी, ईशान जी चीपा। भटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रहे हैं हीरामणि वर्मा, पारेश मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखीलाल जी वर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है वासीम सी, विशाल, सोनाली, समर्पण और भक्ति जी। नादुरा से जुड़ना चाह रहे हैं संतोष, उषा जी और अभिषेक जी, अनिकेत जी और सागर जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बोरी खुर्द से सुधाकर राजयादव, प्रशांत राजयादव, जंगुताई राजयादव, सचिन वायल, प्रथमेश देशमुख, सर्वत देशमुख, हर्षिता देशमुख, सानवीजी देशमुख और प्रणालाजी देशमुख। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है खलनायक। गीत के बोल हैं पालकी में होके सवार चले रे। इस गीत को आवाज़ दी है अलका जी ने। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागट रेडियो 90.8 FM पर।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जोधपुर राजस्थान से। फिल्म का नाम है अनजाना, गीत की बोल है रिमझिम गीत सावन गाए। इस गीत की फरमाइश करता है रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी जी और बेबी हिमांश बोई जी। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रंजित भाटिया, मयंक जी भाटिया। इस गीत के अनुरोध करता है जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकी स्टो, रोजी डिकी स्टो, पल डिकी स्टो, विलेज डिकी स्टो। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं दादरी गेट भवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल जी मेहरा। झारखंड से जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद यासीन अंजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत जी और सादिया जी। इस गीत की अनुरोध करता है नेहरू चौक पेठन से डॉक्टर सुरेश यादव, अनीता जाधव, आरती पूजा, प्रशांत जाधव, सोनम जाधव, बीबी सिया जाधव। जलाना शहर से जुड़ना चाह रही हैं सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन जी जाधव और एकता जी जाधव। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है अनजाना, गीत की बोल है रिमझिम गीत गाए सावन। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

आयुश्रोता साथियों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है यताला महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है लैला, गीत के बोल हैं साथ जिएंगे साथ मरेंगे। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी ने और मनमोहन जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है शंकरलाल जयसवाल, गणेशलाल जयसवाल, सुप्रसाद जयसवाल, अपर्णव जयसवाल, राखी जयसवाल, दुर्गेश्वरी जयसवाल और तृप्ति जी जयसवाल। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं मलियाना सरधाना मेरठ से। अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जी जैन सरधाना मेरठ से जुड़ रहे हैं। आदि जैन, अंश जैन और भव्य जी जैन नरवेल महाराष्ट्र से जुड़ रही हैं। पीएच निहावकर, निर्मला निहावकर, विशाल निहावकर मलकापुर महाराष्ट्र से जुड़ना चाह रही हैं। नारायण इगली, सोपान इगली और आशीष महेकर जी। इस गीत के अनुरोध करता है लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ जी मरावी। तो आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं साथ जिएंगे साथ मरेंगे। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मुरादाबाद से। फिल्म का नाम है लोफर, गीत के बोल ही आज मौसम बड़ा बेईमान है। इस गीत की फरमाइश करता है मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाज पंकज, काजल सीमा, मानवी तनवी, लक्ष्य सोहिनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं जैन मंदिर वाली गली कुरावली से साहिद हुसैन अंसारी, नरसी अंसारी, नूरीन अंसारी, आफसना अंसारी, मोहम्मद फेकजी अंसारी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं मुरादाबाद से अजीत कसाना, ऋतिक और आदित्य जी कसाना। पटियाकला दुर्ग से जुड़ना चाह रहे हैं संजय कुमार शाहू, शशांक शाहू, सीमाजी शाहू और सुजीता जी शाहू। इस गीत के अनुरोध करता है पलेरा टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष विश्वकर्मा जी। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं बुलेंदखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी जी विश्वकर्मा। धनोरी तेलीवाला से जुड़ना चाह रहे हैं निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। फिल्म का नाम है लोफर और गीत के बोल हैं आज मौसम बड़ा बेईमान है। तब तक आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे, आज मौसम बड़ा बेईमान है। इस प्यारे से गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है सरगांव छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है मैं तुलसी तेरे आंगन की। गीत के बोल हैं मुझसे नैना मिलाई के। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी ने और आशा जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, शिवांशी वर्मा। और भी श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं वासिम महाराष्ट्र से, मास्टर विठल सुरुषी, सुषमा सुरुषी, परिधि सुरुषी, मायरा जी सुरुषी। गंजडूरा से जुड़ना चाह रहे हैं शमशुल कमर राही, साइन फातिमा, अजनान खान, फिजात खान, अनु खान। इस गीत के अनुरोध करता है डापकी रोड अकोला से शशिला देवी मधुरकर, सदानंद मधुरकर, कुमार गौरव जी मधुरकर। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से श्याम कीटे, वंदना कीटे, कार्तिक कीटे, भाविका जी कीटे और कीटे परिवार के सभी सदस्यगण जुड़ रहे हैं। तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाक रेडियो 90.8 FM पर।

मनीषा पटेल के साथ में। और अब आप आगे सुनने वाले हैं इसे मेरे साथ, यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेशर के साथ में। साथियों, मेरा स्वीकार कीजिएगा आप सभी प्यार भरा नमस्कार। अब जैसा कि फरमाइशों का सिलसिला कार्यक्रम के माध्यम से हमारा आपके साथ बहुत अच्छा चल रहा है, तो इसी बीच फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश की गीत की ओर। साथियों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है डाबकी रोड अकोला से। फिल्म का नाम है खुदा गवाह, गीत के बोल हैं रब को याद करो एक फरियाद करो। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदन मंदुरकर, कुमार गौरव मंदुरकर, यवतमाल से हैं निशा नागरिकर, लिनेश नागरिकर, आरव अर्पिता जी। गंजू द्वारा से जुड़ रहे हैं शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं वसीम महाराष्ट्र से, मास्टर विठल सुरोशी, सुषमा सुरोसे, परदीश सुरोसे, मायरा सुरोसे जी। और भी साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। मैं नाम बताना चाहूंगी मुंदेलखट उत्तर प्रदेश से साथी जुड़ रहे हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। रामचरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजुनू, रजना, बदना, प्रियल, दिव्यांशी विश्वकर्मा जी। तो आइए साथियों मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं रब को याद करो। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, रब को याद करो एक फरियाद करो, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। साथियों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है। मैं आपको बताना चाहूँगी, फिल्म का नाम है श्रोता साथियों गुलामी, गीत के बोल है जी हाले मस्किन मुकुम बरंजिश। इस गीत को आवाज़ दी है लता मंगेशकर जी और शब्बीर कुमार जी ने। श्रोता साथियों, ये फरमाइश हमारे बीच आई है वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से। फरमाइश करता है नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, स्वाति प्रयाग चौधरी, लड्डू देविका चौधरी और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। साथियों, नाम बताना चाहूँगी, आसाम से जुड़ रहे हितेंद्र दास जी इसी बीच हैं और भी श्रोता साथी जो पसंद करते हैं इसी गीत को। नाम बताना चाहूंगी, श्रोता साथी हैं जुड़ रहे हैं वड़ाली देशमुख से हैं राजेश खोबड़खेड़े, शिवसागर खोबड़खेड़े, इंद्राबाई खोबड़खेड़े इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं। मधुबनी बिहार से शब्बीर परवाना, साहिद अली, जाहिद अली जी और शाहिद अली जी साथी जुड़ रहे हैं। उज्जैन मध्य प्रदेश से हैं विनोद मोड़त, निहान जैन, दीपक मयंक मोड़त, दीक्षा कुश मोड़त, दिलीप सिंह पंवार जी। गोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार, ईशान छिपा जी। तो आइए साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं जी हाले मस्किन मुकुम बरंजिश। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। साथियों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है जाकुद राजस्थान से। फिल्म का नाम है नाम, गीत के बोल है तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा। साथियों, इस गीत को आवाज़ दी है मनहर उदास जी और मोहम्मद अजीज जी ने। फरमाइश करता जुड़ रहे हैं जाकुद राजस्थान से शमुदयाल खट्टक, विमला देवी, अमरजीत खट्टक, सुंदरलाल खट्टक, योगेश कुमार खट्टक, दीपक कुमार खट्टक, कुमारी पूजा खट्टक। इसी बीच हमारे और भी साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। नाम बताना चाहूंगी दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण, कपिल कुणाल मेहरा। जुड़ना चाह रहे हैं और भी साथी हमारे उत्तराखंड से ताज अंसारी, गुलाम शाबिराही, मेहराज जहां। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शिवन्या गोस्वामी, अन्नू गोस्वामी जी। सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोज डिकेस्ट्रो, पल डिकेस्ट्रो, विलेज डिकेस्ट्रो जी। इसी बीच श्रोता साथी हैं जज्जर हरियाणा से रिट्टू भाटिया, बिट्टू भाटिया, रजत भाटिया, मयंक भाटिया। पोटा कला दुर्ग से संजय साहू, श्वेता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू जी। दुलावपुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कक्षा, सोनू सुरेश, राजपाल पंकज जी, कालजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष सोहिनी, मोहितिक, बलवीर सिंह जी। इसी बीच हमारे साथी जुड़ रहे हैं और भी जुड़ना चाह रहे हैं मुरादाबाद से अजित कसाना, मया देवी, रितिक, आदित्य कसाना जी। तो आइए दोस्तों मनोरंजन कर लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है साथियों, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं ये मकाम। ये फरमाइश हमारे बीच आई है शिवाजी नगर कटनी से, फिल्म का नाम है आपकी कसम। श्रोता साथी जुड़ रहे हैं इस गीत के साथ में जो मनोरंजन करना चाह रहे हैं, आपको बताना चाहूंगी। श्रोता साथी जुड़ रहे हैं अनिल ताम्रकर, अमर ताम्रकर, दिलीप वर्मा जी, संजय सोनी, अरुण कोनाजिया, पवन यादव, सुनील जैन, विपिन गुप्ता, रजन रजक लालू, सोना मोना, हनी, यश जी और भी श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। साथी जुड़ रहे हैं कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन आसना, मोहम्मद कैफ अंसारी जी। इसी बीच और भी दोस्त जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में। श्रोता साथी हैं नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाड़कर, निर्मल नवाड़कर, विशाल नवाकर, महाराष्ट्र से नारायण इंगले, सोपान ताडे, आशीष मोहेरकर जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं और भी दोस्त अमरावती से हैं सिद्धार्थ गुणाने, अर्चनाताई गुणाने, हीरामन शेंडे, प्रेम प्रसिद्धि, हीरामन शेंडे और प्रतिभा गुणाने जी। साथी जुड़ना चाह रहे हैं सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योतिष, शिवांश वर्मा। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं ये मकाम। तब तक आप बने रहिएगा दोस्तों कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

दोस्तों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं वो मकाम फिर नहीं आते हैं। इसी गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं दोस्तों अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है लोरमी चिचड़ी छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है साथियों। बताना चाहूंगी आपको, परदेसी परदेसी गीत के बोल हैं श्रोता साथियों और फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी। फरमाइशकर्ता जुड़े रोल में चिचड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, पुष्पराज ऋषभ मरावी जी और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, सुनना चाह रहे हैं इसी गीत को। श्रोता साथी जुड़ रहे हैं मलियान सरदारा मेरठ से, अनिल जैन, सेम जैन, मुस्कान मास्टर, जीवीएम जैन, आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन, अंशिका जैन। साथी जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से श्याम कीटे, वनना कीटे, कार्तिक कीटे, हार्दिक कीटे और समस्त कीटे परिवार सदस्यगण। इसी बीच दोस्त से जुड़ रहे हैं फजल का पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा जी। तो आइए साथियों सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं परदेसी परदेसी जाना नहीं। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। साथियों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है धनोरी तेलीवाला से। फिल्म का नाम है कुछ कुछ होता है। गीत के बोल हैं, साथियों तुझे याद ना मेरी आई, किसे से अब क्या कहना। फरमाइश करता जुड़ रहे निशार सलमानी, नौशार सलमानी, बेबी आया, आन बाबू जी। इसी बीच हमारे साथी जुड़ रहे हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश से श्रोता साथी हैं फरुखाबाद से सुरेश चौरसिया, सदबोध चौरसिया, सुबोध सलोनी चौरसिया, संजू चौरसिया, लल्ला चौरसिया, शिवा शिवानी चौरसिया जी और पवन जी, योगेंद्र नायक कासगंज सी, और भी हमारे दोस्त जुड़ रहे हैं। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रंजन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी जी। और भी दोस्त इंदौर मध्य प्रदेश से हैं कुमारी वंदना जी, रेखा पूजा रघुवंशी, युवराज, ललिता, जगदीश चौहान, ललित, लक्ष्मी नारायण भाऊ और खड़स

जी, इसी बीच हमारे और भी श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाहते हैं। नाम बताना चाहूंगी, जुड़ना चाह रहे हैं श्रोता साथी, जगदलपुर बस्तर से पूनम नायडू जी, जयवंती केवट जी, सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, दिनेश तिवारी, सावन नाइक, अंकिता जोशी, वेदही जोशी, ये भाटापारा छत्तीसगढ़ से जुड़ रहे हैं। और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। बुलढाणा महाराष्ट्र से मदन चक्रवर्ती जी, सभा अंसारी, हर्षदा रामेश्वर जी, मनोहर भाई बागरी जी, लाडले चौबे जी, कमलकांत गुप्ता जी और विजय सुरड़कर जी, अशोक श्याम कुमार जी, प्रगानंद देवांगन जी, चंदन कुलकर्णी जी, हेमंत कुलकर्णी जी, जवाहर सिंह अरोड़ा जी। तो आइए दोस्तों मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं, तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूंगी, बल्केश्वर कॉलोनी आगरा से। फिल्म का नाम है साथियों कलंक, गीत के बोल हैं कलंक नहीं इश्क है पिया। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं आगरा से, सरिता चौरसिया, सुबोध चौरसिया, अबीर और सुमित चौरसिया जी। कानपुर से सुजाता चौरसिया, पंकज चौरसिया, दिया चौरसिया और पीहू जी। इसी बीच हमारे साथी जुड़ना चाह रहे हैं और भी, मधुबनी बेनीपट्टी से जुड़ना चाह रहे हैं बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्या कुमारी, निवेश कुमार, नियति कुमारी जी। साथी जुड़ना चाह रहे किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार जी, भानुप्रिया जी। जुड़ना चाह रहे हैं और भी दोस्त, कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी, अजय कुमार गुप्ता, रिम्मी, तनुश्री गुप्ता जी। झुमरी तलैया पीहर बाजार से हैं अभय सुल्तानी जी, सनातनी जी, शिव कुमारी, प्रियंका कुमारी साहू, रिया जीशा, टूसी और आयुषी, अरिंद्र बाबू जी, बुन्नी देवी, जय प्रकाश साहू, बसंतलाल, हीरा मोती, पन्ना लाल जी। और भी साथी जुड़ना चाह रहे कोरबा छत्तीसगढ़ से, हमारे बीच जुड़ना चाह रहे हैं दोस्त बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीवास, करुणा श्रीवास, आयुष श्रीवास, विवेक श्रीवास, बेबी आयुष श्रीवास। छत्तीसगढ़ से मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमित सोमू, मानस राज। और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं, कोरबा से लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानुषानु बबन, मनुकाना हट ठाकुर, हरिप्रिया जी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं कलंक नहीं इश्क है पिया। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। और आपको बताना चाहूंगी साथियों कि यही हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। आपसे हमारी फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में कुछ नई फरमाइश गीतों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

तो श्रोता साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को कैसे लगी, इस बारे में आप अपनी राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता ही वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज की सभा से जाने की आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को। इसी अनुमति के

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त मनीषा पटेल और स्वागत करती हूं आपका हमारे आज की सायकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। साथ ही श्रोता साथियों, बताना चाहूंगी कि स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। आज दिनांक 7 मई 2026 वार गुरुवार का दिन है। श्रोता साथियों, संध्याकालीन सभा की शुरुआत से पहले आइए जानते हैं पुनः प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सबसे पहले कार्यक्रम हम सुनेंगे भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। अगला कार्यक्रम शुरू होगा आपकी और हमारी आवाज यानी कि कार्यक्रम युवाओं की आवाज। इसे लेकर आएंगे प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 5:30 पर। इसके बाद हम रुक करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन की ओर। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पारेशर और हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6 बजे। फिर अगला कार्यक्रम शुरू होगा इसी कड़ी में किसान भाइयों का खेतीबाड़ी। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी अंजलि पारेशर और इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। दोस्तों, कार्यक्रमों की रूपरेखा में आगे बढ़ते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा सच्चा स्वराज। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता होंगी जागृति भट्ट और हमारे रेडियो साथी अंजलि पारेशर। अगला कार्यक्रम होगा हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा विशेष कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, जिसे आप सुन पाएंगे मनीषा पटेल यानी कि मेरे साथ में, और मेरे साथ होगी हमारे रेडियो साथी कशिश पारेशर। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे ठीक 7:30 पर। इसके बाद आप सुन सकेंगे कार्यक्रम सपनों की उड़ान। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी। इस कार्यक्रम को आप सुन सकेंगे ठीक 8 बजे। दोस्तों, मनोरंजन की होगी पूरी भरमार, तभी आप सुन सकेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत ठीक 8:30 पर। श्रोता साथियों, इन्हीं नगमों के बाद हम रुक करेंगे गजलों की ओर, सुनेंगे कुछ प्यार भरी गजलों को रात्रि 9 से 10 बजे तक। तो श्रोता साथियों, यह तो थी हमारी आज की संध्याकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए सभा की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम आराधना से।

0: जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वो सद्गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। वस्तुतः मनुष्य के जीवन में दुर्जनता जन्म ही तब लेती है जब उसके अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। ये आत्मविश्वास है क्या? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है, तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है। किंतु जब वो ये समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती है, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, मन की स्थिति, जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है। और जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है। स्वयं विचार कीजिए।
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनो अरे सब समस्या नो समाधान आपे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरो ने हाथे मली में जावो है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जई वरे अधिकार हमरा अपनावे जानकारी सबनो हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बहनों हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनो नाम लकाड़ो
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: पप्पा पप्पा मारे भी भणवा जावू है सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है
4: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा
3: होवे न कोई गरीबी रोके न कोई हालात रोके शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर
0: हिंडो स्कूल जा आपड़े अपना भी अपना पूरा करो
4: याद रखिए कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है
3: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा
4: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
1: जागृति बुन आप कार्य सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था
5: नाना अंजलि बोन हूँ था का
1: अरे जागृति बोन आपड़ी जे नदिया है ई हुके जाएगा खेतर बंजर थे जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
5: ओ अंजलि बोन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
1: होवे जागृति बोन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
5: होवे अंजलि बोन आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
1: होवे होवे जागृति बोन आपड़े भाई बोनों ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
1: भाई ने बोनो आप कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह या आपड़े ने कितनी शांति मिले है जेनी हवा में आपड़े हाल रह ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है एक पेड़ लगाड़ंगा पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा
3: होवे प्रकृति ने बचावो भविष्य ने हदारो
1: होवे आज नाना ना कदम है ये अब्बा वाला काल ने बदलाव ने शुरुआत है
2: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आप सभी साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
0: मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।
1: लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश हमारी बातें रहने वाली है युवा उद्यमिता को लेकर, छोटे उद्योगों से बड़े अवसरों तक।
0: बिल्कुल
1: साथियों, कहना चाहेंगे आज का युवा केवल नौकरी की तलाश करने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला, बनने की क्षमता रखने वाला युवा है।
0: जी।
1: बदलते समय के साथ उद्यमिता युवाओं के लिए एक ऐसा रास्ता बन रही है जहाँ छोटी सी शुरुआत भी भविष्य में बड़े अवसरों का आधार बन सकती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज के इस कार्यक्रम में हम हमारे युवा साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार से एक छोटी सी शुरुआत हमारे युवा साथियों के लिए बड़े सपने की तरह साबित हो सकती है।
1: बिल्कुल,
0: तो ऐसे ही ढेर सारी बातें रहेंगी युवा साथियों। लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में हम आपको पहले गीत संगीत के साथ मनोरंजन करवाते हैं, तो आइए जागृति जी, पहले हमारे युवा साथियों को हम यहाँ पर एक प्यारा सा गीत सुनवा देते हैं।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम युवाओं की आवाज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम में युवाओं की आवाज में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था और हमारी बातचीत भी रही थी कि आज हम बात करने वाले हैं युवा उद्यमिता यानी कि छोटे उद्योगों से बड़े अवसरों तक को लेकर।
1: बिल्कुल बिल्कुल जागृति जी, जैसा कि आपने बताया था कि आज के जो हमारे युवा साथी हैं वो केवल नौकरी तलाश करने वाले नहीं है बल्कि रोजगार देने वाले क्षमता रखने वाले युवा हैं। साथियों, ऐसे में अगर उद्यमिता की बात करें तो उद्यमिता का मतलब होता है केवल बड़ी कंपनियां खोलना या लाखों रुपए का निवेश करना नहीं।
0: बिल्कुल,
1: यदि किसी युवा के पास जागृति जी कोई हुनर है, विचार है, स्थानीय संसाधनों की समझ है और उसे काम में बदलने का साहस है तो वहीं से उद्यमिता की शुरुआत हो सकती है।
0: जी हाँ।
1: साथियों, घर से बनाया गया खाद्य पदार्थ, हस्तशिल्प, सिलाई कढ़ाई, डिजिटल सेवाएं, कृषि आधारित व्यवसाय, स्थानीय उत्पादों की बिक्री या छोटी सर्विस भी श्रोता साथियों, ये सभी छोटे उद्योग के रूप में शुरुआत बन सकते हैं।
0: जी हाँ कशिश, क्योंकि अक्सर युवा ये सोचकर अपना काम शुरू नहीं कर पाते कि उनके पास पर्याप्त पैसा नहीं है या उनका व्यवसाय बहुत छोटा है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन किसी भी बड़े व्यवसाय की शुरुआत हमेशा बड़े स्तर से नहीं होती। छोटी शुरुआत को कमतर समझना सबसे बड़ी गलती हो सकती है कशिश।
1: बिल्कुल।
0: मान लीजिए श्रोता साथियों कि किसी युवा को मोबाइल फोटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग का हुनर आता है, वो शुरुआत में अपने आसपास के दुकानदारों, छोटे व्यवसायों या स्थानीय कार्यक्रमों के लिए डिजिटल सामग्री तैयार कर सकता है।
1: जी हाँ।
0: धीरे धीरे उसका काम बढ़ सकता है, ग्राहक बढ़ सकते हैं और वही छोटा काम एक व्यवस्थित व्यवसाय का रूप ले सकता है।
1: बिल्कुल।
0: इसी तरह श्रोताओं, ग्रामीण क्षेत्र का युवा स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक हुनर को बाजार से जोड़कर आगे बढ़ सकता है। हमारे आसपास उपलब्ध कृषि उत्पाद, हस्तशिल्प, खाद्य पदार्थ और स्थानीय कला, रोजगार और व्यवसाय के नए अवसर पैदा भी कर सकते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी। साथी श्रोता साथियों, एक अच्छा आइडिया तभी सफल होता है जब उसे सही तरीके से जमीन पर उतारा जाए।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए युवाओं को सबसे पहले ये समझना चाहिए जागृति जी कि लोगों की जरूरत आखिर क्या है, वह इस जरूरत को किस तरह पूरा कर सकता है। श्रोता साथियों, व्यवसाय शुरू करने से पहले बाजार को समझना, ग्राहकों की पसंद जानना, लागत और संभावित कमाई का अनुमान लगाना और अपने प्रतिस्पर्धियों को देखना बहुत जरूरी है। इसके बाद एक छोटी सी योजना बनाकर शुरुआत की जा सकती है। शुरुआत में तो दोस्तों बहुत बड़ा निवेश करने के बजाय आपको सीमित संसाधनों में काम शुरू करना है और अनुभव के साथ उसे आगे बढ़ाना है और अधिक व्यवहारिक बनाना है।
0: बिल्कुल, इसी के साथ हम कह सकते हैं कि आज इंटरनेट और डिजिटल तकनीक ने छोटे व्यवसायों के लिए भी नए रास्ते खोल दिए हैं। सोशल मीडिया, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन प्रचार और ई कॉमर्स जैसे माध्यमों से युवा अपने स्थानीय उत्पादों और सेवाओं को अपने क्षेत्र से बाहर तक पहुंचा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: एक छोटा सा व्यवसाय भी यदि अच्छी गुणवत्ता, सही कीमत और भरोसेमंद सेवा देता है तो वो धीरे धीरे अपनी पहचान बना सकता है।
1: जी हाँ।
0: लेकिन डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल केवल प्रचार के लिए नहीं बल्कि सीखने और बाजार को समझने के लिए भी किया जाता है। युवा अपने क्षेत्र से जुड़े नए कौशल सीख सकते हैं और दूसरे सफल उद्यमियों से प्रेरणा भी ले सकते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी। साथ ही हमारे युवा साथियों को बताना चाहेंगे कि कौशल और उद्यमिता का संबंध भी गहरा है।
0: बिल्कुल।
1: जैसे कि उद्यमिता में केवल पैसा लगाना पर्याप्त नहीं होता साथियों, इसके लिए कई प्रकार के कौशलों की जरूरत होती है। जैसे कि संवाद करना, ग्राहकों से व्यवहार कैसे करना है, समय का प्रबंधन, हिसाब किताब रखना, डिजिटल तकनीक का इस्तेमाल करना और समस्या आने पर समाधान खोजना। इसलिए जागृति जी, युवा अपने हुनर को लगातार विकसित कर सकते हैं क्योंकि कौशल जितना मजबूत होगा व्यवसाय को आगे बढ़ाने का आत्मविश्वास उतना ही मजबूत होगा।
0: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं युवा उद्यमिता को लेकर, छोटे उद्योगों से बड़े अवसरों तक हम किस तरह से पहुंच सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: बातें निरंतर हमारे श्रोता साथियों के साथ बनी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: जी बिल्कुल, तो आइए युवा साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि साथियों, गीत से पहले बातचीत बहुत अच्छी चल रही थी और हम जान रहे थे कि किस प्रकार से युवा उद्यमिता छोटे उद्योगों से बड़े अवसरों तक का सफर है।
1: बिल्कुल,
0: हमने जैसा कि जागृति जी गीत से पहले ढेर सारी बातें हमारे युवा साथियों से की थी, हमने जाना था कि छोटी शुरुआत किस प्रकार से बड़ा सपना बन सकती है, एक छोटा सा आइडिया एक नया व्यवसाय बन सकता है, डिजिटल दौर और युवा उद्यमिता का क्या संबंध है, साथ ही कौशल और उद्यमिता के संबंध को भी हम जान पाए थे। यही अगर बात करें कि पैसा ही सबसे बड़ी बाधा नहीं है युवा साथियों, तो हम देखते हैं कि कई युवाओं को जागृति जी ऐसा लगता है कि व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा पूंजी चाहिए होती है।
1: बिल्कुल,
0: वास्तव में श्रोता साथियों, व्यवसाय के प्रकार के अनुसार शुरुआती लागत अलग अलग हो सकती है। कुछ काम बहुत कम संसाधनों में भी शुरू किए जा सकते हैं। इसके अलावा युवाओं को बैंकिंग सुविधाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली उद्यमिता एवं स्वरोजगार योजनाओं की जानकारी लेनी चाहिए। साथियों, किसी भी योजना का लाभ लेने से पहले उसकी आधिकारिक पात्रता, शर्तें और प्रक्रिया आपको जरूर समझनी चाहिए।
1: बिल्कुल, इसी के साथ हम कहना चाहेंगे कि उद्यमिता का मतलब बिना सोचे जोखिम उठाना नहीं है। इसमें जोखिम को समझना और उसकी तैयारी करना जरूरी है।
0: बिल्कुल,
1: शुरुआत से पहले बजट बनाना, अनावश्यक खर्चे से बचना, बाजार की मांग समझना और छोटे स्तर पर प्रयोग करना युवाओं के लिए मददगार हो सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: हम कह सकते हैं कशिश की व्यवसाय में असफलता भी सीखने का अवसर बन सकती है। अगर कोई योजना उम्मीद के अनुसार सफल नहीं होती है श्रोताओं, तो उसे सीख लेकर अगली रणनीति बेहतर बनाई जा सकती है।
0: जी हाँ, साथी श्रोता साथियों, जब कोई युवा अपना व्यवसाय शुरू करता है तो उसका लाभ केवल उसे नहीं मिलता, बल्कि जागृति जी, व्यवसाय बढ़ने पर वो दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकता है।
1: बिल्कुल,
0: स्थानीय उत्पादों को बाजार मिलता है साथियों, स्थानीय हुनर को पहचान मिलती है और क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां भी इससे मजबूत होती है। इसलिए युवा उद्यमिता केवल व्यक्तिगत सफलता का रास्ता नहीं है, बल्कि समाज में रोजगार और आत्मनिर्भरता बढ़ाने का भी एक माध्यम है।
1: जी हाँ कशिश, तो हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि साथियों, आप अपने सपनों को केवल नौकरी की तलाश तक सीमित मत रखिए।
0: बिल्कुल,
1: अपने आसपास की समस्या और जरूरतों को ध्यान से देखिए। हो सकता है कशिश की जिस समस्या को हम रोज देख रहे हैं उसी में किसी नए व्यवसाय का अवसर छिपा हो।
0: बिल्कुल
1: साथियों, आपसे कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि छोटा काम छोटा सपना नहीं होता। जरूरी है कि शुरुआत ईमानदारी से हो, सीखने की इच्छा बनी रहे और हर कदम के साथ काम को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए याद रखिए, बड़ा अवसर हमेशा बड़े निवेश से नहीं, बड़ी सोच विचार और छोटी सी साहसी शुरुआत से पैदा होता है। आज का युवा अगर अपने हुनर, विचार और मेहनत को सही दिशा दे कशिश, तो वो केवल अपने लिए रोजगार नहीं बना सकता, बल्कि दूसरों के लिए भी अवसरों के दरवाजे खोल सकता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, साथी दोस्तों, समस्या को अवसर की तरह आपको देखना जरूरी है। जैसे कि सफल उद्यमी केवल ये नहीं देखते जागृति जी कि बाजार में आखिर बिक क्या रहा है, बल्कि ये भी पहचानते हैं कि लोगों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
1: जी हाँ।
0: और उसका बेहतर समाधान क्या हो सकता है। साथ ही स्थानीय जरूरतों को समझना भी जरूरी है, जैसे कि गांव और छोटे शहरों में भी ऐसी कई जरूरतें होती हैं जिनके लिए लोग दूर जाते हैं। युवा इन स्थानीय जरूरतों को पहचान कर उपयोगी सेवाएं शुरू कर सकते हैं। जागृति जी, छोटे व्यवसाय की सबसे बड़ी ताकत दोस्तों ग्राहक का भरोसा होता है। ऐसे में अच्छी गुणवत्ता और ईमानदार व्यवहार धीरे धीरे व्यवसाय की मजबूत पहचान बन सकते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, तो हमारे श्रोता साथियों को आज की इस बातचीत के माध्यम से हम ये कहना चाहेंगे कि दोस्तों, आप सपने देखने में कभी कंजूसी मत कीजिए, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए पहला कदम उठाने से डरिए भी मत। याद रखिए, किसी भी बड़े उद्योग की शुरुआत एक विचार से होती है, एक विचार, एक हुनर, एक छोटी सी जरूरत और उसे पूरा करने का साहस, यही उद्यमिता की पहली सीढ़ी है।
0: बिल्कुल,
1: जरूरी नहीं है श्रोताओं की शुरुआत किसी बड़े कार्यालय से हो, बड़ी मशीन से हो या बहुत बड़े निवेश से हो। शुरुआत हमारे घर के एक कमरे से भी हो सकती है, हमारे गांव की एक छोटी दुकान से भी हो सकती है, हमारे खेत से भी हो सकती है, हमारे हुनर से भी हो सकती है, हमारे मोबाइल से या हमारे दिमाग में आए एक नए विचार से भी हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: हो सकता है आज हमारे पास केवल एक हुनर हो सकता है हमारे पास केवल एक छोटा सा विचार हो सकता है हमारे पास पूंजी कम हो, लेकिन दोस्तों, अगर हमारे पास सीखने की इच्छा, मेहनत करने का जज्बा और सही दिशा में आगे बढ़ने का साहस है, तो यही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है।
0: बिल्कुल जागृति जी, साथियों आपसे कहना चाहेंगे कि युवा उद्यमिता केवल अपना व्यवसाय शुरू करने का नाम नहीं है, बल्कि अपने विचारों को अवसर में और अपने हुनर को पहचान में बदलने का भी नाम है। जरूरी नहीं है कि शुरुआत हमेशा बड़ी ही की जाए। एक छोटा सा विचार, सीमित संसाधन और सीखने की सच्ची इच्छा भी जागृति जी, भविष्य की बड़ी सफलता की नींव बन सकती है। साथियों, अपने आसपास की जरूरतों को आप पहचानिए, नए विचारों के लिए खुले रहिए और अपने काम में ईमानदारी और गुणवत्ता को सबसे ऊपर रखिए, क्योंकि श्रोता साथियों, सपने वह नहीं जो आंखें बंद करने पर दिखाई दे, सपने तो वो है जो आंखें खोलकर उन्हें पूरा करने का हौसला भी दे।
1: बिल्कुल कशिश, तो अंत में हमारे श्रोता साथियों को ये कहना चाहेंगे कि श्रोताओं, अपने भीतर छिपे हुनर को पहचानिए, अपने विचार को महत्व दीजिए, छोटी शुरुआत से शर्माइए मत, सीखने से कभी रुकिए मत, असफलता से घबराइए मत और सफलता मिलने पर दूसरों को साथ लेकर चलिए, क्योंकि बड़ा बनने के लिए शुरुआत बड़ी होना जरूरी नहीं है, सोच बड़ी होना बहुत जरूरी है।
0: जी हाँ।
1: याद रखिए, एक छोटा विचार कल का बहुत बड़ा व्यवसाय बन सकता है, एक छोटा व्यवसाय कल कई परिवारों की उम्मीद बन सकता है, एक युवा की मेहनत कल कई युवाओं के लिए रोजगार का रास्ता खोल सकती है।
0: बिल्कुल,
1: क्यों ना आज से ही हम अपने मन में ठान लें कि हम केवल नौकरी खोजने की सोच तक सीमित नहीं रहेंगे, हम अपने हुनर को पहचानेंगे, नए कौशल सीखेंगे, समस्याओं में अवसर खोजेंगे और अपनी क्षमता के अनुसार कुछ नया करने की कोशिश करेंगे।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो इन्हीं बातों के साथ दोस्तों, अब हम कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति चाहेंगे, क्योंकि बातें कार्यक्रम में आज हमारी आपसे ढेर सारी रही।
1: बिल्कुल,
0: तो विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं यहाँ पर एक और गीत के साथ में।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन थकी भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके। जल्दी थकान थावी शारीरिक कमजोरी याददाश्त में कमी श्वास फूलवू आ सब एनीमिया ना लक्षण है। होवे भाईन बोनू आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े में देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे। आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है। होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी गुड़ बाजरा तिल नींबू ने संतरा गोभी तरबूज आंवला टमाटर नु सेवन करवो सुवे। होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर कार्यक्रम सच्चा बचपन। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर।
1: और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर।
0: स्वीकार कीजिए साथियों हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
1: जी हां श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन को आज एक नए विषय के साथ में। आज हम बच्चों की पढ़ाई से जुड़े एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे कशिश, जो लगभग हर घर की कहानी बन चुका है।
0: बिल्कुल,
1: जैसे ही स्कूल से बच्चा घर आता है और होमवर्क की बात होती है तो कई घरों में तनाव का माहौल बन जाता है।
0: जी
1: कोई
0: हाँ।
1: बच्चा कहता है कि मुझे होमवर्क नहीं करना, तो कोई रोने लगता है, तो कोई बहाने बनाने लगता है, तो कोई मोबाइल देखने की जिद करने लगता है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में माता पिता भी परेशान हो जाते हैं, कई बार डांट फटकार या गुस्से का सहारा लेने लगते हैं। लेकिन श्रोता साथियों, क्या हमने कभी यह सोचा कि आखिर होमवर्क बच्चों के लिए बोझ क्यों बनता जा रहा है?
0: बिल्कुल,
1: क्या वास्तव में समस्या होमवर्क में है या उसे करने के तरीके में है?
0: जी हाँ,
1: आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे।
0: बिल्कुल,
1: होमवर्क को बोझ नहीं बल्कि सीखने का सुनहरा अवसर कैसे बनाएं।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो बातें ढेर सारी होंगी आज के इस कार्यक्रम में, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे साथियों को हम गीत सुनवाएं।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले विषय तो आपको बता ही चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं साथियों, कि हम बच्चों को बताएं कि होमवर्क बोझ नहीं होता बल्कि सीखने का अवसर होता है। जैसा कि अंजलि जी, गीत से पहले आपने कुछ महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोता साथियों को बताई थी।
1: जी,
0: कि होमवर्क का उद्देश्य जो है वो बच्चों पर ज्यादा दबाव डालना नहीं होता, बल्कि बच्चों को सीखने का एक नया अवसर ये प्रदान करता है।
1: जी,
0: ऐसे में श्रोता साथियों, हमें बच्चों को ये बताना है कि वो होमवर्क को घर पर दोहराएं, समझे और अभ्यास करते रहें, क्योंकि जब बच्चा स्वयं अभ्यास करता है तब उसकी समझ मजबूत होती है अंजलि जी, और वह सीखी हुई बातों को लंबे समय तक याद भी रख पाता है। देखते हैं कि होमवर्क को सही दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यह सीखने की प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथियों, यहाँ पर समस्या तब शुरू होती है जब होमवर्क केवल जिम्मेदारी या दबाव बन जाता है। कई बार बच्चे स्कूल से थके हुए घर लौटते हैं, घर पहुंचते ही उन्हें बिना आराम किए पढ़ने के लिए बिठा दिया जाता है।
1: बिल्कुल,
0: कुछ बच्चों पर तो अंजलि जी बहुत अधिक होमवर्क का दबाव होता है, तो कुछ

0: बच्चों को तो ये पढ़ाई कठिन लगती है। ऐसे में श्रोता साथियों, उनके मन में होमवर्क के प्रति डर और नकारात्मक भावनाएं पैदा हो जाती हैं।
1: जी हाँ बिल्कुल कशिश, यहाँ पर माता पिता की जो भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि वे हर समय केवल यह पूछते रहें कि होमवर्क पूरा हुआ या नहीं, इतनी देर क्यों लग रही है या जल्दी करो, तो बच्चा पढ़ाई को आनंद की जगह तनाव से जोड़ने लगता है।
0: बिल्कुल,
1: इसके बजाय माता पिता को यह जानने की कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे को किस विषय में कठिनाई आ रही है। उसे डांटने की बजाय समझाना, उसके साथ बैठना और उसका मनोबल बढ़ाना बहुत अधिक प्रभावी होता है।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, होमवर्क करने के लिए घर में एक शांत और व्यवस्थित वातावरण होना चाहिए। यदि आसपास टीवी चल रही हो, मोबाइल का शोर हो या बार बार व्यवधान आए, तो बच्चों का ध्यान भटकना स्वाभाविक है। इसलिए पढ़ाई के समय ऐसा माहौल बनाना चाहिए जहाँ बच्चा एकाग्र होकर अपना कार्य पूरा कर सके। हमें बच्चों को यह भी सिखाना चाहिए कशिश कि होमवर्क केवल कॉपी भरने का नाम नहीं है। यदि कोई प्रश्न समझ में नहीं आता तो उसे पूछना चाहिए। यदि कोई नया शब्द मिलता है तो उसका अर्थ जानने का प्रयास करना चाहिए। यदि किसी विषय में रुचि जगानी है तो उसके बारे में अतिरिक्त जानकारी भी खोजनी चाहिए।
0: जी जी,
1: यही आदत बच्चों में जिज्ञासा और सीखने का आनंद विकसित करती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी। साथ ही श्रोता साथियों, आज के समय में जैसा कि तुलना भी बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा दबाव बन गई है। कई माता पिता को हमने कहते हुए सुना है अंजलि जी कि वे कहते हैं कि देखो तुम्हारा दोस्त तो अपना होमवर्क पहले से ही पूरा कर लेता है। साथियों, ऐसी बातें बच्चों का आत्मविश्वास कम करती है। हर बच्चे की सीखने की गति अलग होती है, इसलिए तुलना करने के बजाय उसकी अपनी प्रगति की सराहना आपको करनी चाहिए।
1: जी हाँ,
0: साथ ही इसमें शिक्षकों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है अंजलि जी। यानी कि यदि शिक्षक होमवर्क का उद्देश्य बच्चों को समझाएं, उनकी समय समय पर समीक्षा करते रहें और बच्चों के प्रयासों की सराहना करेंगे तो बच्चे उसे और अधिक रुचि से करेंगे।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, केवल गलतियां निकालने के बजाय सही प्रयासों की प्रशंसा करना भी जरूरी होता है। साथ ही होमवर्क को रोचक बनाने के लिए पढ़ाई के बीच बीच छोटे छोटे विराम भी दिए जा सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: कठिन विषय पहले और आसान विषय बाद में करने की योजना बनाई जा सकती है। समय का सही प्रबंधन बच्चों को तनाव से बचाता है और पढ़ाई को और भी आसान बनाता है। अंजलि जी
1: बिल्कुल कशिश, तो इस तरीके से कार्यक्रम में आज हम बहुत अच्छी तरीके से ये जान रहे हैं कि होमवर्क को हमें बोझ नहीं समझना है बल्कि सीखने का अवसर बनाने की जरूरत है। तो ये बातें निरंतर आगे और भी कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों के साथ बनी रहेंगी
0: जी।
1: लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि गीत से पहले कशिश हमने ढेर सारी बातों को जाना ही कि किस तरीके से बच्चों के होमवर्क को हमें रोचक बनाना है।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को पूरा दिन केवल पढ़ाई में ही नहीं बिताने देना चाहिए। उन्हें खेलने, परिवार के साथ समय बिताने, कहानी पढ़ने, अपनी रुचियों को पूरा करने का अवसर भी मिलना चाहिए।
1: जी हाँ।
0: संतुलित दिनचर्या वाला बच्चा होमवर्क को अधिक उत्साह से करता है।
1: बिल्कुल।
0: हमें बच्चों को ये समझाना चाहिए कि होमवर्क केवल शिक्षक को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को बेहतर बनाने के लिए हर दिन किया गया छोटा सा अभ्यास भविष्य में बड़े आत्मविश्वास और सफलता का आधार बनता है।
1: बिल्कुल।
0: जब बच्चा यह समझ लेता है कि पढ़ाई उसकी अपनी प्रगति के लिए है, तब वह होमवर्क को बोझ नहीं बल्कि सीखने का अवसर मानने लगता है।
1: जी जी।
0: इसलिए कहा जा सकता है श्रोता साथियों कि होमवर्क को लेकर बच्चों और माता पिता दोनों की सोच बदलने की आवश्यकता है। यदि घर में सहयोग, प्रोत्साहन, धैर्य और सकारात्मक माहौल होगा तो बच्चा पढ़ाई से नहीं भागेगा बल्कि सीखने में आनंद महसूस करेगा। यही आनंद उसे जीवन भर सीखते रहने की प्रेरणा देगा और शिक्षा को केवल अंकों तक सीमित नहीं रहने देगा।
1: साथ ही हम अंजलि जी अपने बच्चों को ये भी बताएं कि होमवर्क का वास्तविक उद्देश्य केवल कॉपी के पन्ने भरना या अगले दिन शिक्षक को दिखाना नहीं है। यह बच्चों को आत्मनिर्भर बनने, नियमित अभ्यास करने, समय का महत्व समझने और अपने सीख को मजबूत करने का अवसर देता है।
0: बिल्कुल।
1: यदि बच्चे ये समझ जाएंगे साथियों कि होमवर्क उनके विकास का एक साधन है न कि सजा का, तो पढ़ाई के प्रति उनका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल सकता है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए जरूरत होमवर्क को खत्म करने की नहीं बल्कि उसे देखने और कराने के तरीकों को बदलने की है। अंजलि जी।
0: जी हाँ, यही श्रोता साथियों, अक्सर हम बच्चों से यह उम्मीद करते हैं कि वे हर काम पूरी तरह सही करें, लेकिन यह भूल जाते हैं कि सीखने की प्रक्रिया में गलतियां होना स्वाभाविक है। यदि बच्चा किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है या होमवर्क में गलती करता है कशिश, तो उसे डांटने के बजाय समझने, सुधारने का अवसर देना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: जब बच्चों को यह विश्वास मिलता है कि गलती करने पर उनका मजाक नहीं उड़ाया जाएगा बल्कि उन्हें सही दिशा दिखाई जाएगी, तब वे बिना डर के सीखने का प्रयास करते हैं और उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है।
1: बिल्कुल।
0: ये भी याद रखना चाहिए श्रोता साथियों कि हर बच्चा अलग होता है। कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे धीरे समझता है, तो कोई लिखने में अच्छा होता है, तो कोई बोलकर अपनी बात बेहतर तरीके से व्यक्त करता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए बच्चों की तुलना करने की बजाय उनकी व्यक्तिगत क्षमता और सीखने की गति का सम्मान करना आवश्यक है। जब बच्चा अपने प्रयासों की सराहना महसूस करता है, तब वह पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि अपनी प्रगति का माध्यम मानता है।
1: जी हाँ अंजलि जी। साथी दोस्तों, माता पिता, शिक्षक यदि मिलकर बच्चों के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करेंगे जहाँ जिज्ञासा को प्रोत्साहन मिले, प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता हो, प्रयासों की सराहना हो और सीखने को अंकों से अधिक महत्व दिया जाए,
0: जी जी,
1: तो अंजलि जी शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य पूरा होगा। होमवर्क तब केवल किताबों तक सीमित नहीं रहेगा साथियों, बल्कि बच्चों में अनुशासन, जिम्मेदारी, धैर्य, आत्मविश्वास के साथ साथ समस्या का समाधान खोजने जैसी जीवन भर काम आने वाली क्षमताओं का भी विकास करेगा।
0: जी हाँ।
1: ऐसे में हम अपने बच्चों को यह एहसास दिलाएं कि पढ़ाई किसी प्रतियोगिता में दूसरों को हराने के लिए नहीं है बल्कि स्वयं को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाने के लिए है। जब घर का माहौल सहयोग, विश्वास और प्रोत्साहन से भरा होगा, तब बच्चे बिना किसी डर के नई बातें सीखने का साहस करेंगे।
0: जी हाँ।
1: वे केवल अंजलि जी अच्छे अंक लाने वाले विद्यार्थी नहीं बनेंगे बल्कि समझदार, जिज्ञासु और आत्मनिर्भर सीखने वाले भी बनेंगे।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हमारे श्रोता साथियों को हम कार्यक्रम के अंत में यही कहना चाहेंगे कि होमवर्क का असली महत्व उसकी मात्रा में नहीं बल्कि उससे मिलने वाली सीख में छिपा होता है। यदि हम बच्चों को यह समझा दें कि हर अभ्यास उन्हें अपने सपनों के एक कदम और करीब ले जाता है, तो वे किताबों को बोझ नहीं बल्कि अपनी भविष्य का साथी मानेंगे।
1: बिल्कुल।
0: ऐसा बचपन केवल परीक्षा में ही नहीं बल्कि जीवन की हर चुनौती में धैर्य, समझ और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेगा। यही सीखने की सबसे बड़ी सफलता है और यही सच्चे बचपन की सबसे सुंदर पहचान भी है।
1: जी हाँ अंजलि जी। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी हैं, और अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि समय भी हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: बिल्कुल।
1: तो विदा हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे साथियों को यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत हम सुनवाएं।
0: जी हाँ।

0: दोस्तों इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। हम उम्मीद करते हैं आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे।
1: जी हाँ।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान।
0: जी हाँ।
1: हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेषर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारेषर को।
1: नमस्कार।

एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमारा वारा हंगर किसान भाई बोनों ने आपनी बोन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बोन आप हमरे रहो आपनो सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM माथे ने आप सबनु घणेमान स्वागत करा हा अमारे आज ने कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम की किसान भाई बोनो अमे अमारे टेम माथे हाजिर थई गया हा कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक नया विषय ने हाथे। तो किसान भाई बोनो आज हमारी आप तक की बातचीत नु विषय है कि वर्षा ऋतु में आपड़े जे पशु है एना ने कया कया रोग थाय ने एना ने रोकथाम आपड़े हरते करी शक। तो किसान भाई बोनो अणा विषय माते अमारी आप तक कार्यक्रम में घना कनी वाते थाएंगा पण कार्यक्रम शुरू करा एने पहले आपने हमरा विदा गीत ने मोरे करा आपड़ी वाते। तो किसान भाई बोन आप हमर तरेजू आपड़ो रेडियो आपड़ी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: સાન ભાઈ બોનું ગીત તો આયશું પૂરું, અને ગીત બાદ એક વખત ફીરી આપ સબનું ઘણીમાન સ્વાગત કરહ અમારે આજને કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. જેમ કે કિસાન ભાઈ બોનો, અમે આપને ગીત કે પહેલે વિશે બતાડી દીધું હતું કે આજે આપણે વાત કરવા વાળા હ કે વર્ષા ઋતુ મેં પશુઓને થવા વાળા રોગ ને એનાનો ઉપચાર આપણે હરતે કરી શક. તો કિસાન ભાઈ બોનો, અણા વિશે માટે જાણકારી આલવા બદલે આજે આપણે સ્ટુડિયો મેં પથારે તકે હે શ્રીમાન સોહનના જોગી સર. તો સપ્તકી પહેલા આપણે હામરી લણની વાત અને મોરે કર આપણી વાત. સર નમસ્કાર.
1: નમસ્કાર
0: સર, આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતે હૈ વાઘટ રેડિયો પરિવાર મેં.
1: ધન્યવાદ
0: સર. જૈસા કે આપ જબ ભી હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે જુડતે હૈ તો હમારે કિસાન ભાઈ બહેનો સે હમારે બીચ મેં એક નયા વિષય જુડતા હૈ. તો આજ ભી હમ કાર્યક્રમ મેં આપસે જાનને વાલે હૈ કે વર્ષા ઋતુ જો ચલ રહી હૈ ઇસી બીચ હમ દેખતે હૈ કે હમારે જો કિસાન ભાઈ બહેન હૈ વો પશુપાલન ઓર ખેતી દોનો કરતે હૈ. તો હમ દેખતે હૈ કે પશુઓ મેં બહોત સારે રોગ વર્ષા ઋતુ મેં હો જાતે હૈ. તો હમારે કિસાન ભાઈ બહેન જો હૈ વર્ષા ઋતુ મેં પશુઓ કો રોગો સે કૈસે બચાએ, આજ હમારે યહ વિષય જો હૈ વો બાતચીત કા રહેગા.
1: देखिए किसान भाई हूँ, सीधा सा है कि वर्षा होती है, वर्षा के कारण आसपास के वातावरण में नमी होती है और नमी बढ़ने से जो रोगाणु है उनकी जो गतिविधि है उनमें एकदम तेजी आ जाती है.
0: जी बिल्कुल.
1: तो संक्रमण जो है वर्षा ऋतु में बहुत जल्दी फैलता है, बहुत आक्रामक तरीके से फैलता है.
0: जी बिल्कुल सर.
1: तो हमें हमारे पशुओं को सर्वप्रथम तो ये करना चाहिए कि वर्षा ऋतु से पूर्व जो टीकाकरण, जो हमारा नियमित टीकाकरण है वो हमको करवा लेना चाहिए.
0: जी जी.
1: ताकि हम जो है संक्रमण से बच सके और उसका संक्रमण के प्रभाव को कम रख सके पशु के अंदर.
0: जी बिल्कुल. तो सर ये तो आपने बताया कि किस तरीके से हमें वर्षा ऋतु आने से पहले ही हमारे जो पशु है उनका टीकाकरण करा लेना है. तो सर अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि हमारे जो पशु हैं उन्हें वर्षा ऋतु में कौन कौन से रोग होते हैं और कैसे उनके क्या उनमें लक्षण दिखाई देते हैं और कैसे हम उनकी रोकथाम कर सकते हैं.
1: देखिए श्रोताओं, पशु में वर्षा ऋतु में मुख्यतः जो रोग देखे जाते हैं उनमें गलगोटू, लंगड़ा बुखार और परजीवी जो है ये मुख्य होते हैं.
0: जी बिल्कुल.
1: उनको सर्दी, जुकाम, खांसी, निमोनिया, तो बुखार, तो ये आम तरह के रोग है वो
0: जी
1: भी पशु में पाए जाते हैं. और मुख्यतः आज जो हम चर्चा करेंगे उनमें जैसे कि गलगोटू है, लंगड़ा बुखार है और परजीवी के बारे में मुख्यतः चर्चा करेंगे.
0: जी बिल्कुल.
1: जो गलगोटू रोग है उसमें गले के अंदर जो पशु है उसके अंदर सूजन आ जाती है, गला एकदम सूज जाता है.
0: जी जी.
1: और रोगाणु काफी तुरंत प्रभाव से बहुत जल्दी इसमें संक्रामक होता है और पशु की अकाल मृत्यु हो जाती है. काफी तीव्र संक्रामक होता है और उसको छूते ही, मतलब जैसे अगर कोई दूसरा पशु है उसको छूगा तो छुएगा तो उसको भी ये रोग आने का खतरा रहता है.
0: जी बिल्कुल.
1: तो और इसमें जो है इसका पहचान हम, एक तो मैंने बताया कि जैसे गला सूज जाता है पूरी तरह से और उसको तेज बुखार आता है, खाना पीना पशु छोड़ देता है, आंखें एकदम से लाल हो जाती है, आंखों में से पानी गिरने लगता है और पशु दर्द के मारे बहुत बुरी तरह से कर्राता है और गले से जो है गर गर की आवाज आती है.
0: जी जी.
1: और वह जमीन पे गिर जाता है और मुंह से लगातार लार टपकती है और अंत में जो है पशु एक तरह से जो है वो मृत्यु प्राप्त कर लेता है.
0: जी बिल्कुल.
1: तो मतलब कोई पशु जैसे दो तीन दिन का ये इसका रहता है, दो तीन दिन में ये सारी प्रक्रिया हो जाती है.
0: जी बिल्कुल.
1: तो हम जो इसका जो उपाय है या रोकथाम का तरीका है कि समय पे जो है पशु को हमको गलगोटू का समय से टीकाकरण करवा ले और ये टीकाकरण भी हमको वर्षा से पूर्व कराना चाहिए.
0: जी बिल्कुल.
1: ठीक है ना. तो वर्षा से पूर्व कराएंगे तो इतने में इनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता है
0: वो
1: बना लेगा और इस बीमारी से बचा जा सकता है. हर पशु को हर साल टीकाकरण अनिवार्य है. बीमार पशु को, जैसा आपको लगता है कि कोई पशु है बीमार है, तो बीमार पशु को जो स्वस्थ पशु है उससे अलग कर लेवे. जो पशु मर गया उसको वहां पे एंटीसेप्टिक दवाओं से या रोगाणु नाशक दवाओं से वहां अच्छी तरह से, वो फर्श है जहाँ पे पशु मरा है उसको अच्छी तरह से धो देना चाहिए.
0: जी बिल्कुल.
1: है ना. आवास को बिल्कुल साफ सुथरा और स्वच्छ हमको रखना चाहिए और रोग की संभावना होने पर तुरंत हम पशु चिकित्सक की सलाह ले और मृत पशु को हमको खुला नहीं छोड़ना चाहिए और मृत पशु को हमको खड्डा खोद के और किसी ऐसी जगह दफनाना चाहिए ताकि उसका संक्रमण है दूसरे पशु को नहीं फैले।
0: जी बिल्कुल।
1: तो इन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए और जो है बचाव ही इसका उपाय है एक तरह से देखा जाए।
0: जी बिल्कुल सर। तो ये तो आपने बताया कि हमारे जो पशु हैं उन्हें अगर गलगोटू रोग हो जाता है तो उसके क्या लक्षण हो सकते हैं और रोकथाम के हम क्या उपाय कर सकते हैं। यही सर, अब आप हमें ये बता दीजिए कि लंगड़ा बुखार जो होता है उसमें पशु को क्या लक्षण दिखते हैं और उसकी रोकथाम और बचाव हम कैसे कर सकते हैं।
1: देखिए, लंगड़ा जो बुखार है वो देखे हम तो इसको आप हमारी जो देसी भाषा में जहर बात बोलते हैं और उसको अंग्रेजी में ब्लैक वाटर बोलते हैं और इसीलिए BQ का टीका जो है वर्षापुरु लगाया जाता है।
0: जी जी,
1: हमने सभी ने सुना होगा। तो ये लंगड़ा बुखार के लिए ही होता है।
0: जी बिल्कुल।
1: और ये लंगड़ा बुखार जो है पीछे से जो पशु है एक तरह से लंगड़ा के चलने लगता है, बहुत ही तेज बुखार आता है इसमें।
0: जी जी।
1: और उसको पशु के जो पिछला हिस्सा है उसको मांस को गर्द दबाने से उसमें से चर चर की आवाज आती है और पीठ पे बहुत सूजन हो जाती है।
0: जी जी।
1: और चमड़ी एकदम कड़क हो जाती है और बाल सभी खड़े होते हैं और पेट में जो है गैस भर जाती है। तो यही इसकी पहचान है।
0: जी जी।
1: और ये काफी मतलब काफी घातक रोग है।
0: जी जी।
1: और ये एक बार अगर मान लो पशु को आ जाता है तो मतलब इसमें जो मृत्यु दर है काफी ज्यादा है इस वाली बीमारी में।
0: जी जी।
1: और इसका भी जैसे मैंने गलगोटू में बताया था उसी तरह से इसमें जो टीकाकरण है वर्षा पूर्व इसका टीकाकरण करवावे।
0: जी जी।
1: और हो सके तो हर 6 माह में इसका जो टीका है वो हम रिपीट करवावे।
0: जी।
1: और पशुपालन विभाग से अभी जो राजस्थान सरकार ने मात्र 2 रुपए की शुल्क पे आपके पशु के लिए टीका उपलब्ध है।
0: जी जी।
1: हम क्या आलस के मारे हमारे पशुओं को जो है हम टीकाकरण नहीं करवाते।
0: जी बिल्कुल सर।
1: और ये काफी गंभीर विषय है, हमको सोचना चाहिए।
0: जी बिल्कुल।
1: क्योंकि पशु है वो बोल नहीं पाता है और उसकी आवाज तो खुद पशुपालक ही है।
0: जी जी।
1: और उसकी जो पीड़ा है वो किसी को बता नहीं पाता है, उसकी पीड़ा को पशुपालक ही समझ सकता है।
0: जी जी।
1: तो जो अनबोले जो पशु है जो बोल नहीं सकता है उसको हमको समझना चाहिए, उसके दर्द को समझना चाहिए और उसको समय पे हमको टीकाकरण करवाना चाहिए। साथ ही रोगग्रस्त जो पशु है उसको स्वस्थ पशु से अलग कर देना चाहिए। पशु के मृत्यु के बाद जो है जिस जगह पशु मरा है उस जगह को बढ़िया कीट मतलब जो रोगाणुनाशक दवाओं के साथ में जो है उसको अच्छी तरह से साफ सुथरा करना चाहिए।
0: जी बिल्कुल सर।
1: और जैसे जो पशु चिकित्सक से हमको जो है सलाह लेनी चाहिए और मतलब पशु को जो है सूजन जैसे ही आवे तो उसको एक तरह से चीरा लगा के खोल देना चाहिए ताकि जो है उसका थोड़ा सा प्रभाव है पशु में वो थोड़ा कम रहे और उससे पशु को कुछ समय के लिए बचाया जा सकता है।
0: जी बिल्कुल सर।
1: और मतलब एक तरह से देखा जाए तो इसका जो है डॉक्टरी इलाज ही एक इलाज है जिससे पशु को बचाया जा सकता है, बाकी दूसरी प्रकार से कोई इलाज करने की इसमें कोशिश ना करें।
0: जी बिल्कुल सर।
1: और इसी प्रकार से जो है ये बीमारी बड़ी घातक है और इसको जो है मैं फिर से यही कहना चाहता हूँ कि गलगोटू और लंगड़ा बुखार का जो है टीकाकरण हमको वर्षा से पूर्व करवाना चाहिए। इसी के साथ ही एक और जैसे जो परजीवी है वो वर्षा ऋतु में काफी आक्रामक हो जाते हैं।
0: जी बिल्कुल सर।
1: और चूंकि गर्मी के दिनों में देखते हैं मैं तो भेड़ बकरियां वगैरह जो है काफी मात्रा में जो है गर्मी के दिनों में हर जगह घूम जाती है और भेड़ बकरियों के जो मींगनी होती है उनमें जो है परजीवियों के अंडा है।
0: जी जी।
1: वो उनके अंदर होता है और जैसे ही वर्षा होती है और चारा उगता है तो वो अंडा जंतु बनके और वो जो है घास के ऊपर आ जाता है और क्योंकि पशु घास को चरता है तो वो घास के साथ में जो है वो परजीवी है उसके पेट में चले जाते हैं।
0: जी बिल्कुल सर।
1: और पेट में जाते हैं तो वो धीरे धीरे बड़े होते हैं, पशु का रक्त चूसने लगते हैं और वो आंत में चले जाते हैं, हृदय मांसपेशियां गुर्दा यकृत आदि के अंदर वो चले जाते हैं और फिर उनको नुकसान पहुंचाना चालू कर देते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: पशु काफी कमजोर हो जाता है, एकदम बाल खड़े हो जाते हैं, चमड़ी है बिल्कुल उसका जो हड्डियों से चिपकी हुई दिखती है, पशु खाना कम कर देता है
0: जी बिल्कुल,
1: और पतला दस्त करता है, कभी कभी बार जो है दस्त के अंदर खून आता है, जो ये सारी जो
0: लक्षण लक्षण है जी बिल्कुल,
1: इससे हमको ये समझना चाहिए कि जो ये है अंत परजीवी है, पेट के अंदर होने वाले परजीवी है और इनकी रोकथाम के लिए जो है वर्षा काल से पूर्व हमको जो है दवा पिलानी चाहिए, एल्बेंडाजोल जो दवा आती है वो पशु को पिलानी चाहिए, या
0: हाँ।
1: गोली आती है तो वो गोली पशु को देना चाहिए और साथ ही जो पशु को संतुलित पशु आहार देना चाहिए ताकि पशु है वो बीमार नहीं पड़े और हृष्ट पुष्ट रहे और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है बनी रहे। बीमार पशु को स्वस्थ पशु से अलग कर देना चाहिए
0: हाँ।
1: क्योंकि अगर किसी पशु को इस तरह जो अंत परजीवी है पेट में आए हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके जो गोबर के साथ में वो परजीवी निकलेंगे और उससे जो है दूसरा जो पशु है वो संक्रमण लग सकता है और उसके भी जो है पेट में कीड़े जा सकते हैं।
0: जी बिल्कुल।
1: पशु का आवास है साफ सुथरा रखना चाहिए, गीलापन नहीं होना चाहिए और पशु को जो है तालाब के आसपास भरे हुए पानी में नहीं चराना चाहिए ताकि जो है वो परजीवी उसके पेट में नहीं रहे। एक जो बाह्य परजीवी होते हैं जिसमें जू चिचड़े इस प्रकार के भी पशु को लगते हैं तो उनको भी अगर मान लो ऐसे अगर जू चिचड़े और ये लग जाए तो हमको जो पशुपालन विभाग है वहां जाके हमको दवा लानी चाहिए और दवा लाके पशु में लगानी चाहिए और पशु को माह में कम से कम दो बार उसको अच्छे से नहाना चाहिए ताकि जो है उसका जो बाह्य शरीर है वो भी साफ सुथरा रहे और बाह्य परजीवियों का अटैक नहीं होए और साथ ही आजकल जो है पशु में बाह्य परजीवी अगर मान लो हो जाते हैं तो उसकी चमड़ी में इंजेक्शन भी लगते हैं
0: जी
1: तो डॉक्टरी सलाह लेके और डॉक्टर से वो इंजेक्शन लगवाए ताकि इस बीमारी से बचा जा सके क्योंकि पशु हमारा जो वागड़ है पशुपालन आय का कृषि के साथ एक मुख्य स्रोत है
0: जी बिल्कुल
1: और हमारे पशु स्वस्थ रहेंगे तो वो हमको अच्छा उत्पादन देंगे, हमारे कृषि कार्य में मदद भी अच्छी तरह से करेंगे। अगर बीमार पशु रहेंगे तो जाहिर सी बात है कृषि और जो पशु उत्पादन है दोनों का जो उत्पादन है वो बाधित होगा।
0: जी जी।
1: तो आखिर में मैं पशुपालकों को यही सलाह देना चाहूंगा कि आप जो है वर्षा पूर्व नियमित टीकाकरण करवाएं और बाह्य और अंतर्जीवी के जो रोग हैं उनसे बचाव हेतु उनको दवा पिलाएं और टीका लगवाएं।
0: जी बिल्कुल। तो सर जैसा कि कार्यक्रम में आपने बहुत अच्छी बात से हमारे किसान भाई बहनों को अवगत करवा दिया है कि वर्षा ऋतु में जो हमारे पशुओं को रोग होता है उससे हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं, टीकाकरण तो हमारे किसान भाई बहनों को वर्षा से पूर्व करा ही लेना है और वर्षा जब आ जाती है उसके बाद उन्हें ये ध्यान रखना है कि उनका जो आवास है वो साफ सुथरा रहे, साथ ही पशु को संतुलित और पौष्टिक आहार उन्हें खिलाना है और इसी के साथ जो बीमार पशु है उनको स्वस्थ पशु से अलग रखना है। ये जो चीजें हैं वो अभी के समय में उन्हें ध्यान रखने वाली होती हैं तो उन्हें इसका ध्यान रखना है। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे स्टूडियो में पधारे और हमारे किसान भाई बहनों को अपनी इतनी अच्छी जानकारी दी।
1: धन्यवाद।
0: जिम की किसान भाई बहनों अवड़े अपने वैस में सोहन सर जुड़े तक हता ने एने अपने ने घनी असल तरीका तक ही बता दीदू है कि अपने हर ते पशु नु अपने ने ध्यान रखू है। तो किसान भाई बहनों कार्यक्रम में बातें अपनी घना कनी थी गई है ने टाइम भी थी गयो है अपने अनस कार्यक्रम तक ही सूटा पड़वानो, तो अपने सूटा तो पड़ा पर जाते पहले हामरी लें एक और गीत ने मोरे पड़ो सूटा।

किसान भाई बहन अणस के थाते अमे कार्यक्रम खेती बाड़ी तकी पड़स उठा। आशा कर रहा हूँ की आज कार्यक्रम में हमारी अब तक की जे भी बातें रही है ये बातें आपने गमी होंगा। तो किसान भाई बहनों आपने अमारो आज ना कार्यक्रम केव लगे एने बारा में आप राय सुझाव अमने आली सको अमरे अणा पता माते। अमारो पतु है कार्यक्रम खेती बाड़ी वाक रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वाकथरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारो पिनकोड नंबर है 320001। हजी वधारे जानकारी बल्ले आप अमने फोन करी शको अमारे अणा फोन नंबर माते। अमारो फोन नंबर है 9460051234। तो भाई बहनों फेरी मलंगा अणस कार्यक्रम में अणस टेम माते एक नया विषय ने हाथी तारुदी। राम राम राम राम।

भाई ने बोनो घर तक निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, ने सोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो क्योंकि घेरे कोई आपनो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ साथियों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट,
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: लेकर हाजिर है श्रोताओं कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है नई शुरुआत, नए संकल्प और सकारात्मक सोच को लेकर।
0: बिल्कुल
1: श्रोताओं, कहना चाहेंगे आपसे कि हर सुबह केवल एक नया दिन नहीं लाती बल्कि अपने जीवन को नए तरीके से जीने का एक नया अवसर भी देती है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि जीवन निरंतर आगे बढ़ने का नाम है। कभी सफलता हमारे कदम चूमती है तो कभी असफलता हमें रोकने का प्रयास करती है। कभी परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती है तो कभी चुनौतियां हमारे सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि हर कठिन दौर के बाद एक नई शुरुआत संभव होती है। हमें केवल बीते हुए कल से सीख लेकर आने वाले कल की और आशा और विश्वास के साथ कदम बढ़ाना होता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, तो आज इस विषय पर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में क्यों ना हम हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम के पहले गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथियों सुन लेते हैं यह गीत। आप बने रहे कार्यक्रम सच्चा स्वराज में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था और हमारी बातें भी रही थी, तो श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे आपसे कि आज आवश्यकता है कि हम अपने जीवन में नई शुरुआत, नए संकल्प और सकारात्मक सोच को स्थान दें, और यही हमारा आज का विषय भी है, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा हमारे हाथ में नहीं होती अंजलि, लेकिन परिस्थितियों के प्रति हमारी सोच और हमारा व्यवहार काफी हद तक हमारे हाथ में होता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि नई शुरुआत केवल कैलेंडर बदलने या नया वर्ष आने का नाम नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: नई शुरुआत तब होती है जब हम अपने विचारों को बदलने, अपनी गलतियों से सीखने और अपने जीवन को बेहतर बनाने का निर्णय लेते हैं। इसके साथ जब कोई स्पष्ट संकल्प जुड़ता है और सोच सकारात्मक होती है, तब साधारण सा प्रयास भी बड़े परिवर्तन का आधार बन सकता है। तो जैसा कि आज हम इस विषय पर श्रोता साथियों से बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले जानते हैं कि नई शुरुआत क्यों जरूरी है।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, कई बार हम बीती घटनाओं को अपने मन में इतना स्थान दे देते हैं कि वर्तमान और भविष्य की जो संभावनाएं हैं वो दिखाई ही नहीं देती। कोई असफलता, कोई गलती, किसी परीक्षा में कम अंक, किसी काम में मिली निराशा या किसी योजना का असफल होना हमें यह विश्वास दिला सकता है कि हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा सोचना सही नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि दोस्तों, बीता हुआ समय वापस नहीं आता, लेकिन उससे मिली सीख हमारे भविष्य को बेहतर बना सकती है। इसलिए हमें अपने अतीत को बोझ नहीं बल्कि अनुभव की किताब बनाना चाहिए।
0: बिल्कुल अंजलि, कहा गया है कि नई शुरुआत का अर्थ है जो हुआ उससे सीखूंगा, जो सामने है उसे बेहतर बनाऊंगा। अगर किसी विद्यार्थी का परिणाम उम्मीद के अनुसार नहीं आया तो उसके पास दो रास्ते होते हैं, वो निराश होकर प्रयास छोड़ देता है या अपनी कमियों को पहचान कर नए तरीके से तैयारी शुरू कर देता है। श्रोताओं, यही नई शुरुआत की शक्ति है।
1: बिल्कुल,
0: नए संकल्प क्या है इसको लेकर अंजलि हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं। तो श्रोताओं, संकल्प केवल मन में इच्छा रखने का नाम नहीं है। इच्छा कहती है मैं ये करना चाहता हूँ, जबकि संकल्प कहता है मैं इसे करने के लिए लगातार प्रयास करूंगा। हम अक्सर बहुत सारे संकल्प लेते हैं दोस्तों, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें भूल जाते हैं। इसका कारण यही अंजलि कि संकल्प के साथ योजना और अनुशासन नहीं जुड़ा होता है।
1: जी जी।
0: अगर कोई युवा कहता है कि वो पढ़ाई में बेहतर करेगा, तो उसे ये भी तय करना होगा कि वो प्रतिदिन कितने समय पढ़ेगा, किन विषयों पर अधिक ध्यान देगा और अपनी प्रगति किस तरह से जांच और अपनी प्रगति की जांच वो कैसे करेगा।
1: बिल्कुल,
0: इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में स्वस्थ आदतें अपनाना चाहता है, तो उसे छोटे और व्यवहारिक कदमों से शुरुआत करनी होगी।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसके लिए श्रोता साथियों को संकल्प लेना होगा, क्योंकि संकल्प जितना स्पष्ट होगा लक्ष्य की दिशा उतनी ही आसान होगी।
0: बिल्कुल,
1: इसी के साथ श्रोता साथियों, सकारात्मक सोच की शक्ति के महत्व को भी समझना है। सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई समस्या नहीं है। सकारात्मक सोच का अर्थ है समस्या को स्वीकार करते हुए उसके समाधान की संभावना पर विश्वास रखना। एक ही परिस्थिति में दो अलग अलग प्रतिक्रिया दे सकते हैं। एक व्यक्ति कह सकता है जागृति जी कि यह मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता। दूसरा कह सकता है यह चुनौती कठिन है, लेकिन मैं प्रयास करके रास्ता खोजूंगा।
0: बिल्कुल,
1: यही अंतर श्रोता साथियों सकारात्मक और नकारात्मक सोच के बीच है। सकारात्मक सोच हमें कठिन परिस्थितियों से भागने के बजाय उसका सामना करना सिखाती है। यह हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करती है और हमें प्रयास जारी रखने की प्रेरणा देती है।
0: बिल्कुल अंजलि, यही अगर असफलता अंत नहीं सीख है इसको लेकर हम बात करें, तो नई शुरुआत की सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है असफलता का डर। हम असफल होने से इतने डर जाते हैं कि प्रयास ही नहीं करते हैं। लेकिन इतिहास बताता है दोस्तों कि अनेक सफल लोगों के जीवन में असफलता आई है। सफलता का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता, उसमें गलतियां, कठिनाइयां, रुकावटें और असफल प्रयास भी शामिल होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए असफलता को अपनी पहचान नहीं बनाना चाहिए। एक असफल प्रयास ये तय नहीं करता दोस्तों कि हम जीवन में क्या बन सकते हैं। जरूरत है कि हम खुद से पूछें, मेरी गलती कहाँ हुई है, मुझे क्या सीख मिली है, अगली बार मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ। इन सवालों के जवाब से ही हम आगे बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है, आज हम कार्यक्रम में जान रहे हैं नई शुरुआत, नए संकल्प और सकारात्मक सोच के बारे में। ये बातें निरंतर आगे यूं ही बनी रहेंगी,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही श्रोता साथियों बात आती है छोटे कदमों से बड़ी सफलता की। जी हाँ, अक्सर हम बड़े सपने तो देखते हैं लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पहला छोटा कदम उठाने में देर करते हैं।
1: बिल्कुल,
0: यदि मंजिल बहुत बड़ी है तो श्रोता साथियों उसे छोटे छोटे लक्ष्यों में बांटना चाहिए। रोज थोड़ा पढ़ना, रोज कुछ नया सीखना, रोज अपने काम की समीक्षा करना, रोज एक अच्छी आदत विकसित करना, ये छोटे कदम भविष्य में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: पेड़ एक दिन में बड़ा नहीं होता, वह बीज से शुरू होता है। उसी प्रकार जीवन का बड़ा परिवर्तन भी एक छोटे निर्णय से शुरू होता है। छोटा प्रयास रोज हो तो बड़ा बदलाव जागृति जी निश्चित होता है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए हम कह सकते हैं कि छोटे कदमों से शुरुआत कीजिए लेकिन अपने लक्ष्य की तरफ शुरुआत हमेशा हमें जारी रखनी है, क्योंकि बहुत सी बार हम उसे बीच में ही रोक देते हैं। बीच में रोकने से श्रोता साथियों हम उसमें असफल हो सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे ही सही अगर हम शुरुआत करें तो हम अपने लक्ष्य को अच्छे से प्राप्त कर पाते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि, यही हम बात करते हैं आत्मविश्वास के निर्माण को लेकर। नई शुरुआत के लिए स्वयं पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर हम शुरुआत से ही ये मान ले कि हम नहीं कर सकते तो हमारा प्रयास कमजोर पड़ जाएगा। आत्मविश्वास का अर्थ ये नहीं है दोस्तों कि हमें हर काम आता है, इसका अर्थ ये है कि हमें विश्वास हो कि हम सीख सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं और अपनी कमियों को सुधार सकते हैं। अपने गुणों को पहचानना चाहिए और अपनी कमियों पर ईमानदारी से काम करना होगा। दूसरों से तुलना करने के बजाय स्वयं के कल से बेहतर बनने का प्रयास भी करना जरूरी है। यही अगर नकारात्मक विचारों को कैसे बदले इसको लेकर बताएं तो श्रोताओं, मन में आने वाला हर विचार सही नहीं होता। कभी कभी अंजलि हम अपनी क्षमताओं को कम आंकने लगते हैं। ऐसे समय में अपने विचारों को सकारात्मक दिशा देना बहुत जरूरी हो जाता है।
0: जी जी।
1: यदि मन कहता है कि मैं नहीं कर सकती तो स्वयं से पूछिए कि मैं इसे सीखने के लिए क्या कर सकती हूँ। यदि मन कहता है श्रोताओं कि मेरे पास अवसर नहीं है तो सोचिए कि मैं उपलब्ध संसाधनों से कौन सा छोटा सा अवसर बना सकता हूँ। और यही सोच अंजलि धीरे धीरे हमारे दृष्टिकोण को बदलती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, नई शुरुआत का सबसे अच्छा समय कभी बाद में नहीं बल्कि आज है।
1: बिल्कुल।
0: हम अक्सर सोचते हैं कि सोमवार से शुरू करेंगे, अगले महीने से शुरू करेंगे या नए साल से शुरू करेंगे, लेकिन बदलाव के लिए किसी विशेष तारीख की आवश्यकता नहीं होती। आज का एक घंटा, आज का एक प्रयास और आज का एक सही निर्णय हमारे भविष्य की दिशा बदल सकता है। इसलिए समय को टालने के बजाय उसका उपयोग करना चाहिए। सही समय का इंतजार मत कीजिए, अपने प्रयासों से श्रोता साथियों समय को सही बनाइए।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि युवा जीवन संभावनाओं से भरा हुआ समय होता है। इस उम्र में लिए गए संकल्प और बनाई गई आदतें भविष्य की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। युवाओं को केवल नौकरी पाने का सपना नहीं देखना चाहिए बल्कि ज्ञान, कौशल, रचनात्मकता और आत्मनिर्भरता विकसित करने का लक्ष्य भी रखना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: श्रोता साथियों, नई तकनीक सीखना, पुस्तकें पढ़ना, अपने कौशल को मजबूत करना, समय का प्रबंधन करना और जागृति जी समाज के प्रति जिम्मेदारी समझना, ये सभी नई शुरुआत का हिस्सा हो सकते हैं। हर युवा को स्वयं से 3 प्रश्न पूछने चाहिए कि मैं क्या सीखना चाहता हूँ, मैं क्या बदलना चाहता हूँ और समाज के लिए मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ।
1: बिल्कुल,
0: इन प्रश्नों के उत्तर जो है वो जीवन को नई दिशा दे सकते हैं।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि सकारात्मक सोच का प्रभाव केवल व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। एक सकारात्मक व्यक्ति अपने परिवार और समाज के वातावरण को भी प्रभावित करता है। घर में अगर हम एक दूसरे की बात ध्यान से सुनते हैं, गलतियों पर केवल आलोचना करने के बजाय समाधान खोजते हैं और सफलता पर एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं तो परिवार मजबूत बनता है।
0: बिल्कुल।
1: इसी प्रकार समाज में सहयोग, विश्वास और संवाद की भावना बढ़ाने से सामूहिक विकास संभव होता है। श्रोता, एक व्यक्ति की अच्छी शुरुआत दूसरे व्यक्ति के लिए प्रेरणा बन सकती है। इसीलिए आपसे कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से कि आप भी अपने जीवन में कुछ छोटे लेकिन महत्वपूर्ण संकल्प जरूर लें, जैसे कि बीते समय की गलतियों से सीखें, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें, नकारात्मक सोच को हावी नहीं होने दें, रोज कुछ नया सीखने का प्रयास करें, समय का सम्मान करें, असफलता से डर कर प्रयास नहीं छोड़ेंगे, ये भी एक संकल्प आप ले सकते हैं। अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें, दूसरों की सफलताओं से प्रेरणा लें और तुलना न करें। परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, हर दिन स्वयं को कल से थोड़ा बेहतर बनाने का प्रयास करें। अगर ये सारी चीजें आप करते हैं तो एक आत्मविश्वास आपके अंदर अपने आप ही आता जाएगा।
0: बिल्कुल जागृति जी, नई शुरुआत किसी विशेष दिन की मोहताज नहीं होती।
1: बिल्कुल,
0: यह हमारे एक निर्णय से शुरू होती है। जब हम अतीत की गलतियों को पीछे छोड़कर उनसे सीख लेते हैं तब भविष्य के लिए नया संकल्प लेते हैं और वर्तमान को सकारात्मक सोच के साथ जीते हैं,
1: जी हाँ।
0: तब जीवन में परिवर्तन की शुरुआत हो जाती है। हमें यह समझना होगा कि परिस्थितियां हमेशा हमारे अनुसार नहीं बदलेंगी, लेकिन हम अपनी सोच, अपनी आदतों और अपने प्रयासों को बदल सकते हैं। श्रोता साथियों, यही परिवर्तन धीरे धीरे हमारे जीवन की दिशा बदल देता है। इसलिए यदि पिछला समय अच्छा नहीं रहा तो निराश होने की जरूरत नहीं है। यदि कोई लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो प्रयास समाप्त करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई रास्ता बंद हो गया तो नया रास्ता खोजने की जरूरत है। हर सुबह एक नई संभावना है, हर दिन एक नया अवसर है और हर संकल्प एक भविष्य की नींव है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो हमारे श्रोता साथियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि दोस्तों, हम अतीत से सीखे वर्तमान को बेहतर बनाएं और भविष्य को सकारात्मक सोच के साथ संवारें, क्योंकि नई शुरुआत कदमों से होती है, नया संकल्प हिम्मत से आता है और सफलता सकारात्मक सोच से होती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए आप आज से ही शुरू करें, आज से ही संकल्प लें और सकारात्मक सोच के साथ अपने कल को बेहतर बनाएं।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी, इन्हीं बातों के साथ अब कार्यक्रम सच्चा स्वराज से हम विदा लेते हैं और आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में होने वाली जो बातचीत है वो हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी। अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
2: जो तेरे कद से इरादे

0: साथ ही उस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3200001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारशर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को। नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य।

0: जी हाँ श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि व्यस्त जिंदगी में सेहत के लिए समय निकालना भी जरूरी है। जी हाँ, सुबह जल्दी उठना, घर के काम निपटाना, बच्चों को तैयार करना, काम पर जाना, खेत खलियान और दुकान संभालना, ऑफिस की जिम्मेदारी पूरी करना और फिर शाम को घर लौटकर परिवार की जिम्मेदारी निभाना। आज के जिंदगी में हम सभी किसी न किसी तरह व्यस्त हैं, लेकिन श्रोता साथियों, इस भागदौड़ में अक्सर एक चीज पीछे छूट जाती है, वो है हमारा भोजन और हमारा पोषण। क्योंकि मनीषा, कई कामकाजी लोग सुबह का नाश्ता छोड़ देते हैं, कोई चाय और बिस्किट के सहारे दिन शुरू करता है तो कोई दोपहर तक कुछ नहीं खाता। कुछ लोग भूख लगने पर समोसा, कचौरी, नमकीन, पैकेट वाले खाद्य पदार्थ खाकर काम चला लेते हैं और वहीं कई लोग पानी पीना भी भूल जाते हैं। शायद हमें लगता है कि आज खाना नहीं खाया तो क्या हुआ, बाद में खा लेंगे, लेकिन श्रोता साथियों, शरीर को ऊर्जा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और पर्याप्त पानी नियमित रूप पर चाहिए होता है।
1: जी हाँ,
0: भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं बल्कि शरीर को काम करने की ताकत और दिमाग को सक्रिय रखने के लिए जरूरी है। तो आज सवाल है कि काम की व्यस्तता के बीच हम अपने भोजन और पोषण का ध्यान कैसे रखें। जानेंगे इस विषय पर कार्यक्रम के माध्यम से ढेर सारी बातों को, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों गीत से पहले विषय से तो रूबरू करा ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं कामकाजी लोगों के लिए पोषण का ध्यान रखने के तरीकों को लेकर। यहीं अगर अंजलि जी बात करें कि कामकाजी लोगों के लिए पोषण की जरूरत क्यों होती है इसकी, तो श्रोता साथियों काम चाहे शारीरिक हो या मानसिक, शरीर को लगातार ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कार्यालय में बैठकर काम करने वाले व्यक्ति को भी अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए पोषण की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल।
0: वहीं श्रोता साथियों खेत, निर्माण कार्य, दुकान, फैक्ट्री या अन्य शारीरिक मेहनत में भी अंजलि जी हम देखते हैं कि पर्याप्त ऊर्जा और पोषण की आवश्यकता होती है। श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि पौष्टिक भोजन शरीर को ताकत देने के साथ साथ काम करने की क्षमता को बनाए रखने में मदद करता है।
1: बिल्कुल।
0: सही भोजन लेने से व्यक्ति हम देखते हैं कि लंबे समय तक सक्रिय रह सकता है और दिन भर की थकान को बेहतर तरीके से निपटाकर काम कर सकता है। श्रोता साथियों यदि भोजन में जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो हम देखते हैं कि कमजोरी, थकान और काम में मन न लगने जैसी समस्याएं हैं वो बढ़ती हैं। इसलिए श्रोता साथियों कामकाजी लोग होते हैं उनके जीवन में पोषण की आवश्यकता है वो बहुत जरूरी होती है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। कामकाजी व्यक्ति के लिए सबसे पहली बात ये समझना जरूरी है कि भोजन समय की बर्बादी नहीं बल्कि सही भोजन हमें काम करने की ऊर्जा देता है। अगर शरीर को पर्याप्त पोषण नहीं मिलेगा तो थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन और काम में मन न लगना जैसी परेशानियां महसूस हो सकती हैं। लंबे समय तक भोजन की अनदेखी करने से स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसलिए चाहे व्यक्ति खेत में काम करता हो, मजदूरी करता हो, दुकान चलाता हो, कार्यालय में बैठकर काम करता हो, स्कूल में पढ़ाता हो, वाहन चलाता हो या घर और बाहर दोनों की जिम्मेदारी संभालता हो, हर किसी के लिए संतुलित भोजन जरूरी है। इसके लिए हमें दिन की शुरुआत नाश्ते से करनी है। जी हाँ श्रोता साथियों, सुबह का नाश्ता दिन के महत्वपूर्ण भोजनों में से एक है, लेकिन काम पर जल्दी जाने की वजह से बहुत से लोग नाश्ता छोड़ देते हैं। नाश्ता बहुत भारी होना जरूरी नहीं है, घर में उपलब्ध चीजों से पौष्टिक नाश्ता हम बना सकते हैं। जैसे कि मनीषा, हम पोहा या उपमा खा सकते हैं, दलिया, दूध या दही के साथ रोटी खा सकते हैं, मूंग या चने का चिल्ला खा सकते हैं, अंकुरित अनाज, बाजरा, ज्वार या मक्का की रोटी खा सकते हैं, सब्जी के साथ रोटी खा सकते हैं, मूंगफली, गुड़ के साथ कोई स्थानीय अनाज, मौसमी फल खा सकते हैं।
0: जी हाँ
1: श्रोता साथियों, अगर सुबह समय कम है तो रात में ही थोड़ी तैयारी की जा सकती है। उदाहरण के लिए चने या मूंग को भिगोकर रखा जा सकता है। आटा पहले से तैयार किया जा सकता है, इससे सुबह जल्दी और पौष्टिक नाश्ता तैयार हो सकता है। चाय बिस्कुट को पूरा नाश्ता मानना सही नहीं है, चाय के साथ कुछ पौष्टिक खाद्य पदार्थ हमें जरूर शामिल करने चाहिए।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें भोजन का समय है वो भी श्रोता साथियों हमें निश्चित रखना है। हम देखते हैं कि अंजलि जी कामकाजी लोग हैं वो अपने भोजन का समय निश्चित नहीं रखते हैं।
1: बिल्कुल।
0: काम ज्यादा आ जाता है, कभी कोई और काम आ जाता है, जिससे हम देखते हैं कि उनका खाना समय पर नहीं होता है और छूट जाता है। और जहाँ तक संभव हो श्रोता साथियों, नाश्ते, दोपहर का भोजन और रात के भोजन का समय ही वो हमें निश्चित रखना चाहिए। लंबे समय तक भूखे रहने के बाद अगर श्रोता साथियों हम अचानक खाना खाते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए परेशानी हो सकती है। यदि श्रोता साथियों किसी दिन काम अधिक हो, भोजन का समय न मिले और समय छूट जाए, तो श्रोता साथियों उस समय भी हमें हल्का पौष्टिक भोजन है वो हमें कर लेना है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। इसी के साथ थाली में विविधता रखें। श्रोता साथियों संतुलित भोजन का मतलब केवल महंगे खाद्य पदार्थ खाना नहीं है। हमारे गाँवों और स्थानीय क्षेत्रों में ऐसी बहुत सी चीजें उपलब्ध हैं जो पोषण से भरपूर होती हैं। एक सामान्य भोजन में कोशिश करें कि अनाज, दाल, चना, अन्य प्रोटीन स्रोत, सब्जी, सलाद, फल, दही और अन्य उपलब्ध पौष्टिक खाद्य पदार्थ का संतुलन बना रहे। स्थानीय अनाज जैसे कि बाजरा, ज्वार, मक्का और अन्य मोटे अनाज भी हम थाली में शामिल कर सकते हैं। क्योंकि याद रखिए श्रोता साथियों, पौष्टिक भोजन का मतलब महंगा भोजन नहीं बल्कि विविध और संतुलित भोजन है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं। तो ये बातें हमारे साथियों से आगे भी हम ऐसे ही जारी रखेंगे, लेकिन क्यों ना अभी श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दी।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि हमें दिन की शुरुआत नाश्ते से करनी है और उसी के साथ थाली में विविधता बनाए रखनी है। यही बात आती है कि काम के बीच पौष्टिक नाश्ता रखें। मनीषा, कई बार काम के दौरान अचानक भूख लगती है, उस समय आसपास जो मिलता है हम वही खा लेते हैं।
1: जी हाँ।
0: अगर संभव हो तो घर से छोटा सा पौष्टिक नाश्ता हम साथ लेकर आ सकते हैं, जैसे कि भुना चना, मूंगफली, मखाना, मौसमी फल, अंकुरित चना या मूंग, थोड़े सूखे मेवे, घर की बनी रोटी, सत्तू का पेय, घर का बना पौष्टिक लड्डू। इससे बार बार तले हुए खाद्य पदार्थ खाने की आदत को कम करने में मदद मिल सकती है।
1: जी हाँ।
0: इसी के साथ श्रोता साथियों, कामकाजी लोगों के लिए पर्याप्त पानी पीना बहुत जरूरी है, खासकर गर्मी में या जब व्यक्ति बाहर शारीरिक मेहनत करता हो। कई लोग काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि पानी पीना भूल जाते हैं, इसलिए अपने साथ श्रोता साथियों पानी की बोतल रखें और समय समय पर पानी पीते रहें। अगर बहुत अधिक पसीना निकलता है या व्यक्ति गर्म वातावरण में रहता है या काम करता है तो शरीर में पानी और लवण की कमी से बचने के लिए स्थानीय स्वास्थ्य सलाह के अनुसार उचित पेय लिया जा सकता है। प्यास लगने का इंतजार न करें, समय समय पर पानी पीते रहें।
1: जी हाँ अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को नमक और तेल का भी संतुलन रखना है। भोजन में नमक और तेल दोनों की श्रोता साथियों जरूरत होती है, लेकिन मात्रा का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। बहुत अधिक नमक, कभी अधिक तेल हमारे भोजन की आदत ही उसे बिगाड़ सकता है।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही हम देखते हैं कि घर में खाना बनाते समय तेल और नमक की मात्रा का ध्यान रखना हमारे लिए जरूरी है। सब्जियों को बहुत अधिक तेल में तलने के बजाय श्रोता साथियों सामान्य तेल में हम पका सकते हैं। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि हमें अपने भोजन में विविधता रखनी है। संतुलित भोजन का अर्थ है श्रोता साथियों कि रोज केवल एक ही प्रकार का भोजन न करना, अलग अलग अनाज, दालें, सब्जियां, फल और अन्य पौष्टिक पदार्थें ही उन्हें हम अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: एक दिन श्रोता साथियों दाल रोटी सब्जी, दूसरे दिन चावल दाल सब्जी, किसी दिन श्रोता साथियों बाजरे की रोटी या ज्वार की रोटी भी आप खा सकते हैं, और किसी दिन श्रोता साथियों खिचड़ी बनाकर भी आप खा सकते हैं। इससे अंजलि जी हम देखते हैं कि भोजन में विविधता के साथ साथ हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत होती है, वो भी भरपूर मात्रा में मिलती है।
0: बिल्कुल मनीषा, काम के दौरान कई लोगों की आदत होती है कि वह थोड़ी देर में चाय और कॉफी लेते हैं। श्रोता साथियों, चाय पीना अपने आप में समस्या नहीं है, लेकिन अगर चाय के कारण भोजन छूट रहा है या व्यक्ति बार बार चाय के साथ बिस्किट, नमकीन और मीठी चीजें खा रहा है तो ये अच्छी आदत नहीं है। काम के बीच पानी, छाछ, दूध या अन्य उपयुक्त घरेलू पेय को प्राथमिकता दी जा सकती है। श्रोता साथियों, काम की वजह से कई लोग सुबह से दोपहर तक कुछ नहीं खाते और फिर बहुत ज्यादा खाना खा लेते हैं, इससे शरीर पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। कोशिश करें कि काम के बीच में भोजन का उचित समय पहले से तय हो। अगर काम का समय निश्चित है तो उसी अनुसार नाश्ता, दोपहर का भोजन और शाम का हल्का नाश्ता व्यवस्थित किया जा सकता है।
1: जी हाँ।
0: व्यस्तता कितनी भी हो, भोजन के लिए कुछ मिनट निकालना बहुत जरूरी है। श्रोता साथियों, हमारे आसपास मौसम के अनुसार अलग अलग फल, सब्जियां, अनाज और कई अन्य खाद्य पदार्थ उपलब्ध होते हैं। मौसमी और स्थानीय खाद्य पदार्थ अक्सर आसानी से उपलब्ध होते हैं और इन्हें रोजमर्रा के भोजन में शामिल किया जा सकता है। हमारी पारंपरिक रसोई में भी कई पौष्टिक विकल्प मौजूद है मनीषा, जैसे कि बाजरा, ज्वार, मक्का, दालें, चना, मूंगफली, तिल, हरी सब्जियां और मौसमी फल, ये हमारे भोजन का हिस्सा हो सकते हैं। इसलिए आधुनिक जीवन शैली अपनाने के साथ साथ श्रोता साथियों अपने स्थानीय खाद्य पदार्थों को भी भोजन में जगह देना बहुत जरूरी है, क्योंकि शारीरिक मेहनत करने वाले लोगों को किसी अलग तरीके के भोजन की जरूरत नहीं होती है, बस उन्हें संतुलित तरीके से अपने पूरे दिन में अच्छी पौष्टिक चीजों को शामिल करने की जरूरत है। कहना चाहेंगे श्रोता साथियों, कामकाजी लोगों के लिए एक बहुत आसान तरीका है सप्ताह भर के भोजन की थोड़ी योजना पहले से बना लेना। उदाहरण के लिए तय करें कि किस दिन कौन सी दाल बनेगी, कौन सी सब्जी उपलब्ध है, कौन सा अनाज इस्तेमाल करना है और टिफिन में क्या ले जाना है। इससे मनीषा रोज सुबह यह सोचने में समय नहीं जाएगा कि आज क्या बनाए, साथ ही बाजार से जरूरत के अनुसार सामान लाने में भी आसानी होगी। तो अंत में श्रोता साथियों को बस इतना ही कहना चाहेंगे कि याद रखिए कि काम की रफ्तार चाहे जितनी भी तेज हो, सेहत की रफ्तार धीमी मत होने दीजिए। और एक बात हमेशा याद रखें, पौष्टिक भोजन कोई खर्च नहीं, स्वस्थ भविष्य की सबसे जरूरी पूंजी है। इसी संदेश के साथ आज के कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपने गाँव और अपने समाज और अपने परिवार को भी मजबूत बनाइए।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं। और समय हो चला है हमारा आज के कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा तो हम जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का अंतिम गीत हम सुनवा दें।
0: बिल्कुल।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य और स्वास्थ्यप्रद बातें अब यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रहीं, गीत संगीत रहीं, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को
1: नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: भाई ने बोनू, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हम या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जेनी हवा में आपड़े हाल हम ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है। होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने अपने धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना कदम है ये अबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। स्वागत है साथियों आप सभी का कार्यक्रम में, जिसे आप सभी सुन रहे हैं आपके अपने सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। जैसा कि साथियों आप जानते हैं कि हम जब भी कार्यक्रम में हाजिर होते हैं तो आपसे बातचीत करते हैं एक नए विषय को लेकर। आज भी कार्यक्रम के माध्यम से ऐसा ही एक नया विषय जुड़ने जा रहा है। दोस्तों, कार्यक्रम के माध्यम से जो विषय हमारे जुड़ते हैं वो हमारे जीवन में काफी महत्वपूर्णता रखते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जो सपनों की उड़ान कार्यक्रम है वो हमारे युवा साथियों से बातचीत करने का एक कह सकते हैं कि जरिया है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से ही हम आपको नए नए विषयों के बारे में बताकर श्रोता साथियों ये अवगत करवाते हैं कि हमें अपने जीवन में करना क्या है। जैसा कि हमने श्रोता साथियों पिछले रविवार को भी एक नए विषय को लेकर ढेर सारी बातें की थी, आज भी कार्यक्रम के माध्यम से विषय जुड़ने जा रहा है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि लोग क्या कहेंगे से हमें आज़ादी चाहिए और आत्मविश्वास को उड़ान देनी है। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सभी से एक सवाल पूछूंगी, जिसका जवाब श्रोता साथियों शायद ही हर किसी के दिल में छिपा है। तो बातें आज के इस कार्यक्रम में हमारी आपसे इसी विषय को लेकर ढेर सारी बातें रहेंगी कि लोग क्या कहेंगे से आज़ादी हमें कैसे मिलेगी और हम अपने आत्मविश्वास को उड़ान कैसे दे सकते हैं। तो बातें ढेर सारी करेंगे साथियों, लेकिन बातों की शुरुआत करने से पहले सुन लेते हैं यहाँ पर एक प्यारा सा गीत। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करना चाहूंगी मैं कार्यक्रम में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले मैंने आपको विषय तो आज के इस कार्यक्रम में क्या रहने वाला है ये तो बता ही दिया। आज हम बात कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे से हमें आज़ादी चाहिए और हम अपने आत्मविश्वास को उड़ान कैसे दे सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि गीत से पहले बताया था कि आज मैं आप सभी से एक सवाल पूछना चाहूंगी जिसका जवाब शायद हर किसी के दिल में छिपा है। साथियों, वो सवाल ये है कि क्या आपने कभी सिर्फ इसलिए किसी को अपने मन की बात नहीं कही क्योंकि आपको लगा कि लोग क्या कहेंगे? क्या आपने कभी अपने पसंद का कपड़ा नहीं पहना साथियों, अपना पसंदीदा करियर नहीं चुना, या फिर किसी नए काम की शुरुआत इसलिए नहीं की आपने क्योंकि समाज की राय का आपको डर था? अगर जवाब श्रोता साथियों इन सभी सवालों का हाँ है तो आज का ये कार्यक्रम सिर्फ आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि लोग क्या कहेंगे से आज़ादी हमें कैसे मिलेगी और जब हमें आज़ादी मिलेगी तो हम अपने आत्मविश्वास को एक नई उड़ान कैसे दे सकते हैं। दोस्तों, आपको बताऊं तो सबसे बड़ी जेल जो है वो है दूसरों की राय, यानी कि दुनिया की सबसे मजबूत जेल ईंटों की नहीं होती साथियों, वे होती है दूसरों की सोच की। अजीब बात तो ये है दोस्तों कि इस जेल का दरवाजा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से बंद होता है। हम खुद अपने सपनों पर ताला लगा देते हैं। याद रखिए साथियों कि दुनिया आपको उतना ही नहीं रोकती जितना आपको आपका डर रोकता है, इसलिए डर से डरिए मत बल्कि डर का सामना कीजिए। साथी, लोग सच में कितना सोचते हैं श्रोता साथियों, ये एक बड़ी ही दिलचस्प बात है। हमें लगता है कि सब लोग हमें देख रहे हैं, लेकिन सच ये है कि हर इंसान अपने जिंदगी में इतना व्यस्त है कि उसे दूसरों के बारे में सोचने का समय ही कम मिलता है। जिस बात को लेकर श्रोता साथियों हम कई दिनों तक परेशान रहते हैं, हो सकता है सामने वाला उसे 5 मिनट बाद ही भूल जाए। इसलिए साथियों, अपनी पूरी जिंदगी किसी 5 मिनटों के विचार पर मत छोड़िए, बल्कि आप भी अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़िए, ना कि निराश होकर बैठिए साथियों। इसलिए कहा गया है कि लोग सच में कितना सोचते हैं ये हमें जानने की जरूरत नहीं है, लोग क्या सोचेंगे ये भी हमें जानने की जरूरत नहीं है। हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, बस इस पर ही विश्वास रखें श्रोता साथियों। और अगर आपको लगता ही है कि लोग बातें करेंगे और बोलेंगे तो डरना क्यों है दोस्तों? एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर आप कुछ नहीं करेंगे तब भी लोग बोलेंगे, और अगर आप कुछ करेंगे तो भी लोग बोलेंगे साथियों। अगर आप सफल होंगे तब भी लोग बोलेंगे, और अगर आप असफल होंगे तब भी लोग बोलेंगे। तो ऐसे में फैसला आपका है कि बिना कुछ किए बातें सुननी है या अपने सपने पूरे करके बातें सुननी है। इसलिए श्रोता साथियों, अगर आपको भी लगता है कि लोग बोलेंगे तो बोलने से डरिए मत, सुनने से भी मत डरिए, करने से भी मत डरिए श्रोता साथियों, बस खुद पर विश्वास रखिए। अगर आप खुद पर विश्वास रखेंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका अंदर से आत्मविश्वास जागेगा, जिससे श्रोता साथियों आप जो चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। तो जैसा कि बातें हम कार्यक्रम में साथियों आपसे बहुत अच्छी कर रहे हैं, और आज के इस कार्यक्रम में बातचीत का विषय भी काफी महत्वपूर्ण है, तो ये बातें मैं आगे भी करती रहूंगी, लेकिन अभी मनोरंजन कर लेते हैं एक और पहल से गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में और सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

अंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पड़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि साथियों, आज हम बात कर रहे हैं कि लोग क्या कहेंगे से आजादी हमें मिलनी चाहिए और इससे हमारे आत्मविश्वास को एक नई उड़ान कैसे मिल सकती है। जैसा कि दोस्तों, गीत से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें मेरी आपसे रही थी कि हमें लोगों के बोलने से नहीं डरना है, लोगों के सोचने से भी नहीं डरना है, क्योंकि दोस्तों अगर हम कुछ अच्छा करेंगे तो भी लोग हमें बोलेंगे, और हमसे कुछ गलती हो गई या कुछ हमने बुरा कर दिया, कह दिया, तो भी लोग बोलेंगे। अगर आप सफल हैं श्रोता साथियों, तो भी लोग किसी और चीज को लेकर आपके बारे में कुछ ना कुछ कहेंगे, लेकिन अगर आप असफल हैं तो भी लोग बोलेंगे। तो ऐसे में साथियों, फैसला हमारा है कि हमें असफल होके सुनना है या सफल होके सुनना है। इसलिए अपने जीवन में दोस्तों, लोग क्या कहेंगे इस सोच को अपने जीवन का हिस्सा मत बनाइए, बल्कि संघर्ष को, मेहनत को और सफलता को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। श्रोता साथियों, कई बार हमें ऐसा लगता है कि लोग हमारी बातें कर रहे हैं, लेकिन असल में हो सकता है कि वो लोग हमारी बातें कर ही नहीं रहे हो, वो किसी और बात पर विचार कर रहे हो। इसलिए श्रोता साथियों, हर चीज को तनाव के रूप में मत ग्रहण कीजिए, कुछ चीजें खुशी खुशी भी ग्रहण कीजिए, इससे आपका जीवन और सरल हो जाएगा। अब यही साथियों, प्रश्न ये उठता है कि आत्मविश्वास पैदा कैसे होता है। दोस्तों, आत्मविश्वास कोई जन्म से मिलने वाला उपहार नहीं है, ये छोटे छोटे साहसी कदमों से ही बनता है, जैसे कि पहली बार मंच पर बोलना, पहली बार इंटरव्यू देना, पहली बार ना कहना और पहली बार अपनी बात रखना। साथियों, ये छोटे कदम आपके आत्मविश्वास की पहली सीढ़ी बनता है। इसलिए हमेशा अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। आज सोशल मीडिया ने एक नई समस्या पैदा कर दी है दोस्तों, कि हम अपनी असल जिंदगी की तुलना दूसरों की हाईलाइट से करने लगे हैं। लेकिन ऐसे में हमें याद रखना है कि हर फोटो के पीछे एक कहानी होती है, हर मुस्कान के पीछे एक संघर्ष होता है। इसलिए तुलना नहीं बल्कि तरक्की पर विश्वास कीजिए, क्योंकि साथियों, जो लोग गलती करने से डरते हैं, वे सीखने से भी डरते हैं। गलती हार नहीं होती, गलती अनुभव की फीस होती है। जो गिरने से नहीं डरता साथियों, उसी के कदम मंजिल तक पहुंचते हैं। इसलिए हमेशा खुद पर विश्वास रखिए, किसी और के जैसा बनने की कोशिश मत कीजिए। दुनिया को आपकी कॉपी नहीं दोस्तों, आपकी मौलिकता चाहिए। आपकी आवाज, आपका हुनर और आपकी सोच ही, यही आपकी असली पहचान है। दोस्तों, आपसे कहना चाहूंगी कि आपको हमेशा खुद से 3 सवाल पूछने चाहिए। जैसे कि जब भी आपके मन में कुछ नकारात्मक आए और आपको लगे कि लोग क्या कहेंगे या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो आप खुद से 3 सवाल पूछिए कि क्या ये काम मैं सही कर रहा हूँ या सही कर रही हूँ, क्या इसमें मेरा विकास होगा, क्या इससे किसी का नुकसान तो नहीं होगा। अगर श्रोता साथियों, तीनों का जवाब हाँ है, तो फिर दुनिया की राय से ज्यादा आपकी अंतरात्मा की आप सुनिए और आगे बढ़ती रहिए। जैसे कि एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से आपको बताऊं दोस्तों, तो एक युवक हर बार नया काम शुरू करने से पहले लोगों की राय पूछता था। कभी किसी ने कहा मत करो, तो कभी किसी ने कहा तुमसे नहीं होगा। दोस्तों, सालों बीत गए, एक दिन उसने फैसला किया कि अब वह अपनी आवाज सुनेगा। धीरे धीरे उसने शुरुआत की, गलतियां उससे हुई साथियों, लेकिन एक दिन वही लोग उसकी सफलता की मिसाल देने लगे। तो दोस्तों, आपसे कहना चाहूंगी कि लोगों की राय बदलने का सबसे अच्छा तरीका है अपनी मेहनत। इसलिए मेहनत करते रहिए और सफल रहिए श्रोता साथियों। रोज आप एक नया काम कीजिए, अपनी छोटी छोटी सफलताओं को लिखते रहिए, अपनी गलतियों से सीखिए, सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताइए और हर दिन आईने में देखकर खुद से ये कहिए कि मैं जैसा हूँ या जैसी हूँ वैसे ही पर्याप्त हूँ और मैं हर दिन बेहतर बन सकती हूँ। तो दोस्तों, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास जरूर बढ़ जाएगा और एक नई उड़ान भरेगा साथियों। इसलिए कार्यक्रम के अंत में अब आपसे यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी आपकी है, सपने आपके हैं साथियों, तो मेहनत भी आपकी ही है, तो फैसला भी आपका ही होगा। याद रखिए कि जब आप लोग क्या कहेंगे में कैद रहेंगे, तब तक आपकी असली उड़ान शुरू नहीं होगी साथियों। इसलिए श्रोता साथियों, एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि दुनिया की आवाज हमेशा बदलती रहती है, लेकिन आपकी अंतरात्मा की आवाज आपकी सबसे अच्छी और सच्ची राह दिखाने वाली होती है। इसलिए लोगों की तालियों का इंतजार मत कीजिए,
अपने हौसलों की गूंज को सुनिए और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों को उड़ान दीजिए साथियों। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेने की अनुमति चाहूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और प्यारे से गीत के साथ में।

श्रोता साथियों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम सपनों की उड़ान अब यहीं समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में जो विषय से जुड़ी मेरी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे दोस्तों। तो साथियों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसपाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर 9460051234। तो दोस्तों, फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नए विषय के साथ में और एक नई सोच के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, याद रखिए कि जो लोग अपने सपनों पर भरोसा करते हैं, एक दिन दुनिया भी उन्हीं पर भरोसा करने लगती है। इन्हीं बातों के साथ नमस्कार श्रोता साथियों।

बारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

ये गजल मैंने मेरे से बहुत दिनों में इसकी धुन बनी, मैं पेश कर रहा हूँ। ये मोमिन खां मोमिन की गजल है, जिसका मतलब है, रोया करेंगे आप भी पहरों इसी तरह, अटका कहीं जो आपका दिल भी मेरी तरह।